सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026 सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुबह के 7:01 हुए हैं। आइए श्रोताओं, आपको देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम का प्रसारण होगा अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 12 का वाचन। 7:20 पर होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। प्रातः 8 वतन का राग कार्यक्रम आज शरद जोशी की पुण्यतिथि पर केंद्रित होगा। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे। रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास कार्यक्रम का 5वां भाग आज आप सुनेंगे। सुबह 9 का समय होगा कार्यक्रम योग संवाद का, क्षणभंगुर संसार और सदपुरुषों की दुर्लभता। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से आप सुनेंगे बातचीत। भारत विभूति कार्यक्रम का प्रसारण समय 9:30 पर, वासुदेव शरण अग्रवाल आज का आकर्षण। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में आज दिन में 10 और रेडियो रिपोर्ट में रासलीला समारोह का भाग 6। दिन में 10:30 पर होगा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, आज का आकर्षण मदर टेरेसा। दिन में 11 कार्यक्रम सुरसागर में आप सुनेंगे सुनंदा शर्मा का गायन। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 31वां भाग आज प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक छोटे से गांव में अमित नाम का युवक रहा करता था। घर साधारण था, साधन सीमित थे, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे, धन वैभव और एक सफल जीवन। अमित रोज शहर जाता, बड़े घरों और चमचमाती गाड़ियों को देखता और मन ही मन कहता, काश मेरे पास भी इतना धन होता तो मैं भी सफल कहलाता। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति रामदास बाबा से पूछा, बाबा बताइए धन और सफलता पाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा धन पाने के रास्ते बहुत हैं, पर सफलता का रास्ता केवल एक, ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य। अमित को ये बात साधारण लगी। उसे लगा इससे तो अमीर बनने में बहुत समय लगेगा। कुछ समय बाद अमित को एक ऐसा अवसर मिला जहां वो गलत तरीके से बहुत पैसा कमा सकता था। मन डगमगाया, पर बाबा की बात याद आई। उसने वो रास्ता ठुकरा दिया और अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, कई बार नुकसान हुआ, लोग हंसे, ताने भी दिए। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन अमित रुका नहीं। समय बीतता गया, उसका काम धीरे धीरे बढ़ा, विश्वास बना, नाम बना और साथ ही आया धन। एक दिन वही लोग उसके पास काम मांगने आए। अमित के पास अब सिर्फ पैसा ही नहीं था, सम्मान, सुकून और संतोष भी था। फिर वही बाबा के पास गया और बोला, बाबा अब समझ आया, धन तो साधन है, वैभव दिखावा हो सकता है, लेकिन असली सफलता वो है जो आत्मा को भी अमीर बना दे। बाबा ने कहा, यही है सच्ची सफलता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दी मिला धन टिकता नहीं, ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता स्थायी होती है। सच्चा वैभव सिर्फ पैसे से नहीं, सम्मान और संतोष में है।
1: जीवन सौरभ।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे जीवन सौरभ। अब समय है कार्यक्रम अक्षय निधि का।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम नृम्णस्य महना स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिसकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोक भयभीत हो गए। यह पृथ्वीम व्यथमाना मद्रिन हद्यः पर्वतान प्रकुपिताम अरम्णात् यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, द्युलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। यो हत्वा हिमरिणात् सप्त सिंधोन्यो गा उदाज दपधा वलस्य यो अश्मनोरंतरग्निम् जजान संवृक समत्सु स जनास इंद्रः। हे मनुष्यों, जिसने वृत्र राक्षस को मारकर जलवृष्टि कराकर सात नदियों को प्रवाहित किया, जिसने राक्षस द्वारा अपहृत की गई गौवों को मुक्त कराया, जिसने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिसने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव हैं। येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः श्वग्नीव यो जिगीवाम लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिसने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिसने दास वर्ण को निम्न स्थान प्रदान किया, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिसने व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। यम स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुते माहुनैर्षो अस्तीत्येनम् सो अर्यः पुष्टीर विजयवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्रः। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं, उन इंद्रदेव के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं ही नहीं, वे इंद्रदेव उन्हें न मारने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान देव इंद्र ही हैं। यो रुद्रस्य चोदिता यह कृशस्य, यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेह, युक्तग्रामणो योविता सुशिप्रह सुतसोमस्य सजनास इंद्रह। हे मनुष्यो, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर कूट कर जो यजमान तैयार हैं, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यस्याश्वासः प्रदिशि, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथासः। यह सूर्यम् य उषसम् जजान, यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनके अधीन समस्त ग्राम, गौएं, घोड़े तथा रथ हैं, जिनने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे वर उभया अमित्राह समानम चिद्रथा मातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रह। हे मनुष्यो, परस्पर साथ साथ चलने वाले द्युलोक तथा पृथ्वीलोक, जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ दो वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

भक्त कवि तुलसीदास जी ने कहा है, कली कराल कलिमल दहन नाम प्रताप प्रचंड, अर्थात कलियुग के पाप सिर्फ प्रभु के नाम से ही जल जाते हैं। आइए हम भी इस पावन बेला में प्रभु का नाम जप करें।

जिनके नाम से, जिनकी कृपा से जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो मुक्ति को प्रसाद के रूप में बांटते हैं, वे प्रभु नाम जप के कारण भक्त का बंधन स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप के कारण ये कृपा प्रभु अपने भक्तों पर करते हैं।

प्रभु मुनियों के मन को भी अगम है, वहीं भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है। प्रभु तो समुद्र के समान है, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं।

प्रभु के प्रति अपनी आस्था इतनी प्रचंड रखना चाहिए कि जब हम मौन हो जाएं, तब उत्तर स्वयं हमारे आराध्य को देना हो।

ईश्वर सर्वव्यापक है, सृष्टि की कण कण में समाया हुआ है, अतः वह हम सब में भी विद्यमान है, क्योंकि हम भी सृष्टि का ही तो हिस्सा हैं। हम अपना पूरा जोर भगवान को अपने से बाहर खोजने में लगा देते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही विराजमान है।

हे मनुष्य, ये संसार एक घने वन की भांति है। जिस प्रकार सघन वन में जहरीले सर्प कीटादि निवास करते हैं, उसी प्रकार संसार में अनेक दुख द्वंद्व हैं। संसार के सभी विषय विकारों के फंदे त्याग कर प्रभु के चरणों का भजन कर।

भगवान की आराधना और भक्ति के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है।

श्रोताओं, ये था आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम। इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। सुबह के ठीक 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है शरद जोशी की पुण्यतिथि पर।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदमी के पास अगर दो विकल्प हों कि या तो वो बड़ा अफसर बन जाए और खूब मजे करे, या फिर छोटा मोटा लेखक बनकर अपने मन की बात कहने की आजादी अपने पास रखे, तो भाई बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। लेखक के पक्ष में एक बात और जाती है कि उसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। हम कभी नहीं कहते कि स्वर्गीय कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं या स्वर्गीय प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। लेखक सदा जीवित रहता है, ये विचार थे अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार शरद जोशी के। और सच है कि व्यंग्य को हंसने हंसाने की हास्यास्पद कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष रखने वाले महान व्यंग्यकार शरद जोशी आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके तीखे शब्द हमेशा लोगों को जगाते रहेंगे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम शामिल है। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों की बेबाक तस्वीर नजर आती है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी 25 सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे। वो एक स्थापित व्यंग्यकार तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास लिखे, व्यंग्य नाटक लिखे, उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिक लिखे और इसके साथ ही कई फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। उनकी भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का ढंग विषय के मुताबिक होता, जो सीधे उनके पाठकों या दर्शकों के मन में उतर जाता था। सामाजिक विसंगतियों को लेकर एक बेचैनी उनके मन में हमेशा रही, जो उनके पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को आंदोलित कर देती थी।

शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माताजी का नाम शांति जोशी था। उनका परिवार मूलतः गुजरात का रहने वाला था, जो बाद में मालवा में आकर बस गया था। शरद जोशी के पिता रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूंकि पिता का स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए शरद जोशी का बचपन मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास और गुना जैसे छोटे शहरों में बीता। दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपने शिक्षा काल से ही वो लेखन से जुड़ गए थे, यहाँ तक कि अपने लेखन से प्राप्त आय से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सन 1955 में शरद जोशी आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश सूचना एवं प्रकाशन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहे। यहाँ रहते हुए उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के साधन के रूप में चुना। किसी के बंधन में बंधकर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता की ओर रुख किया। शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दरअसल शरद जोशी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस वजह से उनके अति घनिष्ठ मित्र और हितैषी भी उनसे दूर हो गए। मतभेद हुए तो अत्यंत आत्मीय संबंध भी कड़वाहट में बदल गए। लेकिन शरद जोशी ने सदा वही कहा और वही किया जो उन्हें सही लगता था। अपनी आलोचना से खिन्न होकर ही उन्होंने व्यंग्य लिखना आरंभ किया था। दुनिया के अखबारी इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे कि किसी लेखक के स्तंभ को पढ़ने के लिए पाठक विशेष रूप से किसी अखबार को खरीदें। ये सौभाग्य शरद जोशी के हिस्से था। उनका रोजाना स्तंभ प्रतिदिन अत्यंत लोकप्रिय था। ये कॉलम अखबार के आखिरी पन्ने पर छपता था। पाठकों को इस कॉलम का बेसब्री से इंतजार रहता। इसे पढ़ने के लिए वो विशेष रूप से अखबार खरीदते और अखबार पढ़ने की शुरुआत अंतिम पृष्ठ से करते। सन 1960 के बाद का समय हिंदी साहित्य में विरोध के स्वर की स्वीकार्यता का दौर था। इससे पहले विरोध को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट की। लोगों को लगा कि जो बात वो नहीं कह पाते वो इन व्यंग्यों में कही गई है। उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। शरद जोशी ने लोगों को किसी भी घटना को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने शालीन भाषा में भी अपनी बात बहुत बारीकी से रखी, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शरद जोशी ने जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में जनता के सामने अनोखे ढंग से रखा। उनकी कलम की संवेदना ने जन जन के मन को छू लिया।

शरद जोशी एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया था। इरफाना एक पढ़ी लिखी उदार विचारों की लड़की थीं, जो उन दिनों रंगमंच और कथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय थीं। दोनों का ये विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों ने ही इसका डटकर सामना किया। दरअसल शरद जोशी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही जिया भी। उन्हें किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें खरीदने के लिए वो अपनी आय में से बड़ी राशि खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने यशपाल, प्रेमचंद, टॉल्स्टॉय, चेखव, गोरकी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मंटो और कृष्णचंदर जैसे महान साहित्यकारों को खूब पढ़ा और उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित भी हुए। इसीलिए उनके भीतर एक गहरी साहित्यिक समझ हमेशा नजर आती है। जितनी विविधता उनके विषयों में दिखाई देती है, उतनी ही उसके प्रस्तुतीकरण में भी झलकती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राग भोपाली, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी ने दो व्यंग्य नाटक तथा उपन्यास भी लिखे थे। उनके लिखे टीवी धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रमुख थे ये जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के आदि। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। ये फिल्में थीं क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि। शरद जोशी ने रेडियो में वार्ता, प्रहसन और नाटक भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान तब मिली जब धर्मवीर भारती ने उनकी एक व्यंग्य रचना गागरिन का यात्रा भत्ता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। वो पूरे 25 साल तक कवि सम्मेलन के मंचों पर व्यंग्य पाठ के साथ उपस्थित होते रहे। हिंदी साहित्य जगत में टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने वाले श्रोताओं की परंपरा की शुरुआत शरद जोशी ने ही की। वो कहा करते थे कि आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो फिर किसी लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर खूब व्यंग्य पढ़े और खूब लोकप्रियता अर्जित की। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते थे, वैसे ही शरद जोशी भी बुलाए जाते थे और उनका व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि पर भी भारी पड़ता था। शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी व्यंग्य रचनाओं की विशेषता थी उनकी तात्कालिकता। देश समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर वो तुरंत व्यंग्य लिखते थे, इसीलिए पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। अपनी सहज और बोलचाल की भाषा में लिखी रचनाओं के द्वारा वो पाठकों के मन तक अपनी पहुंच बना लेते थे। उनका व्यंग्य लेखन मस्तिष्क को केवल झकझोरता भर नहीं था, बल्कि एक नई सोच पैदा करता था। जनता उनके लेखन के केंद्र में थी। उनकी रचनाएं आम जन में जागृति पैदा कर देती हैं। उनका व्यंग्य पाठकों की बौद्धिकता को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए शरद जोशी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। अपने हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलेपन से आम जन को जगाने वाले शरद जोशी ने 5 सितंबर सन 1991 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों से। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश का शासन था। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज की कमान अपने हाथों में ली। गोंड रानी दुर्गावती ने गढ़ा राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। उन्होंने कई युद्ध लड़े। वो उस काल की ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी लोकप्रिय शासिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अनेक लोक उपयोगी कार्य कराए, अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर में अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराया, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनके काल में पचमठा मंदिर की स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें 5 गर्भगृह हुआ करते थे। ये पचमठा मंदिर वास्तव में मठ थे और यहां विद्या अध्ययन अध्यापन के लिए दूर दूर से विद्वान और विद्यार्थी आते थे। रानी दुर्गावती के काल में भी ब्रज से पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ जी दक्कन जाते हुए गढ़ा राज्य के जबलपुर पधारे। उनके आगमन से गोंड राज्य गढ़ा में वैष्णव भक्ति का प्रभाव बढ़ गया। उनकी बैठकें बनी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और गोपाल के अनेक मंदिर बने। तेलंगाना के लिंगायत ब्राह्मणों ने जब धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया तब उन पर विपदा आन पड़ी। इस कठिन समय में गोसाई विट्ठल दास जी उन्हें अपने साथ गढ़ा ले आए और रानी दुर्गावती ने लिंगायत ब्राह्मणों को नर्मदा किनारे अनेक गांव में बसाया। ये सारी जानकारी हमें अभी तक दी है पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना जी ने और जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आज हम पांचवी कड़ी में क्या बात करने वाले हैं पूजा जी? वैसे आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पहले बताई हैं। आपने पिछली बार कुछ हमें ये हिंट किया था कि दिल्ली के मुगल दरबार पर भी रानी का असर दिखाई देना शुरू हो गया था, रानी दुर्गावती जी का।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि रानी दुर्गावती के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मुगल दरबारी लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। उन्होंने लगान के बारे में लिखा था कि गढ़ा के गोंड राज्य की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था कि गढ़ा राज्य इतना संपन्न था कि वहां के किसान और व्यापारी लगान सोने की मोहरों और हाथी के द्वारा दिया करते थे। ये उनकी समृद्धि दिखाता है। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरी, हमें और भी इतिहास उनके साहित्य में दिखाई देता है। तो मुगल दरबार में गढ़ा राज्य की खबरें लगातार पहुंच रही थी
0: जी।
1: चाहे वह लगान हो, चाहे गोसाई विट्ठलनाथ जी का गढ़ा में आगमन हो, या मठ मंदिरों का निर्माण, या फिर रानी का सच्चरित्र, सब पर चर्चाएं जोरों से थी। रानी का प्रभाव इतना था कि मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा
0: जी।
1: और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने भी लगे थे, जिसका खामियाजा रानी दुर्गावती को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा
0: जी।
1: तो रानी अत्यधिक चरित्रवान और साहसी थी। उनकी तारीफ अबुल फजल ने नहीं की है बल्कि दूसरे मुगल दरबारी लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में उन्हें खूब सराहा है
0: जी। तो क्या पूजा जी और कुछ लेखकों के नाम हम जान सकते हैं कि कहां और किसने ये जिक्र किया है?
1: एक बड़े प्रसिद्ध दरबारी लेखक हुए हैं मुगल काल के, बदायूनी
0: जी।
1: तो बदायूनी ने मुतखाब उत तवारीख नामक एक किताब लिखी है और उन्होंने गढ़ा के गोंड रानी दुर्गावती के सौंदर्य का वर्णन भी किया है और उनके साहस का भी बहुत वर्णन किया है। इसके अलावा एक और लेखक हुए निजामुद्दीन अहमद, उन्होंने तबाकत ए अकबरी में रानी दुर्गावती के सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा की है। यहाँ तक तो ठीक था। एक और लेखक हैं जिनको हम सब ने लगभग पढ़ा होगा
0: जी।
1: वो है फरिश्ता, जिनकी बड़ी फेमस किताब है तारीख ए फरिश्ता
0: जी।
1: और उन्होंने भी दुर्गावती की प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य की, उनकी प्रतिभा की और उनके चरित्र की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही उनको सच चरित्र बता रहे हैं और उनका जो इतना सुदृढ़ चरित्र है वही जाकर उनको इतने बड़े गढ़ा राज्य की स्थापना, उसको बनाए रखने में सहयोग देता है।
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से जब तक किसी का चरित्र अच्छा ना हो वो अपना राज्य तो बहुत अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छे चरित्र की ही नींव पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।
1: बिल्कुल। काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, मुगल इतिहासकार अबुल फजल की।
0: जी हाँ।
1: तो अबुल फजल ने जब रानी दुर्गावती के बारे में वर्णन किया तो कुछ बात उनकी ध्यान देने वाली है जो आगे के इतिहास को रचने में महत्वपूर्ण है। तो जब अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के साहस की प्रशंसा की तो उन्होंने आगे यह भी लिख दिया कि रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये रानी की सबसे बड़ी गलती थी।
0: जी।
1: तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अधीनता न स्वीकार करना रानी को बहुत महंगा पड़ा। तो जब उसने आगे लिखा तो यह भी लिखा कि वो बहुत अदम्य साहस और कर्तव्य परायण जैसे आधारभूत तत्वों का उनमें कोई अभाव नहीं था रानी में, और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बहुत महान कार्य भी किए थे। और ये भी लिखते हैं अबुल फजल की मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से उन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और वो विजय भी रही थी। जैसा हमने पहले भी सुना, वह बहुत ही अच्छी निशानेबाज भी थी। लेकिन वो आगे लिखता है कि रानी दुर्गावती में एक ही दोष था
0: जी।
1: और वो दोष यह था कि उन्होंने कभी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
0: लेकिन ये तो दोष मुगलों की नजरों में था, देखिए पूजा जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे सच्चरित्र का और ऐसी देशभक्ति का क्या अर्थ जो पर अधीन हो जाए। तो रानी दुर्गावती ने अपने गोंड राज्य की बिल्कुल रक्षा की, मुगलों के अधीन होना उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और इस बात पर हम सबको आज गर्व है। मुगल तो उनके विरोधी थे और भले ही वो ऐसा लिखते हों, क्योंकि वो ऐसा लिखना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी वीरांगना उनके अधीन हो जाए। लेकिन पूजा जी, इस बीच ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने कुछ लोगों को भेजा भी था गढ़ा राज्य में।
1: जब मुगल दरबार में बहुत चर्चाएं बढ़ने लगी
0: जी,
1: तो जिज्ञासा होना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के बारे में सही जानकारियां जुटाने के लिए दो लोगों को भेजा गया। तो ऐसी जनश्रुति है कि अकबर ने दो विद्वान थे उनको भेजा था, एक थे गोप महापात्र और दूसरे थे नरहरि महापात्र
0: जी।
1: इनका इतिहास भी मिलता है, इसलिए ये किंवदंती काफी सत्य के करीब लगती है। तो गढ़ा राज्य के दीवान आधार कायस्थ ने जब गोप महापात्र को जबलपुर भेजा गया
0: जी,
1: तो उनका बड़ा सम्मान किया जब वो गढ़ा आए
0: जी,
1: क्योंकि वो बड़े जाने माने विद्वान थे गोप महापात्र। गढ़ाराजी के तो पहले से ही था कि वो विद्वानों को खूब प्रश्रय देते थे। तो गोप महापात्र बड़े खुश होकर गढ़ा से वापस दिल्ली पहुंचे। और इसी प्रकार जब नरहरि महापात्र आए तो रानी दुर्गावती ने उनका भी बहुत स्वागत किया और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें उस समय 1 करोड़ रुपए की जो कीमत बनती है ऐसा पुरस्कार दिया, ये लिखित साक्ष्य है।
0: 1 करोड़ के साक्ष्य हैं।
1: हाँ, के साक्ष्य हैं। तो नरहरि महापात्र और गोप महापात्र के बारे में हमें कई जानकारियां इससे संबंधित मिलती हैं। तो कहते हैं कि जब गोप महापात्र दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां गढ़ा के मंत्री आधार कायस्थ की बुद्धिमत्ता की बड़ी तारीफ की
0: जी।
1: इस पर सम्राट ने आधार सिंह कायस्थ को दिल्ली बुलवाने के लिए एक दोहा लिखकर पत्र भेजा
0: जी।
1: और दोहा ऐसा था कि अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपेत सोई अरु आधार दीवान। इसका अर्थ यह है कि अगर बहुत बुद्धिमान है तो जरा भेजो दिल्ली अपने हाँ, दीवान को
0: जी। तो क्योंकि उनके विद्वान आधार कायस्थ की तारीफ कर रहे थे
1: जी। हाँ,
0: वाह।
1: तो ये पढ़कर रानी दुर्गावती ने आधार कायस्थ को एक सफेद हाथी के साथ मुगल दरबार भेजा। इसके कई कारण भी थे
0: जी।
1: जो सफेद हाथी साथ में भेजा गया था,
0: सफेद हाथी ज्यादातर होते नहीं है
1: हाँ,
0: तो इसके पीछे कोई रहस्य रहा होगा।
1: पर सफेद हाथी इस क्षेत्र में, जैसे हमने सुना है कि उस समय में कुछ किंवदंती आती हैं जिसमें सफेद हाथी का वर्णन आता है।
0: अच्छा।
1: पर हाँ, यहाँ यह है कि आधार कास्ट के साथ एक सफेद हाथी भेजा। सफेद हाथी यहाँ पे प्रतीकात्मक भी हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि गढ़ा राज्य को संभालना कोई इतना आसान नहीं, हाथी पालने बराबर है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आधार कायस्थ मुगल दरबार में पहुंचे
0: जी,
1: तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है अपने सिंहासन पर ही नहीं है और अकबर जो है वो पहले ही उनकी बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए दरबारियों के बीच में साधारण कपड़े पहनकर बैठ गए थे।
0: अच्छा।
1: तो आधार कायस्थ ने जब दरबार में प्रवेश किया और उन्हें सिंहासन सुना लगा तो उन्होंने पूरे दरबार पर नजर घुमाई। फिर उन्होंने एक साधारण वेशभूषा में बैठे हुए एक आदमी की ओर देखा और उन्हें नमस्कार किया, तो वो अकबर ही था। तो अकबर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने भरे दरबार में, पल भर में आधार कायस्थ ने उन्हें पहचाना कैसे
0: जी।
1: तो उन्होंने आधार कायस्थ से पूछा कि आपने पल भर में कैसे पहचाना, तो आधार कायस्थ ने जवाब दिया कि मैंने जब सबकी ओर देखा तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की नजरें आपकी ओर देख रही थी और देखते ही झुक गई थी। तो जैसे ही मैंने ये देखा मैं समझ गया कि आप ही सम्राट हैं।
0: वाह, तो कितनी अच्छी बात है पूजा जी हमें बता रही हैं। पांचवी कड़ी सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपका रेडियो मित्र मैं संदीप शर्मा आपके साथ बना हुआ हूं। और आज पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि दिल्ली से आए हुए मुगल शासक अकबर के भेजे हुए विद्वानों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रानी दुर्गावती ने उस समय 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए। तो इससे तो निश्चित रूप से ये पता लगता है कि हमारा जो गढ़ा राज्य था वो कितना ज्यादा समृद्ध था।
1: जी हाँ।
0: अच्छा पूजा जी, आपने सफेद हाथी की बात कही कि आधार कायस्थ वहाँ सफेद हाथी के साथ गए, रानी दुर्गावती ने उन्हें भेजा, लेकिन कहते हैं कि कुछ एक और बहुत अजीब सी चीज भेजी गई थी, वो क्या थी?
1: जब आधार कायस्थ से अकबर मिले तो वो बहुत उनसे प्रभावित हुए
0: जी,
1: और उनका काफी मान सम्मान भी किया। फिर उन्होंने जिस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने गढ़ा राज्य के बारे में आधार कायस्थ से पूछा
0: जी।
1: तो कहते हैं कि रानी ने आधार कायस्थ के हाथों सोने का एक करेला भिजवाया था
0: जी।
1: खाने वाला करेला होता है
0: जी,
1: सोने का बना हुआ था वो करेला, ऐसा एक करेला भेजा। तो जब अकबर ने गढ़ा राज्य के बारे में पूछा तो आधार कायस्थ ने वह सोने का करेला उनके सामने रख दिया
0: जी।
1: जिसका मतलब ये था कि गढ़ा राज्य सोने की तरह संपन्न है, उसकी भूमि उबड़ खाबड़ है जैसे करेले की होती है
0: जी।
1: लेकिन यदि हमसे शत्रुता की तो हम करेले से
0: कम कड़वे नहीं है। क्या बात है, तो ये तो बड़ी दूरदर्शिता की बात थी। बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या इन्हीं विशेषताओं के चलते और ये जो संदेश कुछ ऐसे भेजे गए, क्या इसी के चलते मुगलों और गोंड राज्य के बीच ठन गई?
1: हाँ बिल्कुल, ये जो बातें हो रही थी ये धीरे धीरे दोनों ही राज्यों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही थी। मुगल दरबार में ये सुखबुकाहट थी कि गढ़ा की सीमाएं बड़ी सुदृढ़ होती जा रही हैं, रानी की प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ रही है, ये सब अकबर को एक चुनौती जैसा लग रहा था
0: जी। हाँ।
1: तो अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था आसफ खान
0: जी, बिल्कुल।
1: मालवा में तैनात था वो, और आसफ खान गढ़ा राज्य की गतिविधियां जितनी भी होती थी उसकी सूचना मुगल दरबार तक पहुँचाया करता था। तो रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के पास एक विशाल और सुसज्जित सेना थी। सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 1,000 युद्ध हेतु प्रशिक्षित हाथी थे और पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी सेना थी
0: जी।
1: तो आसफ खान ने रानी के लोक उपयोगी कार्य जो थे, तालाब बन रहे हैं, मठ मंदिर बन रहे हैं, इस सब की सूचना, एक एक सूचना मुगल दरबार तक पहुंचती रही जो दरबारी लेखक है उनके विवरणों में मिलती है। और रानी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सुदृढ़ सीमाएं सभी को बेचैन कर रही हुई थी।
0: पूजा जी, क्या इन सब सूचनाओं के अतिरिक्त बढ़ती हुई जो धन संपदा थी, जो समृद्धि थी गढ़ा राज्य की, क्या वो भी शत्रुता का एक बड़ा कारण बनी?
1: बिल्कुल, धन तो सबको आकर्षित करता ही है, और कोई भी राज्य उसके पास कितना सुरक्षित धन है उस पर उसकी ताकत निर्भर करती है
0: जी।
1: तो गढ़ा तो हम देख ही रहे थे कि गढ़ा के पास शुरू से ही बात कर रहे हैं हम कि अकूत संपदा थी जी।
0: और इतनी कि अकबर जैसे राजा को, जिसके पास खुद ही अकूत संपदा थी, उसे यहाँ इतना धन देख करके जलन हुई।
1: बिल्कुल, तो इसकी पूरी खबर तो मुगल दरबार को पहुंची रही थी। रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ का जो किला है आज के नरसिंहपुर में
0: जी,
1: तो वहां पर अपनी सारा खजाना सुरक्षित रखवा दिया था। चौरागढ़ जो है एक दुर्गम किला है, हमने पहले भी बात की थी। इस किले को घेरते हुए और भी गढ़ हैं, जैसे फतेहपुर है, नमुआगढ़ है, भवरगढ़ है, पावागढ़ और देवरी है
0: जी।
1: तो ये एक सुरक्षित किला था, यहाँ पर सारा खजाना रखवा दिया गया
0: जी।
1: प्राकृतिक रूप से भी ये किला बहुत सुरक्षित था। तो गढ़ा राज्य की अकूत संपत्ति सालों से यहाँ सुरक्षित रखी हुई थी
0: जी।
1: लेकिन इस संपत्ति की सूचना मुगल सेनापति आसफ खान को लग गई और उसने दरबार में उसका बखान कर दिया
0: जी।
1: तो मुगल सम्राट अकबर के मन में उसके लिए लालच आ गया।
0: अच्छा।
1: और उनका ध्यान अब गढ़ा की संपत्ति पर था
0: जी।
1: लेकिन युद्ध का कारण सिर्फ संपत्ति नहीं थी बल्कि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे एक और कारण था, वो ये था कि उस समय हाथियों का बड़ा महत्व था
0: जी।
1: हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए होता था
0: जी,
1: प्रोसेशन के लिए होता था, अगर आप कहीं इरादा एक
0: शाना
1: शौकत के लिए होता था, सवारी के लिए होता था, खेलों के लिए होता था, प्रदर्शन के लिए होता था, तो प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी आवश्यकता होती थी। और ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में उस समय विंध्याचल पर्वत में, पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में खूब हाथी हुआ करते थे, इसके लिखित प्रमाण है। तो ये जो गोंड जनजाति थी ये हाथियों को प्रशिक्षित करने में बड़ी सिद्धस्त थी। तो इनके पास बड़े अच्छे किस्म के हाथी होते थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी होते थे। तो हमेशा से जो दिल्ली दरबार था वो इन हाथियों की चाह में रहता था। तो एक कारण ये भी था कि यहाँ के जो स्वस्थ और प्रशिक्षित हाथी थे वह भी मुगल दरबार चाहता था। यह भी युद्ध का एक बड़ा कारण बना
0: जी। और पूजा जी, एक और कारण की बात इतिहास में कुछ ऐसा देखने को मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि दक्कन में बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था, और यहाँ पर तो वैसे ही पुष्टिमार्गी संत जिनका आपने जिक्र किया, विट्ठल नाथ जी का प्रभाव हो चला था, तो क्या ये भी एक कारण था?
1: मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा कारण था। जैसा आपने कहा, अकबर के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाथी बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकते, एक कारण हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण उस समय शायद सबसे बड़ा कारण था, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देख रहे हैं कि पुष्टिमार्गीय संत विट्ठलनाथ जी के प्रभाव से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था और बड़ी संख्या में धर्मांतरण रोके जा रहे थे, और मुगल दरबार को यह गवारा नहीं था, जिसका परिणाम आसफ खां के द्वारा गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। ये सब मिलकर आक्रमण का कारण बने।
0: पूजा जी, जिस तरह से रानी ने वहां पर एक सोने का करेला भेजा था, आपने जिक्र किया, सफेद हाथी भेजा था, आधार कायस्थ वहां पर गए थे, कुछ ऐसा ही अकबर ने भी रानी को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई ऐसी कोई चीज यहाँ भेजी थी, ऐसा सुनने में आता है?
1: अकबर की ओर से रानी दुर्गावती को लज्जित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे थे, और जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए
0: जी।
1: तो एक बड़ी प्रसिद्ध किंवदंती है कि रानी को ये जताने के लिए कि वो एक महिला है
0: जी।
1: और उसे घर के काम संभालने चाहिए, शासन नहीं
0: जी।
1: अकबर ने अपने दूत से रानी को एक चरखा भिजवाया, सूत काटने का चरखा
0: जी।
1: तो जिसका मतलब था कि तुम एक साधारण स्त्री हो, सूत काटो और अपना घर चलाओ, यहाँ क्या कर रही हो
0: जी।
1: तो रानी भी कोई किसी से कम तो थी नहीं,
0: बिल्कुल।
1: तो उनका मनोबल तोड़ना भी आसान नहीं था
0: जी।
1: तो अकबर ने उनको चरखा भेजा था, रानी ने उनको एक पिंजन भेजा
0: जी।
1: पिंजन मतलब होता है जो रुई काटने का एक सुई होती है, पिंजन।
0: अच्छा,
1: हाँ, जिससे सूत बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जिसका अर्थ ये था कि अगर मेरा काम चरखा काटना है तो तुम्हारा काम रुई पिंजना है, रुई धुनना है, तो तुम अपना काम करो।
0: वाह भाई वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से लेकिन तनातनी और बढ़ती चली गई होगी।
1: हाँ, दोनों राज्यों के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। सेनापति आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के खूब कान भरे
0: जी।
1: इधर गोंड राज्य से मंत्री आधार कायस्थ युद्ध टालने का भरपूर प्रयास करते रहे, किंतु आसफ खान रीवा राज्य को जीत चुका था, जो कि गढ़ा राज्य की सीमा पर था, यानी कि आसफ खान गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर घात लगा के बैठ गया था। तो जल्दी ही इसका परिणाम हमको युद्ध के रूप में देखने को मिलने ही वाला था।
0: मतलब दुश्मन बिल्कुल किले के बाहर आ ही चुका था लगभग, और अब कभी भी युद्ध का बिगुल यहाँ पर फूंका जा सकता था मुगलों की ओर से।
1: जी हाँ।
0: चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और अब हम अपनी अगली कड़ी में ये जानेंगे कि क्या युद्ध का बिगुल फूंका गया, अब युद्ध होता है या नहीं, आपको बताएंगे हम अगली बार। पूजा जी हमारे साथ अगली बार भी बनी रहेंगी, डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में उपयोगी जानकारियां दे रही हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को, हमारी जानकारी के भंडार को बढ़ा रही हैं। तो श्रोताओं, बने रहिएगा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। मैं संदीप शर्मा आपसे आज इजाजत लेता हूं, आप सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। इतिहास के पन्नों से।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
1: जी।
0: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहाँ क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है?
1: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
0: जी।
1: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें उसे
0: जी।
1: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके
0: जी। जी
1: जी।
0: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
1: जी।
0: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता? कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
0: जी।
1: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
0: जी,
1: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
0: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
1: जी।
0: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
1: जी जी।
0: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता?
1: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
0: दृष्टि कैसी हो?
1: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है। योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह हैं, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है, जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डुबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहाँ तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
0: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
1: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
0: एक तरह
1: लोग
0: से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
0: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा, यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांग जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
0: कोई उथल पुथल,
1: नहीं है। तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं, इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
0: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो,
1: बिल्कुल ठीक है, वो वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है
0: जी,
1: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है, तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो हैं जहां तरंगे शांत हो गई हों और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
1: जी,
0: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
1: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा, विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है। ये सात्विक बल हैं
0: जी।
1: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा। और लक्ष्मी को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
0: बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो,
1: सात्विक बल के साथ हो।
0: जी जी।
1: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
0: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है, और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियमाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है
0: जी। अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
1: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
0: नहीं
1: है
0: देखा।
1: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि ये संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
0: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा,
1: जी
0: ऐसा क्यों कहा?
1: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते ना कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
0: जी,
1: एक दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
0: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
1: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा। और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
0: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें।
1: जी, इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिरजीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है, ये भी सत्य नहीं है राम जी कह रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है, जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षण जीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है, जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है, राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
0: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
1: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है, क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे, जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने, अपने विवेक को जागृत करने के।
0: जी जी, तो क्षण भंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
1: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें, तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है, और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है, क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है, इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है।
0: जी।
1: तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
0: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: भारत की पहचान केवल उसके इतिहास की प्राचीनता से नहीं होती। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति, उन महापुरुषों में निहित होती है जो समय के प्रवाह में उसकी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। कुछ व्यक्तित्व तलवार से इतिहास रचते हैं, कुछ नेतृत्व से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और कुछ अपने चिंतन तथा शोध से एक पूरी सभ्यता को स्वयं अपने बारे में सोचने का नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम ऐसे ही मनीषी की जीवन यात्रा को जानेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को केवल अध्ययन का विषय नहीं माना बल्कि उसे भारत की जीवित चेतना के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को नए अर्थ दिए, संग्रहालयों में सुरक्षित मूर्तियों को इतिहास की भाषा बना दिया, भारतीय कला साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति के बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान की नई दिशाएं खोल दीं। आज के हमारे भारत विभूति हैं वासुदेव शरण अग्रवाल।
2: उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक भारत के बौद्धिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ओर देश स्वतंत्रता की आकांक्षा से प्रेरित हो रहा था तो दूसरी ओर भारतीय विद्वानों के मन में अपने अतीत को समझने की तीव्र जिज्ञासा भी जन्म ले रही थी। लंबे समय तक भारत के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन विदेशी दृष्टि से किया जाता रहा था, भारतीय स्रोतों को सीमित महत्व दिया जाता था और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अक्सर केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित करके देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ भारतीय विद्वानों ने यह अनुभव किया कि यदि भारत को सही अर्थों में समझना है तो उसके अपने ग्रंथों, उसकी भाषाओं, उसकी कला, उसके पुरातात्विक अवशेषों और उसकी लोक परंपराओं को एक साथ पढ़ना होगा। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं होता, वो समाज की स्मृति होता है, संस्कृति उसका आत्मबोध होती है और साहित्य उस आत्मा की अभिव्यक्ति। इन्हीं विचारों के बीच एक ऐसा युवा विद्वान उभर कर सामने आया जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने के लिए समर्पित कर दिया।
1: उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार शिक्षित था, भारतीय संस्कारों से समृद्ध था, घर का वातावरण अध्ययन और अनुशासन से भरा हुआ था। यही वातावरण उस बालक के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल में जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते थे, उन्हें इतिहास की घटनाएं आकर्षित करती थीं, प्राचीन कथाएं उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती थीं, संस्कृत भाषा की संरचना उन्हें आश्चर्यचकित करती थी और भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ उन्हें लगातार अपनी ओर खींचते थे। कहा जाता है कि प्रत्येक महान शोधकर्ता के भीतर एक जिज्ञासु बालक हमेशा जीवित रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के भीतर भी वही जिज्ञासा जीवन भर बनी रही। वे किसी तथ्य को केवल स्वीकार नहीं करते थे, उसके पीछे छिपे प्रमाणों को भी खोजते थे, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते थे और फिर उसे व्यापक भारतीय परिपेक्ष में रखकर देखते थे।
2: श्रोताओं, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका अध्ययन निरंतर आगे बढ़ता गया। विद्यार्थी जीवन में ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी रुचि सामान्य विषयों की अपेक्षा भारतीय इतिहास, संस्कृत साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन में अधिक है। उस समय देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन का नया वातावरण बन रहा था। नई पीढ़ी अपने अतीत को आधुनिक शोध पद्धतियों के माध्यम से समझना चाहती थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इसी दिशा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान इतिहास, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। बाद में शोध कार्य के लिए उन्होंने ऐसा विषय चुना जिसने उनके संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। महर्षि पाणिनि, भारतीय व्याकरण के महान आचार्य, सदियों से विद्वान उनकी अष्टाध्यायी का अध्ययन भाषा विज्ञान के महान ग्रंथ के रूप में करते आए थे, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसमें कुछ और देखा। उन्हें लगा कि यह ग्रंथ केवल व्याकरण का नियम संग्रह नहीं है, इसके भीतर उस समय के भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी सुरक्षित है। और यहीं से आरंभ हुई उनके जीवन की वो शोध यात्रा जिसने आगे चलकर भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक नया आधार प्रदान किया।
1: उस समय अधिकांश लोगों की दृष्टि में अष्टाध्यायी एक महान व्याकरण ग्रंथ थी, भाषा के नियमों को समझने का अनुपम आधार। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसे केवल व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसके प्रत्येक सूत्र के पीछे छिपे जीवन को पहचानने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि किसी ग्रंथ में नगरों का उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख है, व्यवसायों का उल्लेख है, शिक्षा, कृषि, शिल्प, उत्सव और सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है, तो वो केवल भाषा का ग्रंथ नहीं रह जाता, वो अपने समय का सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन जाता है। इसी दृष्टि ने उनके शोध को एक नई दिशा दी। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों में बिखरी हुई सूचनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ किया, एक एक संदर्भ को अन्य प्राचीन स्रोतों से जोड़कर देखा, जहां आवश्यकता हुई वहां पुरातात्विक प्रमाणों का सहारा लिया, साहित्य, इतिहास और पुरातत्व को एक साथ रखकर उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन का ऐसा स्वरूप सामने रखा जो उस समय तक बहुत कम देखने को मिला था।
2: जी हाँ, हालांकि ये कार्य सरल नहीं था। इसके लिए केवल संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इतिहास की समझ भी चाहिए थी, भारतीय समाज की संरचना का अध्ययन भी आवश्यक था, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों और कला के इतिहास का भी गहरा ज्ञान अपेक्षित था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सभी क्षेत्रों का गंभीर अध्ययन किया और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी विद्वान के रूप में विकसित होता गया। उनका विश्वास था कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उपलब्ध प्रमाणों का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अनुमान के स्थान पर साक्ष्य और कल्पना के स्थान पर तर्क को महत्व देना चाहिए। यही कारण था कि उनके शोध को विद्वानों ने अत्यंत विश्वसनीय माना। उनके लेखन में भावनाएं थीं, लेकिन भावुकता नहीं थी। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन तथ्यों से समझौता नहीं था।
1: उनके अध्ययन का दायरा लगातार विस्तृत होता गया। अब उनकी रुचि केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, वे प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करने लगे, मंदिरों की स्थापत्य परंपरा को समझने लगे, सिक्कों, अभिलेखों और पुरावशेषों को ध्यान से देखने लगे। उनके लिए ये सभी वस्तुएं इतिहास की मौन साक्षी थीं। यदि इन्हें सही दृष्टि से पढ़ा जाए तो ये अपने समय की अनेक अनकही बातें बता सकती थीं। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय कला को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं देखा, उनके लिए प्रत्येक प्रतिमा अपने समय के समाज का परिचय थी। किसी मूर्ति की मुद्रा, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी निर्माण शैली, इन सब के भीतर उस युग की सांस्कृतिक चेतना छिपी हुई थी। वे इन संकेतों को पढ़ते थे और फिर उन्हें भारतीय इतिहास की व्यापक धारा से जोड़कर देखते थे।
2: धीरे धीरे विद्वानों के बीच उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि ये युवा शोधकर्ता केवल नई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई पद्धति विकसित कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इतिहास को अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता। साहित्य, कला, पुरातत्व, भाषा और समाज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक को समझना है तो दूसरे को भी साथ लेकर चलना होगा। यही समग्र दृष्टि आगे चलकर उनके संपूर्ण लेखन की पहचान बनी। आने वाले वर्षों में उन्होंने जिन संस्थानों में कार्य किया, जिन ग्रंथों की रचना की और जिन शोधों का नेतृत्व किया, उन सब में यही विचार स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की संस्कृति एक अखंड परंपरा है। उसे समझने के लिए केवल अतीत को देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके निरंतर प्रवाह को पहचानना भी आवश्यक है।
1: लेकिन ये तो उनके जीवन की केवल शुरुआत थी। अभी उन्हें संग्रहालयों की दुनिया में प्रवेश करना था, भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन को नई दिशा देनी थी, देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और अपने शोध तथा लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलानी थी। यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वो अध्याय जिसने वासुदेव शरण अग्रवाल को केवल एक विद्वान नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सजग प्रहरी के रूप में स्थापित कर दिया।
2: बहुत से लोग उन्हें केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मानते हैं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक थी। वे मानते थे कि संग्रहालय केवल अतीत को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है, वे ऐसी जीवंत पाठशालाएं हैं जहां बिना किसी शब्द के इतिहास स्वयं बोलता है, जहां पत्थर भी स्वयं की कहानी कहते हैं और जहां संस्कृति केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। यही सोच उन्हें संग्रहालय विज्ञान की ओर ले गई। उनके लिए ये केवल एक नया कार्यक्षेत्र नहीं था, यह भारतीय संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप में समझने का अवसर था।
1: सन 1931 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मथुरा संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। उस समय मथुरा संग्रहालय देश के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिना जाता था। यहाँ कुषाण, शुंग, गुप्त और अन्य अनेक कालों की दुर्लभ मूर्तियां सुरक्षित थीं। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में मथुरा शैली का विशेष स्थान था, लेकिन उसके व्यवस्थित अध्ययन और सांस्कृतिक विश्लेषण की दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना शेष था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने संग्रहालय की प्रत्येक दीर्घा का अध्ययन किया, प्रत्येक प्रतिमा को ध्यान से देखा, उसके निर्माण काल, उसकी शैली, उसके प्रतीकों और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास किया। उनके लिए ये केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, ये भारतीय कला के माध्यम से भारतीय सभ्यता को पढ़ने का अवसर था।
2: श्रोताओं, मथुरा की धरती सदियों से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बौद्ध, जैन और वैष्णव परंपराओं की असंख्य कलाकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन धरोहरों को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं किस प्रकार एक ही भूमि पर विकसित हुई और कैसे उन्होंने भारतीय कला को समृद्ध बनाया।
1: लगभग एक दशक तक मथुरा में कार्य करने के बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान केवल एक संग्रहालय अधिकारी के रूप में नहीं रही, वे भारतीय कला और संस्कृति के ऐसे विद्वान बन चुके थे जिनकी दृष्टि इतिहास के अनेक स्रोतों को एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। उनके शोध ने ये सिद्ध कर दिया था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साहित्य, पुरातत्व, कला और इतिहास को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यहीं से उनके जीवन की यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ी। अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां निभानी थी, भारतीय संग्रहालयों के विकास में नई भूमिका निभानी थी और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संस्थानों को नई दिशा देनी थी।
2: सन 1940 में वासुदेव शरण अग्रवाल को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय का दायित्व सौंपा गया। ये उनके ज्ञान, अनुभव और कार्य कुशलता की सार्वजनिक स्वीकृति थी। मथुरा में किए गए उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल संग्रहालयों का संचालन करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की असाधारण क्षमता रखते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद भी उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संग्रहालय को केवल वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं माना, बल्कि उसे शिक्षा और शोध का सक्रिय केंद्र बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी संग्रहालय का वास्तविक महत्व उसके संग्रह की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो समाज को अपने इतिहास से कितना जोड़ पाता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रतिमा को देखकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगे, यदि कोई शोधार्थी किसी अभिलेख से इतिहास की नई कड़ी खोज ले और यदि कोई सामान्य नागरिक अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व महसूस करे, तभी संग्रहालय अपना उद्देश्य पूरा करता है।
1: इसी अवधि में उनका लेखन भी निरंतर आगे बढ़ता रहा। वे जहां एक ओर संग्रहालयों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर गंभीर शोध भी कर रहे थे। उन्होंने अनेक शोध लेख लिखे, व्याख्यान दिए और प्राचीन भारतीय जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनके अध्ययन का दायरा इतना व्यापक था कि इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला और संस्कृति के विद्यार्थी समान रूप से उनके कार्यों से लाभान्वित होने लगे।
2: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब वे दिल्ली से जुड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यों में सक्रिय हुए। स्वतंत्र भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में देश को ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी जो भारतीय विरासत को केवल सुरक्षित ही न रखें बल्कि उसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी करें। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों के विकास, पुरावशेषों के संरक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि भारतीय धरोहरों को केवल अतीत की वस्तुएं मानकर संग्रहित कर लेना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना और समाज तक उनका महत्व पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर भारतीय संग्रहालय आंदोलन की आधारशिला बनी।
1: वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व जितना गंभीर था उतना ही विनम्र भी था। वे मानते थे कि शोधकर्ता का पहला गुण जिज्ञासा है और दूसरा गुण धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी गंभीर अध्ययन संभव नहीं है। वे अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को हमेशा प्रमाण आधारित अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उनका विश्वास था कि इतिहास केवल कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए प्रत्येक तथ्य की सावधानी पूर्वक जांच आवश्यक होती है। यही कारण था कि उनके साथ कार्य करने वाले अनेक युवा शोधार्थी आगे चलकर भारतीय इतिहास, कला और पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान बने। वे केवल शिक्षक नहीं थे बल्कि शोध की संस्कृति विकसित करने वाले मार्गदर्शक भी थे।
2: धीरे धीरे वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन का पर्याय बनने लगा। देश के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और शोध संस्थानों में उनके कार्यों का सम्मान किया जाने लगा। लेकिन उनके लिए ये सब व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थी। वे मानते थे कि यदि उनके प्रयासों से भारतीय समाज अपनी संस्कृति को थोड़ा और गहराई से समझ सके तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अब उनके जीवन की यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाली थी जहां उनका लेखन भारतीय सांस्कृतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर बन गया और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गए।
1: वासुदेव शरण अग्रवाल मानते थे कि यदि शोध केवल पुस्तकों और अभिलेखों तक सीमित रह जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो समाज तक पहुंचे, नई पीढ़ी को प्रेरित करे और लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। यही कारण था कि उन्होंने अपने शोध को केवल विद्वानों के बीच सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसी भाषा और ऐसी शैली अपनाई जिसमें गंभीर विषय भी सहज रूप से समझे जा सकें। उनके लेखन में गहन अध्ययन का आधार था लेकिन प्रस्तुति में सरलता थी। वे कठिन विषयों को भी इस प्रकार समझते थे कि पाठक केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करता था बल्कि उस विषय के साथ आत्मीय रूप से जुड़ भी जाता था। यही विशेषता उन्हें अपने समय के अनेक विद्वानों से अलग पहचान देती है।
2: उनकी सबसे महत्वपूर्ण विद्वत उपलब्धियों में महर्षि पाणिनि पर किया गया शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्षों के अध्ययन और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी केवल संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, उसके भीतर तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यापार, प्रशासन, शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य संकेत सुरक्षित हैं। इन संकेतों को एक सूत्र में जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य था लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने धैर्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर इसे संभव बनाया। बाद में यही शोध एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ और भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस कृति ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों का अध्ययन आधुनिक शोध पद्धति के साथ किया जाए तो इतिहास के अनेक नए आयाम सामने आ सकते हैं।
1: पाणिनि के अतिरिक्त उन्होंने महाभारत, पुराण, संस्कृत साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर भी गंभीर अध्ययन किया। उनके लिए ये ग्रंथ केवल धार्मिक या साहित्यिक कृतियां नहीं थे, वे इन्हें भारतीय समाज के विकास की जीवंत स्मृतियों के रूप में देखते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि कला को उसके सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर पढ़ा जाए तो वो इतिहास की अनेक अनसुलझी कड़ियों को स्पष्ट कर सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन

0: चरण होती है और जब तक मन में प्रश्न जीवित रहते हैं तब तक ज्ञान की यात्रा भी आगे बढ़ती रहती है। अध्यापन के दौरान वे अपने विद्यार्थियों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते थे, वे उन्हें प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक स्रोत का अपना महत्व है। यदि इन सभी स्रोतों को एक साथ पढ़ा जाए तभी इतिहास की संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अपने लंबे अध्ययन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। भारतीय कला संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य और इतिहास पर लिखी गई उनकी पुस्तकों ने शोध की नई पीढ़ी को दिशा प्रदान की। भारतीय कला और संस्कृति पर कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए उनके अध्ययन आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। समय बीतने के साथ अनेक नई शोध पद्धतियां विकसित हुईं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा स्थापित प्रमाण आधारित अध्ययन की परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: उनकी विद्वत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित दायित्व सौंपे गए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और शोध मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जाता था। वे जहां भी जाते वहां केवल व्याख्यान नहीं देते थे बल्कि लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की नई जिज्ञासा भी जगाते थे। भारतीय संस्कृति पर उनके मौलिक लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक लेखक के रूप में उनकी उपलब्धि नहीं था बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में उनके असाधारण योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति भी था। ये उस साधना का सम्मान था जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का ध्येय बना लिया था। समय के साथ वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक ऐसे विद्वान के रूप में स्थापित हो चुका था जिसकी पहचान किसी एक विषय तक सीमित नहीं थी। वो इतिहासकार भी थे, कला मर्मज्ञ भी, पुरातत्व के गंभीर अध्येता भी और भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याता भी जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का सतत प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में ये सिद्ध किया कि संस्कृति केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं होती बल्कि वो समाज की जीवित चेतना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहती है।
0: उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए केवल अतीत का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसे वर्तमान जीवन में भी अनुभव करना आवश्यक है। वे अक्सर इस बात पर बल देते थे कि हमारी परंपराएं केवल ग्रंथों में सुरक्षित नहीं हैं, वे हमारे उत्सवों में हैं, वे हमारे लोकगीतों में हैं, हमारी भाषाओं में हैं, हमारे शिल्प में हैं और हमारे दैनिक जीवन की अनेक छोटी छोटी परंपराओं में भी जीवित हैं। यदि हम इन्हें पहचान सकें तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता को सहज रूप से समझ सकते हैं।
1: विद्वानों का मानना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक समन्वित दृष्टि प्रदान की। उन्होंने ये स्थापित किया कि जब तक इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला, भाषा और लोक परंपराओं का संयुक्त अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय सभ्यता की व्यापकता को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है।
0: दोस्तों, ज्ञान के प्रति उनकी साधना जीवन के अंतिम वर्षों तक चलती रही। उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि अब सीखने के लिए कुछ शेष नहीं है। प्रत्येक नया प्रमाण, प्रत्येक नया शोध और प्रत्येक नई खोज उन्हें उतनी ही उत्सुकता से आकर्षित करती थी जितनी उनके विद्यार्थी जीवन में करती थी। शायद यही किसी सच्चे शोधकर्ता की पहचान भी होती है कि वो जीवन भर स्वयं को विद्यार्थी मानकर ही ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन इसी निरंतर साधना का उदाहरण है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि यदि अध्ययन के साथ समर्पण जुड़ जाए और ज्ञान के साथ विनम्रता बनी रहे तो व्यक्ति केवल एक सफल विद्वान ही नहीं बनता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा भी बन जाता है।
1: सन 1966 में वासुदेव शरण अग्रवाल का देहावसान हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय सांस्कृतिक जगत ने एक ऐसे मनीषी को खो दिया जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति की साधना के लिए समर्पित कर दिया था। किंतु कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहते, वे अपने विचारों, अपने लेखन और अपने कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के बीच निरंतर जीवित रहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल भी ऐसे ही युगदृष्टा विद्वान थे जिनकी बौद्धिक विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को दिशा प्रदान कर रही है। आज जब भारतीय इतिहास, कला, पुरातत्व और संस्कृति पर गंभीर अनुसंधान की बात होती है तब उनके कार्यों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से किया जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पद्धति, प्रमाणों के प्रति उनका आग्रह और भारतीय दृष्टि से संस्कृति को समझने का उनका प्रयास आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
0: भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनका योगदान केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। संग्रहालयों में उनके द्वारा विकसित की गई कार्य प्रणालियां, भारतीय कला के प्रति उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की उनकी पद्धति आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि किसी राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माण करना है तो उसे अपने अतीत को सम्मान पूर्वक समझना होगा। इतिहास केवल स्मरण करने का विषय नहीं है, उससे सीखने का विषय भी है।
1: वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने पूरे जीवन से यही संदेश दिया कि जो समाज अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी कला, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को समझता है वही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ज्ञान की साधना कभी समाप्त नहीं होती। जिज्ञासा, अध्ययन, विनम्रता और सत्य की खोज, यही किसी भी विद्वान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इन्हीं मूल्यों के कारण वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के उन अमर अध्येताओं में गिने जाते हैं जिनका योगदान समय बीतने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होता चला गया।
0: तो दोस्तों, भारत विभूति के आज के संक में हमने जाना एक ऐसे विलक्षण विद्वान को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को देखने की दृष्टि बदल दी, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों, कला, पुरातत्व, संग्रहालयों और लोक परंपराओं को एक सूत्र में जोड़कर ये बताया कि भारत की सभ्यता एक अखंड सांस्कृतिक यात्रा है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ज्ञान की सबसे बड़ी सार्थकता तभी है जब वो समाज को उसकी जड़ों से जोड़ सके और राष्ट्र के आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना सके। आइए भारत की इस महान विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक चेतना के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
1: इसी संदेश के साथ हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के साथ। उससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन प्रमिला मुंशी दिवाकर
0: और मैं संदीप शर्मा,
1: लेखन पुष्पक श्रीवास्तव का। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के ठीक 10 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं और अब समय है कार्यक्रम परिक्रमा का।

श्रोताओं, जन्माष्टमी के मौके पर श्रीजी कला समिति की ओर से शुक्रवार को करुणाधाम आश्रम में कथक शैली पर आधारित षड ऋतु कृष्ण लीला की प्रस्तुति हुई। प्रियंका चौरे के निर्देशन में 21 कलाकारों ने श्री कृष्ण राधा के 6 ऋतुओं से जुड़ी लीलाओं को नृत्य, भाव, ताल और अभिनय के समन्वय से मंच पर साकार किया। वर्षा ऋतु में राधा कृष्ण के झूला झूलने और बारिश का आनंद लेने का प्रसंग दिखाया गया। शरद ऋतु को रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण राधा के प्रेम और भक्ति को प्रस्तुत किया गया। पहेलियों के जरिए राधा कृष्ण के हास्य विनोद का प्रसंग दिखाया गया हेमंत ऋतु में। वहीं प्रेम और भावों की अभिव्यक्ति को कथक के जरिए मंच पर दिखाया शिशु ऋतु में। बसंत ऋतु की बात करें तो राधा कृष्ण और सखियों की रंगों और उमंग से भरी होली प्रस्तुत की गई। वहीं राधा कृष्ण और सखियों के बीच अंताक्षरी का प्रसंग मंच पर साकार किया ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करके।

आइए अब चलते हैं रंग श्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में। रंगमंच प्रेमियों के लिए शहर में 5 दिवसीय 16वें एकता नाट्य समारोह का आयोजन आज से किया जा रहा है। एकता मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच के तत्वाधान में होने वाले समारोह में रोजाना शाम को 6:30 बजे एक नाटक का मंचन होगा। आयोजन रंग श्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में किया जाएगा। समारोह की शुरुआत शनिवार को हास्य नाटक जुकाम जारी है से होगी। सभी नाटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर जैसे ही आवाज गूंजी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दर्शकों के बीच भी उत्साह दिखाई देने लगा। रासलीला समारोह का शुक्रवार को इसी कृष्णमय माहौल में समापन हुआ। अंतिम दिन मंच पर कन्हैया के जन्म की समाचार से गोकुल में छाई खुशी का दृश्य था। नंद बाबा के आंगन में बधाइयां, यशोदा का वात्सल्य और ग्वाल वालों की उमंग ब्रज के कलाकारों ने लोक शैली में दृश्यों को जीवंत किया। महाराज में शरद पूर्णिमा की रात, यमुना का किनारा और बांसुरी की धुन के बीच गोपियों का कृष्ण की ओर खींचे चले जाने की प्रस्तुति का प्रमुख आकर्षण रहा। मथुरा के श्री माधव आचार्य के निर्देशन में कलाकारों ने 7 दिनों में बालकृष्ण की माखन चोरी से लेकर राक्षसों के वध और राधा कृष्ण के प्रसंगों तक को मंच पर उतारा। रासलीला के बाद दिल्ली की तृप्ति शाक्य और साथियों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में अफसाने का अफसाना के अंतर्गत स्त्री विमर्श और संस्कारों के बदलते हुए कथानक विषय पर कार्यक्रम आज शनिवार को होगा। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे संस्कृति भवन मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में आयोजित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को जब मथुरा की धरती पर भोपाल के कलाकारों ने कृष्णायन की प्रस्तुति दी तो मंच पर सिर्फ श्री कृष्ण की कथा नहीं मध्य प्रदेश से उनके 4 खास संबंध भी जीवंत हुए। AI विजुअल्स, लाइव म्यूजिक, कथा कहन और मॉडर्न स्टेज तकनीक के मेल से तैयार इस संगीतमय प्रस्तुति को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा में आयोजित किया। भोपाल की टीम के लिए ये खास उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश में तैयार हुई प्रस्तुति अब कृष्ण की जन्मभूमि तक पहुंची। कृष्णायन की खासियत ये है कि इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े मध्य प्रदेश के 4 प्रसंगों को केंद्र में रखा गया है। उज्जैन में गुरु सांदीपनि से शिक्षा और सुदामा से मित्रता, सुदर्शन चक्र से जुड़ा मध्य प्रदेश का प्रसंग और रुक्मणी की कथा, इन प्रसंगों को संगीत और कथा वाचन के साथ AI से तैयार किए गए विजुअल्स के जरिए मंच पर उतारा गया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देश की अलग अलग संस्कृतियों को सहेजने का काम होता है। इसी श्रृंखला में 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे से केरल के प्रसिद्ध ओणम उत्सव का विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केरल के पारंपरिक पुजारी संतोष शांति संग्रहालय परिसर में केरल की पारंपरिक धरोहरों भद्रकाली अम्बलम मंदिर, सर्वकाबू पुनीत वन तथा सर्पनौका चुंडन वल्लम, पारंपरिक केरल नौका स्थल पर पूरे विधि विधान से चेनडा वादन और मंत्रोच्चार के साथ ओणम का पावन अनुष्ठान शुरू करेंगे। मानव संग्रहालय के निदेशक डॉ. अमिताभ पांडे ने बताया कि ओणम केरल वासियों का सबसे प्रमुख और उल्लासपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है, जो समानता, प्रेम, बंधुत्व, समृद्धि और सामाजिक एकता का शाश्वत संदेश देता है। मैनिट के 67वें फाउंडेशन डे के अवसर पर स्पिक माइके की ओर से आयोजित गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी की कथक प्रस्तुति हुई। जन्माष्टमी के अवसर पर हुई इस प्रस्तुति में उन्होंने कथक के माध्यम से श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों का कदम ताल भाव और नृत्य के जरिए मनोहारी चित्रण किया। प्रस्तुति के अगले चरण में पंडित गंगानी ने कथक के माध्यम से वर्षा ऋतु को जीवंत किया। बादलों की गरज, बिजली की चमक, प्रकृति में नवसृजन और मानव जीवन पर वर्षा के प्रभाव को भावभंगिमाओं और नृत्य की विविध मुद्राओं के माध्यम से दिखाया। इसके बाद उन्होंने शुद्ध कथक की संरचना और उसकी बारीकियों से दर्शकों को परिचित कराया। तीन ताल परन सहित अलग अलग तकनीकी पक्षों की प्रस्तुति के दौरान तबले के साथ उनकी शानदार जुगलबंदी ने माहौल को रोमांचित कर दिया। दूसरी तरफ तुलसी साहित्य अकादमी की सृजन श्रृंखला 61 के तहत कवि डॉ. अशोक तिवारी अमन के महाकाव्य भगवान परशुराम का विमोचन हुआ। महाकाव्य पर चर्चा के साथ लोक साहित्य पर केंद्रित रचनाओं का काव्य पाठ भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार चरणजीत सिंह कुकरेजा, सारस्वत अतिथि अशोक निर्मल, विशिष्ट अतिथि अशोक धमनिया, डॉ. राजेश श्रीवास्तव, कर्नल डॉ. गिरिजेश सक्सेना और कार्यक्रम संयोजक सुरेश पटवा रहे। नगर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गौरी शंकर शर्मा गौरीश, डॉ. राजेश तिवारी और महेश सक्सेना भी उपस्थित रहे। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे थे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की। परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 MHz पर। देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट में रासलीला समारोह।

कि भाव है ढप बाजो रे छेल मतवारे को। बड़े बड़े ढप होते हैं और हमारे यहाँ चौपाई निकलती है, उनको बजाते हुए गाते हुए मनसुखा जा रहे हैं।

0: करके जोर से बोले,
1: हो हो हो हो होरी है, नंदगान के छोरा है और बरसाने की छोरी है, हो

0: बोल राधा रानी सरकार की जय।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के छठे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र रेडियो कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानी रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने
1: नमस्कार, ये हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओ, हमारा देश साधु संतों और ज्ञानियों का देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर धर्म, हर आस्था और हर जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत से संतों और साधुओं ने अपने देश भारत की प्रगति और उसकी सेवा के लिए अपना पूरा जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कुछ संत ऐसे भी थे जो विदेशी थे, लेकिन सदा के लिए भारत की भूमि में ही रच बस गए। ऐसे ही कुछ नामों में से दो नाम हैं, सिस्टर निवेदिता और मदर टेरेसा। ये एक बार यहां आए तो फिर इस पावन भूमि को छोड़कर नहीं गए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में मदर टेरेसा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे।

0: If you want a message of love to be heard, it has got to be sent out. To keep our lamp burning, we have to keep putting oil in it.
1: सच कहा था दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा ने। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करता रहे, तो इससे पहले प्रेम बांटना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दिया प्रकाश फैलाता रहे, तो आपको उसमें लगातार तेल डालते रहना होगा। कहते हैं कि आपके कर्मों की महक उसी तरह फैलती है जैसे पहाड़ों के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ प्रतिध्वनि गूंजती है। मदर टेरेसा की परोपकारी भावना के दिए ने हजारों लोगों के जीवन को रोशन किया। उनकी दया, सहिष्णुता, सहानुभूति की भावना ने पूरे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रेम से सराबोर कर दिया। उन्होंने कई चैरिटी होम्स बनाए जिनमें असहाय, गरीबों और जटिल बीमारियों से ग्रस्त लोगों को आश्रय दिया, उनका इलाज कराया। मदर टेरेसा को इसी भावना के लिए विश्व शांति नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसी महान विभूति का जन्म आज से करीब 100 साल पहले 26 अगस्त 1910 में अल्बेनिया के स्कोप्स मैसेडोनिया स्थान पर हुआ था। मदर टेरेसा का मूल नाम एग्नेस गोंगजा बोजेग्ज्यू था। वो अपने 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। उन्हें शुरू से ही ईसाई मिशनरीज को देखना बहुत अच्छा लगता था।
2: फूल दे दे, नहीं तो मारूंगा।
3: रहने दे, तेरे जैसा फूल फूल लेकर क्या करेगा।
4: चुप भी रहो। अरे तुम्हारे साथ एग्नेस थी, वो कहाँ रह गई?
3: हमें क्या पता।
4: कैसे बहन भाई हो तुम? तुम छोटी बहन का हाथ नहीं पकड़कर रख सकते थे? हाँ
3: ठीक है, तुम लोग गेट के पास खड़े रहो और देखो शैतानी नहीं करना, मैं एग्नेस को देखकर आती हूँ।
4: उसके पापा पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं? एक मिनट भी चैन नहीं।
3: कहाँ ढूंढूं एग्नेस को? अरे चर्च तो खाली हो गया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या करूं मैं?
4: फादर से जाकर पूछती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, यही करती हूँ।
3: अरे ये तो फादर से बातें कर रही है। एग्नेस, एग्नेस।
5: ओह मॉम, लुक मॉम, फादर कह रहे हैं कि मैं भी उनकी जैसे बन सकती हूँ। हाँ
3: व्हाट? फादर ये क्या पूछ रही है आपसे?
6: मुझे इसकी बातों से लगा कि इसे ईसाई मिशनरी बनने की इच्छा है।
5: यस मॉम।
3: क्या एग्नेस, तुम मिशनरीज में शामिल होना चाहती हो? अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
5: मॉम मैं 12 साल की हो गई हूँ। मॉम मुझे अच्छा लगता है जीसस के बताए रास्तों पर चलना और लोगों को समझाना। यस मॉम, यस मैं ईसाई मिशनरीज के ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ बस।
3: ओके ओके एग्नेस, देखो बेटा हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे।
5: हाँ
3: हाँ ठीक है ना। फादर को बाय बोलो और चलो घर।
5: ओके फादर, फादर मेरे बारे में बाद में सोचिएगा। हाँ
6: बाय माय चाइल्ड। लिसन लिसन।
3: यस फादर।
6: इसे डांटिएगा मत, बहुत प्यारी बच्ची है, पता नहीं यीशु ने क्या सोचा है। गॉड ब्लेस हर।
3: ओके फादर।

0: बहुत सी बातें स्वयं भविष्य का निर्धारण कर देती हैं। 12 साल की मदर टेरेसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। केवल 18 वर्ष की आयु में ही सन 1928 में मदर टेरेसा ने अल्बेनिया का अपना घर छोड़ दिया और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक एक आयरिश नन कम्युनिटी में शामिल हो गईं। इनका कार्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार था और सन 1931 में मदर टेरेसा ने बाकायदा नन बनने की शपथ ली थी। भारत में आकर मदर टेरेसा सन 1931 से 1948 तक कलकत्ता के एक कॉन्वेंट स्कूल सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापिका रहीं, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं लगा।
1: अम्मा, अम्मा कुछ खाने को दे ना, अम्मा भूख लगी है।
2: अरे अरे हटो, छी छी छी, कितना गंदा है ये बच्चा, छी छी, दूर हट हट।
1: अम्मा अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे ना।
3: बच्चे कहाँ रहते हो तुम?
2: अरे इनके मुंह क्यों लग रही हो? गंदे लोग, गंदी बस्ती, हमें क्या करना है? कहीं भी रहे ये लोग, जल्दी चलो ना एग्नेस।
3: नहीं अली, नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या पता किस लिए भूखा है ये बच्चा। हो सकता है इसके माता पिता ही ना हो सकता है कि इसे घर वाले पूछते ना हो, इसलिए इसे भूखा रहना पड़ा हो, या कोई बीमार हो।
2: ओफो, इतनी डिटेल लेकर मैं इसके घर खाना देने थोड़ी जाऊंगी। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। हाँ
3: ठीक है, तुम जाओ। बच्चे कहाँ रहते हो तुम?
1: पहले कुछ खाने को दो।
3: ठीक है, चलो मैं तुम्हें ब्रेड और सब्जी लेकर देती हूँ। कहाँ है तुम्हारी बस्ती?
0: इतने करीब से लोगों का फटे हाल, गरीबी और गंदगी भरा जीवन देखकर मदर टेरेसा का मन करुणा से भर गया। कोई वहां कमजोर था तो कोई बीमार और कोई लाचार। जीवन जीने के साधन ना के बराबर थे और शिक्षा वो तो दूर दूर तक अपना दर्शन नहीं दे रही थी। मदर टेरेसा ने उसी क्षण सोचा कि अब से वो असहाय, लाचार और बीमार लोगों की सेवा ही करेंगी।

0: एग्नेस, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो?
1: यस फादर, मैं समझती हूँ कि केवल यहाँ पैसे वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाकर मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ईश्वर की निगाह में सब इंसान समान है, तो सबको एक जैसे सुविधा और प्यार क्यों नहीं मिलता फादर? एक जैसा जीने का मौका क्यों नहीं मिलता? शायद इसीलिए कि उसने हम लोगों को धरती पर भेजा है कि इस कार्य में हम उसकी सहायता करें। इसलिए फादर, मैं टीचिंग छोड़कर गरीब लोगों की सहायता करना चाहती हूँ।
0: एग्नेस, बट डू यू थिंक कि केवल तुम्हारी सहायता करने से इनके जीवन में सुधार आ जाएगा?
1: फादर, मैं मानती हूँ, इफ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन। मैं इसी तरह सोचकर ही गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ फादर।
0: बहुत अच्छे विचार हैं एग्नेस, लेकिन तुमने अपनी लाइफ की खुशहाली के बारे में भी कभी सोचा है?
1: फादर, जॉय इज अ नेट ऑफ लव बाय विच यू कैन कैच सोल्स। यही तो यीशु का प्रेम है और यही मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आऊं फादर, तो मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ, ट्रू चाइल्ड फादर। सच, मैं सच्ची संतान बन जाऊंगी। मैं इस तरह की चैरिटी करना चाहती हूँ फादर।
0: वेरी गुड। तो एग्नेस, तुम लोगों की मुस्कुराहट में अपनी खुशी तलाशना चाहती हो?
1: यस फादर।
0: मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारा फैसला अडिग है या केवल क्षणिक भावावेश में आकर कोई फैसला ले रही हो तुम। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करता हूँ। कभी भी लाइफ में मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच आ जाना, ओके?
1: थैंक यू वेरी मच फादर, थैंक यू सो मच,
0: गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू।
2: और मदर टेरेसा ने अपने जीवन की राह तलाश ली। उन्होंने पटना में मेडिकल मिशन सिस्टर्स का एक छोटा सा कोर्स किया और वापस कलकत्ता आकर उन गरीब बच्चों के लिए ओपन एयर स्कूल खोला, जिसमें गरीब से भी गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान कई स्वयंसेवक उनके साथ जुड़ गए। इस स्कूल को चर्च, संस्थाओं और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से वित्तीय सहायता भी मिली। उसके बाद उन्होंने वेटिकन की सहायता से मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य शुरू किया। उन्हें एक नया नाम टेरेसा मिला। अब अल्बेनिया की कुमारी एग्नेस भारतीय गरीबों की मदर टेरेसा बन गई थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में केवल उन्हीं लोगों को सहायता दी जाती थी जिन्हें उनके परिवार और समाज अपनाने को तैयार नहीं होते। इसे मात्र 12 लोगों से शुरू किया गया था। मदर टेरेसा के प्रेम भरे, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और सेवा भाव को देखते हुए पोप पॉल द सिक्स्थ ने प्रसन्नता ही नहीं जाहिर की बल्कि उनकी प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने मदर टेरेसा को और भी लोगों की सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता देने का वायदा किया। जनता के प्रति ममत्व के भाव को देखकर लोग उन्हें मदर ही कहने लगे थे। उन्होंने कलकत्ता में पहला होम बनाया।
1: मैं उन लोगों के लिए एक घर बनाना चाहती हूँ जिनका दुनिया में कोई न हो और वे मरणासन्न यानी मौत की हालत में हो।
3: मदर टेरेसा।
1: यस सिस्टर।
3: हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं?
1: देखो, जिस इंसान का कोई केयर करने वाला नहीं होता या किसी की बीमारी ऐसी है कि कोई उसके पास भी नहीं आना चाहता, ऐसे लोगों को हम अपने इस होम में रखेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी से नहीं, अकेलेपन और अपनेपन के अभाव में समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं।
3: जी
1: पता सिस्टर, दुनिया में सबसे भयानक बीमारी इंसान का अनवांटेड होना होता है, जिसे कोई नहीं चाहता पर जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिसे सबने भुला दिया है। मेरी समझ में यह सबसे बड़ी भूख है जो उस व्यक्ति की गरीबी से भी बड़ी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है।
3: यस मदर, आप सही कह रही हैं। तो मतलब हम लोग उस होम में लोगों का इलाज करेंगे?
1: हाँ सिस्टर, इलाज के साथ साथ प्रेम से उनकी देखभाल भी होगी। हो सकता है कि उनकी बीमारी ठीक होने लायक ना हो, लेकिन उनके अंतिम सांस के समय उन्हें ये तो नहीं लगेगा ना कि दुनिया में उन्हें कोई चाहता नहीं था। प्यार की भूख तो अमीर इंसान को भी होती है। पैसा तो इंसान कहीं से भी कमा सकता है सिस्टर, पर वो उससे प्रेम, चाहत और अपनापन नहीं खरीद सकता।
3: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मदर।
1: अगर कोई इंसान बच नहीं पाए तो अंतिम समय उसके पास वही सब होगा जो उसकी जाति और धर्म में होता है, यानी मुस्लिम के पास कुरान, हिंदू के पास गंगा जल, ईसाई लोगों के पास अंतिम रस्म। इट शुड बी अ ब्यूटीफुल डेथ।
3: आप सच में मरते हुए इंसान को एक ब्यूटीफुल डेथ का एहसास कराना चाहती हैं मदर?
1: हाँ सिस्टर, जो इंसानों की तरह जी तो नहीं पाया लेकिन मौत को एक फरिश्ते की तरह गले लगाएगा, लव्ड और वांटेड इंसान की तरह।
3: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मदर।
2: इंसानियत की कितनी सुंदर मिसाल है ये। इस घर को मदर टेरेसा ने नाम दिया था होम फॉर डाइंग, फिर नाम दिया काली घाट, बाद में उसका नाम निर्मल हृदय कर दिया गया था। यही नहीं, मदर टेरेसा के द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी कई बसेरे बनाए, जहां उन्हें खाना और दवा पट्टी के अलावा उनकी मेडिटेशन का भी इंतजाम है। इसे शांति नगर का नाम दिया गया। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4,000 से भी अधिक नन हैं, जिसमें चैरिटी सेंटर्स, अनाथ, एड्स रोगी, कुष्ठ रोगी, अपंग, नेत्रहीन, वृद्ध, शराबी, गरीब और प्राकृतिक आपदाग्रस्त लोगों के आश्रय गृह हैं। ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में हैं। पोप पॉल द सिक्स्थ की ग्रांट से मदर टेरेसा ने भारत के अलावा वेनेजुएला में सबसे पहला होम बनाया, जो बीमारों और असहाय लोगों के लिए था। उसके बाद तो 100 से भी अधिक देशों में मदर टेरेसा के नाम के होम्स बने। मदर टेरेसा को अनाथ बच्चों और बीमारों और असहाय लोगों को एक साथ आश्रय देना उचित नहीं लग रहा था, तो मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सदस्यों से बात की।
4: हाँ टेरेसा, आप किसी समस्या पर विचार करना चाहती हैं?
1: यस फादर। फादर, अनाथ बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है हमें उन्हें असहाय और लाचार या बीमार लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनके मन में भी निराशा की भावना आने लगेगी, जो गलत है। Am I right, sisters?
3: Yes, Mother Teresa. We also feel this. हमें आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है।
4: तो आप लोग चाहते हैं कि बच्चों के लिए अलग होम्स बनाए जाएं?
1: जी बिल्कुल फादर, यही सही होगा। मासूम बच्चों के साथ हम होमलेस यंग लोगों को भी रख सकते हैं, जो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, उनमें आपस में प्रेम भाव भी होगा।
4: टेरेसा, आपका विचार अच्छा है। मैं जल्दी ही पोप से इसका जिक्र करके हेल्प करूंगा। वैसे इस होम का कोई नाम सोचा है आपने?
1: फादर, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इनोसेंट बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, तो इसका नाम निर्मल शिशु भवन रख सकते हैं।
3: अच्छा है, ये नाम अच्छा है।
4: जी वाकई अच्छा है।
2: मदर टेरेसा ने 1955 में पहला निर्मल शिशु भवन बनाया। इसके साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी ब्रदर्स 1963 में बनाया गया, और मदर टेरेसा के साथ हाथ बटाने के लिए कई कैथोलिक और नॉन कैथोलिक सिस्टर्स की भर्ती की गई। मदर टेरेसा प्रेम भाव फैलाने के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन चुकी थीं। वो एक प्रेरणा स्रोत भी थीं, पर उनका कहना था कि
1: हम स्वयं ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो समुद्र में एक बूंद के समान है, लेकिन यदि ये बूंद समुद्र में ना गिरे तो क्या वो अधूरा ना होगा? We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop.
2: मदर टेरेसा ने कभी दिखावा नहीं किया, कभी वापस कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। 1962 में भारत सरकार ने पहली बार उनके कार्यों को सराहा और उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। 1969 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दिया गया। 1975

0: कि विश्व शांति के लिए क्या करें, तो उनका जवाब था,
1: आपने पूछा कि विश्व शांति के लिए क्या करें, कुछ नहीं, बस घर जाओ और अपने घर वालों से प्रेम करो। जो अपने घर से प्रेम करता है वो पड़ोसियों से भी नहीं झगड़ता। पर आज दुनिया में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? जानिए, बहुत जरूरी है। If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात जानकर भी नहीं जानना चाहते हैं। क्यों? इसके अलावा शांति न होने का एक कारण है गरीबी। गरीब इंसान को गरीबी इतना परेशान नहीं करती जितना ये बात दुख देती है कि समाज में उसे इज्जत नहीं मिलती। पेट की भूख उसे नहीं मारती, वो मरता है अनवांटेड होने से, अनलव्ड होने से। दो रोटी खिलाकर आप किसी के पेट की आग तो शांत कर सकते हैं, लेकिन दिल की आग को नहीं बुझा सकते। वो आग बुझेगी प्रेम भरे व्यवहार से, आपकी केयर से। जब आग बुझेगी तो ही पूरे विश्व में शांति होगी।
0: अपने जीवन को पूरी तरह लोगों की सेवा में समर्पित कर देने वाली मदर टेरेसा से एक बार किसी ने पूछा,
2: आप सारा दिन काम करती रहती हैं, कभी थकती नहीं है, कहाँ से लाती हैं इतनी शक्ति?
1: मुझे शक्ति मिलती है प्रार्थना करने से, जीसस के शांत पवित्र चेहरे को एक टक निहारने से, उनके दिल से जो हर पल मुझे देखता रहता है। प्रार्थना मानसिक हो तभी दिलों की आवाज भी हम लोग सुन सकते हैं। वैसे भी जब आप छोटी छोटी चीजों के प्रति ईमानदार होते हैं तो उनमें शक्ति आ जाती है।
2: अच्छा, ये बताइए कि आपका विश्वास किस में है?
1: मेरा विश्वास मेरे काम में है। मैं जानती हूँ कि ईश्वर मेरे द्वारा लोगों की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि मैं गॉड की स्पेशल बच्ची हूँ
2: जी,
1: जिसने मुझ पर विश्वास किया है, तभी तो मैं चैरिटी का काम कर पा रही हूँ।

0: उनका जीवन प्रेरणा स्रोत था, इसलिए उनके जीवन पर वृत्तचित्र और फिल्में भी बनी, जिनमें से बहुत सी विदेशी फिल्में भी थीं। मदर टेरेसा इन द नेम ऑफ गॉड्स पुअर, एक अन्य इटालियन फिल्म मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता बनी, जिसे दोबारा रिलीज किया गया और उसे केमे पुरस्कार प्रदान किया गया था। कहते हैं जहां प्रसिद्धि हो वहां तर्क कुतर्क और विवाद भी जन्म ले लेते हैं। कई लोगों ने मदर टेरेसा के कामों पर भी उंगली उठाई। ये कहा गया कि वो तो ईसाई धर्म फैलाने आई थी, समाज सेवा तो बस अचानक ही साधन मिलने के कारण शुरू हो गई। एक बार किसी ऐसे इंसान के दान को मदर टेरेसा ने स्वीकार किया जो स्वयं भ्रष्ट इंसान था, जिस कारण वो विवादों में आ गई। पर मदर टेरेसा ने कभी भी विवादों पर ध्यान नहीं दिया, वो तो सिर्फ समाज के लिए ही सोचती रही।
1: प्रेम को मापा नहीं जाता, वो तो बस दे दिया जाता है। जब भी किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले, यही प्रेम की शुरुआत है। किसी भी अच्छे रिश्ते की शुरुआत करनी है तो बस मुस्कुरा भर दें, मुस्कुरा भर दें, मुस्कुरा भर दें।

0: उन्होंने इंसान को इंसान होने का अर्थ दिया, भौतिकतावाद से उठकर भावनाओं को महत्व दिया, प्रेम का अर्थ समझाया। वो कहती थी कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा बदलाव चाहिए तो नेताओं की प्रतीक्षा मत करो, अपने आप से शुरू करो, बदलाव अपने आप दिखेगा। 1997 में वो 87 वर्ष की हो चुकी थी। वो केवल 4 से 5 घंटे की ही नींद लेती थी। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। 2-3 साल पहले भी वो अपने कार्य से मुक्त होना चाहती थी, पर सिस्टर्स के कहने पर वो कार्य को छोड़ ना सकी। अपने 87वें जन्मदिन के ठीक 9वें दिन 9 सितंबर 1997 को वो अपनी देह त्याग कर अविनाशी परम सत्ता में विलीन हो गई। वो अपने पीछे अपने सत्कर्मों का एक मेला छोड़ गई। भारतीय रेलवे ने मदर टेरेसा की याद में उनके नाम से उनके ही जन्मदिन पर एक रेल मदर एक्सप्रेस 26 अगस्त 2010 में शुरू की है। इस महान मां को, महान विभूति को हम सभी भारतीय प्रणाम करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, हमारा में।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित कजरी झूला गायन महोत्सव में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: झूला उत्सव या झूला या वर्षा उत्सव, उसका आनंद तभी है जब जुगल जोड़ी झूला झूलती है। तो संयोग वियोग दोनों ही प्रकार हैं श्रृंगार के। एक ये झूला मैं सुनाऊंगी, बहुत नायाब चीज़ है। आज दो झूला झूले श्यामा श्याम ही टोले रे, आज दो झूला झूले।

राधा जी का विरह सब जानते हैं, ज्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन कृष्ण विरह उसकी एक चीज में गाऊंगी, कजरी। ज्यादातर जब विरह की बात आती तो नायिका को ही दर्शाया जाता है, लेकिन नायक को भी तो पीड़ा होती है। घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। छिन जमुना तट छिन कुंजन में, विरह व्यथा से दहत है मनुआ, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। बदरा बरसे नैना बरसे, घन आशाओं में लागी है हुड़वा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। जब लो राधे मान न तोड़ी है, बंशी धरी हो ना तब हूँ अधरवा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। ये कजरी सुनाती है।

थोड़ा हम पंजाब की तरफ चले। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के संक्षिप्त ऐतिहासिक भाषण के पश्चात स्वामी जी शिकागो के समाज में छा गए। उनका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों की भीड़ होती थी। धर्म महासभा के अलावा उन्हें विज्ञान सभा, चर्च तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से भी आमंत्रण मिला और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना वक्तव्य रखा। 20 सितंबर को धर्म महासभा की एक बैठक में उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि भारत का प्रधान अभाव धर्म नहीं है। उन्होंने कहा,
1: भारत के कोटि कोटि शुद्धार्थ नर नारी शुष्क कंठ से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं, वे रोटी मांग रहे हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। भूखे लोगों को धर्म के उपदेश देना या दर्शन शास्त्र सिखाना उनका अपमान करना है। मैं अपने निर्धन देशवासियों के लिए तुम लोगों से सहायता मांगने आया था, परंतु अब मैं समझ रहा हूं कि ईसाइयों के देश में ईसाइयों के पास से गैर ईसाइयों के लिए सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है।
0: ये बातें सुनकर भले ही कुछ ना हुआ हो, पर महासभा समझ गई कि स्वामी जी केवल सन्यासी ही नहीं हृदयवान देशभक्त भी हैं। उस व्याख्यान के अंत में उन्होंने पुनर्जन्मवाद पर भी कुछ बातें कही।
2: 26 सितंबर को उन्होंने महासभा में फिर व्याख्यान दिया। इस बार का विषय था, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही परिपूरक है। इसमें स्वामी जी की विचारधारा का एक मौलिक रूप दिखाई दिया। उनके मत से बुद्ध के अविर्भाव के बाद भारतीय धर्म का इतिहास सहज बोध हो उठा है। उन्होंने समझाया कि
1: हिंदू धर्म के दो प्रधान भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। बुद्ध ने समाज में उसका आध्यात्मिक अंग प्रचारित किया और अपेक्षित प्रतिक्रिया की व्याख्या की। वे ही प्रचार मूलक धर्म के प्रथम पथ निर्माता और धर्मांतरण प्रथा के प्रवर्तक थे। तो भी शाक्य मुनि पूर्ण करने आए थे, ध्वंस करने नहीं। वे हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति, युक्ति संगत सिद्धांत और न्याय सम्मत विकास थे। भारत उन्हें ईश्वर अवतार के रूप में पूजता है, परंतु बुद्ध देव के बारे में हमारी यही धारणा है कि उनके शिष्यों ने उन्हें ठीक ठाक नहीं समझा। शाक्य मुनि कुछ नया प्रचार करने नहीं आए थे, ईसा के समान ही वे भी पूर्ण करने आए थे, ध्वंस करने नहीं। बुद्ध देव के शिष्य उनके उपदेशों का मर्म समझ नहीं सके। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और ना बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना। ब्राह्मणों के दर्शन शास्त्र व मस्तिष्क के बिना बौद्ध ठहर नहीं सकते और ना ही ब्राह्मण बौद्धों के विशाल हृदय के बिना टिक सकते हैं। बौद्ध और ब्राह्मण के बीच ये विरोधी भारत वर्ष के पतन का कारण है।
0: महासभा के अंतिम दिन 27 सितंबर को स्वामी जी का भाषण पुनः रखा गया। उस दिन शिकागो की जनता के अनुरोध पर यह व्याख्यान हुआ। महासभा में भारी भीड़ उपस्थित हुई और आयोजकों को विशेष बैठक व्यवस्था करनी पड़ी। अपने विदाई भाषण के अंत में स्वामी जी बोले,
1: ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है, पर प्रत्येक को चाहिए कि वो अन्य धर्मों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्ट हो और अपने वैशिष्ट्य को बनाए रखकर अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो। यदि इस महासभा ने जगत के समक्ष कुछ प्रदर्शित किया है तो वो ये है कि इसने ये सिद्ध कर दिया है कि साधुता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है। प्रत्येक धर्म में ही अति उन्नत चरित्र के नर नारियों का जन्म हुआ है। इन समस्त प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि केवल उसी का धर्म टिका रहेगा और अन्य सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे, तो वो वस्तुतः दया का पात्र है। मैं उसके लिए हृदय से दुखी हूं और उसे स्पष्ट रूप से बताए देता हूं कि समस्त प्रतिरोधों के बावजूद शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, संघर्ष नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं समन्वय और शांति।
2: महासभा और उसकी विज्ञान शाखा के बाहर स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिए उनमें से प्राच्य नारी विषय के व्याख्यान पर संक्षिप्त विवरण 23 सितंबर के शिकागो डेली इंटरओशन संवाद पत्र में और ईश्वर प्रेम संबंधी एक और व्याख्यान का विवरण 25 सितंबर में शिकागो हेराल्ड संवाद में प्रकाशित हुआ। प्रथम व्याख्यान में उन्होंने कहा,
1: हिंदू नारियां बड़ी धार्मिक तथा आध्यात्मिक संपदा से विभूषित होती हैं। सतीत्व को भारत में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। भारतीय नारी की इस पवित्रता के साथ यदि बौद्धिक उत्कर्ष का भी योग किया जा सके तो विश्व की आदर्श नारी चरित्र का गठन हो जाएगा। सभी लोग विभिन्न नामों से ईश्वर का चिंतन आदि किया करते हैं और भगवत प्रेम ही संपूर्ण विश्व के एक तत्व का मूल सूत्र है। भगवान केवल कुछ विशेष लोगों के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रत्येक संतान के साथ वार्तालाप आदि करते हैं। हम सभी आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं।
0: महासभा समाप्त हुई, विज्ञान शाखा की कार्रवाई भी पूरी हो गई। इन कुछ दिनों के दौरान महासभा के श्रोताओं तथा अन्य सभा समितियों के सदस्यों ने किस प्रकार स्वामी जी को उत्साह पूर्वक स्वीकार किया और अमेरिकी संवाद पत्र ने किस ढंग से उन्हें प्रचारित किया, इसका बहुत कुछ आभास हम पा चुके हैं। महासभा के पहले दिन ही एक अज्ञात भिक्षा जीव सन्यासी विश्व बंधु व्यक्ति में परिणित हुए। भारत के गिरी कंदराओं तथा वनों में विचरण करने वाले निसंग विवेकानंद एक नए संदेश के वाहक, एक अभिनव संस्कृति के अग्रदूत हुए। महासभा में अर्जित सफलता केवल शिकागो तक सीमित न रह करके सभी दिशाओं में फैल गई और उनका नाम सर्वत्र जगत में गूंज उठा।
2: उनके पूरे आकार के तिरंगे चित्र शिकागो के राजमार्गों पर दिखने लगे, जिनके नीचे लिखा रहता था, भारत के हिंदू सन्यासी विवेकानंद। राह चलते लोग उसे देख ठिठक कर खड़े हो जाते और सिर झुकाकर श्रद्धा व्यक्त करते। पत्र पत्रिकाएं उनकी प्रशंसा में मुखर थीं। नगर के श्रेष्ठतम संवाद पत्रों में उन्हें ऋषि और भगवत प्रेरित महापुरुष के रूप में अभिनंदित किया गया। स्वामी जी के पत्रों से तथा संवाद पत्रों के लेखन से हमें इन बातों का पता चलता है। महासभा के विज्ञान शाखा के सभापति श्री मार्विन मैरी स्नेल ने लिखा था,
3: महासभा तथा अमेरिका जनता पर हिंदू धर्म ने जैसा प्रभाव डाला वैसा और कोई भी संप्रदाय नहीं कर सका। और हिंदुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम प्रवक्ता थे स्वामी विवेकानंद। वो ही महासभा के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। महासभा के कक्ष में तथा मेरे सभापतित्व में परिचालित उसकी विज्ञान शाखा के अधिवेशनों में प्रायः व्याख्यान देते थे और प्रति बार किसी भी ईसाई या गैर ईसाई वक्ता की अपेक्षा उनका अधिक उत्साह के साथ स्वागत होता था। वो जहां भी जाते जनता उन्हें घेर लेती और उनका प्रत्येक शब्द ध्यान पूर्वक सुनती। कट्टर से कट्टर ईसाई भी उनके बारे में कहते कि वो सचमुच ही मनुष्यों में महाराजा है।
2: काफी दिनों के बाद महासभा में स्वामी जी की उपस्थिति के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा था,
4: शिकागो के धूम्र मलिन क्षितिज पर भारतीय सूर्य के समान दीप्तिमान, सिंह के समान उन्नत सिर, अंतर्भेदी दृष्टि, मनोहर तथा द्रुत चाल, गैरिक वस्त्रों में विभूषित एक महिमामय मूर्ति, ऐसे हुई स्वामी जी विवेकानंद के बारे में मेरी धारणा। जब मैं महासभा के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित कमरे में पहली बार उनसे मिली, वे एक सन्यासी के रूप में परिचित थे, परंतु वे थे एक योद्धा सन्यासी और पहली भेंट के समय वे मुझे सन्यासी की अपेक्षा योद्धा ही अधिक प्रतीत हुए थे, क्योंकि जब वे प्राचीनतम जीवित धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर से उतर कर आते, आयु में सबसे कम होकर भी उत्सुक दर्शकों से घिरे हुए, वे इस बात को मानने के लिए कतई राजी न थे कि वे जिस प्राचीन हिंदू धर्म के प्रवक्ता थे वो किसी भी दृष्टि से वहाँ के सर्वश्रेष्ठ ईसाई धर्म से बिंदु मात्र भी न्यून है। और तब उनके अंग अंग से देश तथा जाति का गर्व फूट पड़ता सा प्रतीत होता था। चंचल, तेज और उद्दत पश्चिम में अपने इस संदेहवाहक संतान भेजकर भारत को लज्जित होने का कोई कारण नहीं, वे भारतवर्ष का संदेश लेकर आए थे और भारत के नाम पर ही उन्होंने उसका प्रचार किया। जिस महिमा मंडित देश से प्रतिनिधि के रूप में वे आए थे उसकी मर्यादा का उन्हें सदैव भान रहता था। वे उद्यमशील, शक्तिमान और उद्देश्य में अटल थे और सर्वदा अपने मतों का समर्थन करने की उनमें क्षमता थी।
0: उन्होंने और भी लिखा था कि मंच पर उनका एक अन्य रूप ही दिखाई पड़ता है, वह भी अपनी मर्यादा, गुणावली और शक्ति के बारे में एक जन्मजात विश्वास उनमें झलकाता रहता है। परंतु अनुपम सौंदर्य के सामने प्राच्य के उस अतुलनीय संदेश का वह रूप भी फीका पड़ जाता था। विशाल जनसमुदाय विभोर होकर के उनके मुख से उच्चारे शब्दों के लिए कान खड़े रखता था कि कहीं एक भी शब्द से वंचित न रह जाए, एक भी उच्चारण का लहजा न छूट जाए। एक दिन सभागार से निकलते हुए एक श्रोता कह उठा कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग जंगली धर्म वाला कहते हैं और उसके देश में मिशनरी भेजते हैं, बल्कि उचित तो यह होगा कि वे लोग ही हमारे बीच मिशनरी भेजें।
2: अमेरिका की एक कवित्री हैरियट मनरो भी महासभा में उपस्थित थी और बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था,
5: महिमामय स्वामी जी विवेकानंद ने धर्म सभा और पूरे नगर को जीत लिया था। कुछ अन्य विदेशी, ग्रीक, रूसी, अर्मेनियन, कलकत्ता के मजूमदार, लंका के धर्मपाल आदि अच्छा बोले, जिनमें से किसी किसी को दुभाषी की सहायता लेनी पड़ी थी, परंतु उन गैरिक वस्त्रधारी सुंदर सन्यासी ने हमें शुद्ध अंग्रेजी में श्रेष्ठतम वस्तु प्रदान की। उनका प्रबल और आकर्षक व्यक्तित्व, कांसे के घंटा ध्वनि के समान उनका मधुर और मधुर कंठ स्वर, उनके संयत भावों की प्रखरता और पाश्चात्य जगत के समक्ष पहली बार उच्चारित उनके संदेश, इन सब ने मिलकर हमारे लिए चरम अनुभूति के एक विरल अवसर की सृष्टि की थी।
0: उन्हें प्रशंसा तो बहुत मिली, पर जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि मित्रों के साथ साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई, क्योंकि स्वामी जी निडर और स्पष्ट वक्ता थे। उन्हें अगर कोई बात गलत लगती थी तो उसकी आलोचना करने में वे हिचकिचाते नहीं थे। अतः कुछ मिशनरी और ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार उनके प्रमुख शत्रु बन गए थे। बाद में बोस्टन की रमाबाई मंडली भी इन लोगों के साथ जुड़ गई। इस प्रसंग में हम आगे और जानकारी देंगे, पर मजूमदार महाशय के साथ विरोधिता की बात अभी उल्लेखित करना उचित होगा। स्वामी जी की पत्रावली पढ़कर ऐसा लगता है कि मजूमदार महाशय ने स्वामी जी की सफलता पर ईर्ष्यालु होकर के उनके प्रति विरुद्ध आचरण किया।
2: उन्होंने देखा कि एक नया प्रतिद्वंदी उनका नाम यश छीनता जा रहा है। सन्यासी का परिचय पूछे जाने पर उन्होंने महासभा के संचालकों के कान में कहा, ये भारत के एक ऐसे घुमक्कड़ संप्रदाय के हैं जिनका समाज में कोई मान या प्रभाव नहीं है। वस्तुतः ये एक ढोंगी हैं, परंतु संचालकों का उदार मन इन बातों से विचलित नहीं हुआ। स्वामी जी के प्रबल व्यक्तित्व के आधार पर ही उन लोगों ने उनका मूल्यांकन किया।
0: ईर्ष्या तो बहुत थी ही, उसके साथ साथ विचारों का संघर्ष भी था। 9 सितंबर 1893 ईस्वी को एडवोकेट पत्रिका में मजूमदार से संबंधित कुछ बातें प्रकाशित हुई थी।
6: ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रतिनिधि ने सतर्कता पूर्वक बताया कि उन्होंने अपना धर्ममत मिशनरियों से नहीं लिया है, अपितु वो हिंदू धर्म का ही एक रूपांतरण है। उसमें आधुनिक हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों में जो कुछ सत्य है उसी को आधार रूप में ग्रहण करने पर भी ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र तथा जगत के उद्धार कर्ता के रूप में ग्रहण करने में ही उसकी चरम परिणति है।
0: स्वामी जी ईसा मसीह के परम प्रशंसक होकर भी अपने धर्म को हीन करके अन्य धर्मों को ऊंचा स्थान देने को बिल्कुल प्रस्तुत न थे। पाश्चात्यों की नकल करके ब्रह्म लोग भारतीयों के अनेक सामाजिक प्रथाओं तथा आचार अनुष्ठानों की निंदा किया करते थे, पर स्वामी जी कहा करते थे कि
1: समाज यदि आदर्श भ्रष्ट होकर गलत रास्ते पर भी चले तो गाली गलौज के द्वारा उसका सुधार नहीं होगा, वरन इसके लिए आदर्श का पुनरुद्धार आवश्यक है।
2: सती दाह प्रथा आदि का समर्थन ना करते हुए भी वे सनातन धर्म के आदर्शों के प्रति सजग रहते थे और विदेशों में प्रचलित अनेकों अनाचार अत्याचार की ओर इशारा कर आलोचकों को परास्त कर देते थे। वस्तुतः वे भारतीय समाज की अनुचित आलोचना से प्राणपण से रक्षा करते थे। ऐसा ब्राह्म मतावलियों को स्वीकार नहीं था। वे अपने को प्रगतिशील और स्वामी जी को प्राचीन पंथी समझते थे। ऐसी हालत में विद्वेष अवश्यंभावी था।
0: थियोसॉफिस्ट भी स्वामी जी से नाराज थे, क्योंकि उनका महात्मावाद स्वामी जी को बड़ा विचित्र लगता था। वे अलौकिक कारनामों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनकी दृष्टि में यह सब जादूगिरी या बाजीगिरी के रूप ही थे। उनका आध्यात्मिक मूल्य प्राय शून्य के बराबर था। सिद्धियों को वे धर्म का सम्मान नहीं देते थे।
2: अब तक ये विरोधी संप्रदाय के लोग पाश्चात्य जगत में भारत का विकृत रूप प्रस्तुत करते रहते थे, पर स्वामी जी के व्याख्यानों से उन विकृत चित्रों की वास्तविकता उजागर हो जाने से सब ने मिलकर उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मजुमदार भी उन्हीं में से एक थे। स्वामी जी ने मजुमदार महाशय की कीर्ति उजागर करते हुए 19 मार्च 1894 को स्वामी रामकृष्ण नंद को पत्र में लिखा था,
1: प्रभु की इच्छा से मजुमदार महाशय के साथ यहाँ मेरी भेंट हुई। पहले तो बड़ी प्रीति थी, परंतु जब पूरे शिकागो शहर के नर नारी मेरे पास झुंड के झुंड आने लगे, तब मजुमदार भैया के मन में आग धधक उठी। मैं तो देख सुनकर दंग रह गया। बोलो भाई, मैंने क्या तुम्हारे पेट पर लात मारी है? इस देश में तो तुम्हारे लिए यथेष्ट अवसर है, परंतु मेरे जैसा तुम्हारा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मजुमदार ने महासभा के पादरियों के समक्ष मेरी खूब निंदा की। कहा कि यह और कोई नहीं, ठग है, ढोंगी है। तुम्हारे देश में कहता है मैं साधु हूं, आदि बातें कहकर उन लोगों के मन में मेरे बारे में गलत धारणा बैठा दी। प्रेसिडेंट बैरोज को ऐसा भड़काया कि अब वे मेरे साथ ठीक से बातें तक नहीं करते। ये लोग पुस्तकों और पत्रकों की सहायता से मुझे यथासंभव दबाने का प्रयास कर रही हैं। परंतु भाई, गुरुदेव मेरे साथ हैं। मजूमदार के कहने से क्या होता है? पूरा अमेरिका मुझे प्रेम करता है, भक्ति करता है, रुपए देता है और गुरु जैसा मानता है। मजूमदार बेचारा क्या करे, पादरी फादरी की भी क्या बिसात। और फिर ये विद्वानों का राष्ट्र है। यहां पर हम विधवाओं का विवाह करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, आदि बातें नहीं चलती, केवल पादरियों के पास चलती हैं। भाई, ये लोग दर्शन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, गप्पों से काम नहीं चलेगा। भाई, मुझे सब कुछ आता है, पर मुझे ईर्ष्या नहीं भाती।
0: अमेरिका के प्रारंभिक दिनों के दौरान अपनी स्थायी विचारधारा तथा जीवन दर्शन के साथ मेल न रख पाने पर भी क्रमशः वे अमेरिका की सामान्य रीति रिवाजों के साथ परिचित होकर के अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग गए। वे समझ गए कि इन नए अपरिचित परिवेश में भी भारतीय भावों को सुरक्षित रखा जा सकता है। 2 अक्टूबर 1893 में उन्होंने अध्यापक राइट्स को लिखा था,
1: अब मैं यहाँ की जीवन धारा के साथ समझौता करता जा रहा हूँ। पूरे जीवन भर मैं हर परिस्थिति को प्रभु का दान समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को समायोजित कर लेता रहा हूँ। अमेरिका में पहले पहल मैंने अपने आप को जलबिन मछली के समान अनुभव किया। भय था कि कहीं मुझे अपना परिचित मार्ग छोड़कर अपनी व्यवस्था स्वयं ही न करनी पड़े। कितना विभत्स और कृतज्ञतापूर्ण था यह विचार। पर अब मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है कि जिस ईश्वर ने मुझे हिमालय के हिम शिखरों पर तथा भारत की मरुभूमि पर पथ दिखाया था, वो ही यहां भी मेरी सहायता करेगा। अतः अब फिर मैं चुपचाप अपने पुराने रास्ते पर चल रहा हूं। कोई मुझे भोजन तथा आश्रय देता है और कोई आकर मुझे उनके बारे में बोलने को कहता है। मैं जानता हूं कि सब उन्हीं के द्वारा भेजे जा रही हैं, और मेरा काम है सिर्फ आज्ञा पालन किए जाना। वे ही मेरी आवश्यकता की सारी चीजें जुटा रही हैं, उनकी इच्छा पूर्ण

0: खास रुचि नहीं है। उन्हें लगा कि कहीं श्रोताओं की संख्या घट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कार्य शैली बदल डाली। उन्होंने इस प्रसंग में अध्यापक राइट को लिखा था,
1: दूर दूर के देशों से लोग अपनी योजनाएं, विचार तथा आदर्श लेकर यहाँ उन्हें रूपायित करने को आए हैं, और अमेरिका ही एक ऐसा स्थान है जहां हर चीज के लिए सफलता की संभावना है। परंतु अपनी योजना के विषय में अभी मैंने कुछ न बोलने का ही निश्चय किया है, क्योंकि मैंने देखा कि लोग योजना की अपेक्षा मुझ विधर्मी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी योजना के लिए मैं निष्ठापूर्वक परिश्रम करना चाहता हूं, परंतु योजना को पृष्ठभूमि में रखकर बाहर से मैं अन्य वक्ताओं के समान ही कार्य करूंगा। शिकागो में मैं बड़ा ही लोकप्रिय हूं, इसलिए मैं यहां कुछ और दिन ठहरना तथा धन एकत्र करना चाहता हूं।
2: इस तरह स्वामी जी के उस अंचल में बड़े प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनके पास शिकागो के बाहर से भी अनेक स्थानों से व्याख्यान के लिए निमंत्रण आने लगे और साथ में धन भी आने लगा। 10 अक्टूबर को उन्होंने श्रीमती उट्स को लिखा था,
1: अभी मैं शिकागो के विभिन्न स्थानों में व्याख्यान दे रहा हूँ और मेरी समझ से वो अच्छा ही चल रहा है। एक भाषण के लिए मुझे 30 से 80 डॉलर तक मिल जाते हैं। महासभा के चलते शिकागो में मेरा नाम इतना प्रचलित हो गया है कि अभी इस क्षेत्र को त्याग देना उचित न होगा।
0: उन दिनों व्याख्यान देने के लिए स्वामी जी शिकागो से बाहर जाते रहते थे, पर जब कभी भी शिकागो वापस आते, लियोन परिवार के घर जरूर जाते। महासभा के बाद भी उस परिवार के साथ उनका संपर्क बना रहा। श्रीमती लियोन भी स्वामी जी को बेटे जैसा ही मानती थी, उनके सुख दुख की साथी थी। एक बार किसी महिला ने स्वामी जी पर मोहित होकर उनका मन आकर्षित करने का प्रयास किया। पता चलने पर श्रीमती लियोन स्वामी जी के बारे में बड़ी चिंतित हुईं। क्यों ना हो, माँ जो थी उन्होंने स्वामी जी को सावधान भी कर दिया। पर स्वामी जी बोले,
1: आप अमेरिका की मेरी स्नेहमय माँ है, आप मेरे लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। एक समय मैंने किसान द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करते हुए तथा वटवृक्ष के नीचे सोकर भी दिन बिताए हैं, और फिर मैं ही कभी महाराजाओं के महल में भी अतिथि के रूप में रहा हूं, जब दासियां मयूर पुच्छ के पंखों से रात भर मुझे हवा करती रहती थी। प्रलोभनों का मैं अभ्यस्त हूं, अतः मेरे लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं।
2: स्वामी जी समस्त प्रलोभनों से परे थे। उनका लक्ष्य केवल भारतवासियों का कल्याण करने का था। लाखों दीन दरिद्र भारतीयों के लिए सहायता प्राप्त करना ही उनका ध्येय था, अतः वे उसी पथ पर चल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को श्रोताओं आप सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। और अब दिन के ठीक 12 बजे हैं, हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर सम्पन्न होती है। हमारी दोपहरकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंदू, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओ, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुश्री पार्वती बाउल का गायन।

बाउल बंगाल की भक्ति परंपरा का एक ऐसा गहरा उदात्त रंग है जिसमें आत्मलीनता का चरण छू लेने का सामर्थ्य है। शब्द, स्वर, लय, ताल और नर्तन की एकमेकता से निर्मित बाउल बंगाल की लोक भूमि में परमेश्वर को पुकारने का सबसे लोकसिद्ध माध्यम रहा है। दरअसल बाउल एक भक्ति संप्रदाय है। बाउल बैरागियों का कुल है। बाउल यानी ईश्वर के निकट पहुंचने की वो आसक्ति जो तमाम हदों को पार कर जाता है। सुश्री पार्वती बाउल को सुनना भी एक ऐसा ही चमत्कारिक अनुभव है। गायन और नृत्य के साथ अद्भुत तालमेल बनाते हुए पार्वती एक तारा, डुक्की और घुंघरुओं का ऐसा तिलिस्म जगाती हैं कि बाउल अपनी पूरी परंपरा में सजीव हो उठता है। बाउल गायन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री पार्वती बाउल को।

श्रोताओ, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुश्री पार्वती बाउल का गायन।

बाउल बंगाल की भक्ति परंपरा का एक ऐसा गहरा उदात्त रंग है जिसमें आत्मलीनता का चरण छू लेने का सामर्थ्य है। शब्द, स्वर, लय, ताल और नर्तन की एकमेकता से निर्मित बाउल बंगाल की लोक भूमि में परमेश्वर को पुकारने का सबसे लोकसिद्ध माध्यम रहा है। दरअसल बाउल एक भक्ति संप्रदाय है। बाउल बैरागियों का कुल है। बाउल यानी ईश्वर के निकट पहुंचने की वो आसक्ति जो तमाम हदों को पार कर जाता है। सुश्री पार्वती बाउल को सुनना भी एक ऐसा ही चमत्कारिक अनुभव है। गायन और नृत्य के साथ अद्भुत तालमेल बनाते हुए पार्वती एक तारा, डुबकी और घुंघरुओं का ऐसा तिलिस्म जगाती हैं कि बाउल अपनी पूरी परंपरा में सजीव हो उठता है। बाउल गायन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री पार्वती बाउल को।

Thank you.

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहां आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। मां सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहु मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की। और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिवजी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी

0: में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
0: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
2: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
1: बिल्कुल,
0: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
2: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
2: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
2: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
2: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
2: जी हाँ। खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
2: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
2: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
2: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
2: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
2: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
2: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक,
2: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
2: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
2: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
2: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
2: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
2: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
2: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
2: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
2: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
2: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ भारती। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कलम से लिखी हुई कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे हमारे आसपास की ही कहानी हो। मनुष्य का अधिकार उसका वर्चस्व होता है, और अगर अधिकार ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता है, और जहां मान सम्मान होता है वहां अधिकार होता है। कुछ इसी तरह की ताने बाने से बुनी हुई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सुजान भगत। तो आज के कार्यक्रम में हमने कहानी चुनी है सुजान भगत।

अक्सर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 साल से लगातार एक लगा रहा था। उधर गुड़ का भाव तेज हो गया, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए थे अब उसके। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हलके के हैंड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। धन्य भाग हमारे, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान नहीं सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक ढोलक आ गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा।

0: अब सब सुजान के दम पर जुलूस निकलने लगा। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी चाहिए, साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने करके दिखाया था। एक दिन की बात है, गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा हो गई। वो अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। अपनी स्त्री बुलाकी से उसने कहा। बुलाकी ने जवाब दिया, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तब सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है, कौन जाने। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। अब जे जिंदगानी का का भरोसा, चलना है बस चलना है। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने भी फरमान सुना दिया, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया आ जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी भी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की हो गई। सारी बिरादरी निमंत्रित हो गई। 11 गांवों में सुपारी बटी थी। इस धूमधाम से ये लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे, भगवान धन दे तो दिल भी दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया था सुजान ने, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो भुनी भांग नहीं थी, अब देखो लक्ष्मी घुटने तोड़ कर बैठी है। एक द्वेषी ने तो कह दिया, अरे कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। कई तरह की बातें होती, इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को तो देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, वही विचार सुजान ने भी अपना लिया। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हैं तो वो रोज स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन पर्वों के दिन जरूर जाता। भजन भाव उसके घर होने लगे, पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य हो गई। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, इसी कांटों से वो परिस्थितियों को तौलता था, अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। ब्याज का पैसा लेते हुए उसे आत्मग्लानी होने लगी, यहाँ तक कि गायों को दोहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, उसका रोया दुखी हो जाता। वो गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, लेकिन अब उसको इससे घृणा होने लगी। पहले मजदूरों से काम लेता और कम मजदूरी देता, लेकिन अब वो पूरा का पूरा देता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते, यहाँ तक कि स्त्री बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अब घर के अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किस भाव का क्या चीज है, कैसी बिकी, महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही सारा मामला तय कर लेती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता, पर अपने घर में घट जाता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर खुद उठा देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। बाहर एक भिक्षुक आया, वो चिल्ला चिल्ला कर दान मांग रहा था। इतने में बड़ा लड़का भोला आया, जोर से माँ से बोला, अम्मा महात्मा कब से गला फाड़ रहे हैं, दे दो ना कुछ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, देखो तो सही। बुलाकी ने भी उपेक्षा के भाव से कह दिया, क्या भगत जी के हाथ में मेहंदी लगी है, उन्हीं से कह दो कुछ दे देंगे। चौपट करने लगे हैं माँ, और क्या, रहने दो, कुछ का कुछ दे देंगे। तब भोला भी बोल दिया, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया है कि घर गृहस्थी के मामले में अब ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देंगे। अच्छा, तब भोला ने कहा, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने भी आपत्ति की, बेटा भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब देखो ना, बैलों को सानी देते हैं, गाय दोहते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। माँ बेटे यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो स्वयं उठकर अंदर चले गए और कठोर स्वर में बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, अपना काम दिन भर कर लेना, एक घड़ी के लिए भगवान का काम भी कर लो। बुलाकी ने भी उपेक्षा से कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बैठे हो भगवान का काम करने, क्या घर भर भगवान ही काम करेंगे क्या। सुजान ने कहा, कहाँ रखा है आटा, लाओ मैं ही निकाल कर दे दूं, तुम तो बैठो और रानी बन के राज करो। बुलाकी ने तब जोर से कहा, देखो जी आटा मैंने मर मर के पीसा है, देना है ना अनाज दे दो, ऐसे लोगों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान ने सुना और भंडार गृह की ओर चल दिए। छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरकर निकाल लाए, जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को दिखाने के लिए ज्यादा अनाज लेकर आया, लेकिन वो भिक्षुक को देता उसके पहले ही भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया चढ़ाकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है, फालतू नहीं देंगे। सुजान ने भी कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हूँ, काम करता हूँ। भोला ने भी कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं और पति पानी बना रहे हैं और आप लुटा रहे हो, क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है आपको, आप तो बस भगवान भजन में डूबे रहो। सुजान ने इसका उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जा, किसी का हाथ खाली नहीं है। सुजान पेड़ के नीचे जाकर विचारों में मगन हो गया, अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वो अपाहिज तो नहीं हुआ है, हाथ पांव भी नहीं थके हैं, घर का कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, उस पर यह अनादर, ये घर तो उसी ने बनाया, ये विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो वो द्वार के कुत्ते के समान हो गया, पड़ा रहे घर वाले जो रूखा सूखा दे दें, खाकर पेट भर लें, क्या ऐसा जीवन सही है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, और सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। विचारों के मंथन में सुजान डूब गया। संध्या हो गई, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर के लाया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से लेकिन उठा नहीं। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया लेकिन भूख नहीं है कहकर उसने भोला को लौटा दिया। तब स्त्री बुलाकी आ गई और मनुहार करने लगी। खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना, क्या हो गया? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर, मेरे घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को भिक्षा दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए। आग थोड़ी लगा रहा हूं घर में। कानून से भी मेरा अधिकार है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी का क्या जाता है? और अब इस वक्त ये मनाने आई है? कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। रुपए पैसे लेना देना सब इसके हाथ में था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ। लुटाऊं, घर फूकूं, घोंगा हो गया हूँ, मेरी किसे परवाह है। तब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी तो मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले जाता था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। उसके मन में ये विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने बुलाकी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा, अब खा पी कर क्या करूँगा बुलाकी, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो? रख दे, तेरे बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी ने भी मनुहार किया, कैसा करते हो तुम, तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अब भोला ने इतना ही तो कहा था ना कि इतनी सारी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था बताओ? हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया था, तुम्हें तो मजा आया। जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगाता तब तुम्हें ठीक लगता, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होती। बुलाकी ने भी जवाब दिया, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाई है, जिस बल चाहते हो बैठा लेते हो। ऐसी मुजोर होती ना तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाह ना होता। सुजान ने भी कहा, हाँ भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं ही राक्षस हूँ और दैत्य हो गया हूँ, तुम सही, तुम्हारे कमाऊ बेटे सही। बात नहीं बनी, सुजान नहीं उठे और बुलाकी हार कर घर लौट गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी यही समझता था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर नहीं थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाली थी। लड़के उसके सामने बैठते नहीं थे, खाट पर नहीं रहते थे, उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण नहीं था। हाँ, पर आज उसे ये ज्ञात हो गया कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में राज करता था उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सो रहा था, सुजान करवी काट रहा था। इतना श्रम उसने पहले नहीं किया था, लेकिन उसने काम भी नहीं छोड़ा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर आंगन में दंग रह गई। जोर से चिल्ला के बोली, क्यों रे भोला, आज रात भी कटिया ही काटता रहा क्या? कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर तू तो मानता ही नहीं, रात में सोया भी नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ, वो सोता कब है, जब देखता हूँ काम करता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता बाहर निकल आया, ढेर देखकर वो भी आश्चर्यचकित। माँ से बोला, माँ, शंकर आज बड़ी रात को उठा था। बुलाकी ने कहा, नहीं रे, वो तो सो रहा है, मैं समझी तू काटा है। माँ मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता, दिन भर काम करा लो, रात को नहीं उठा जाता मुझसे। बुला की, तो क्या तेरे दादा ने काटी है इतनी सारी? मालूम नहीं। दोपहर हो चुकी थी, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन था। भोला थक गया, उसकी बार बार इच्छा हुई कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहा। सबको आश्चर्य हो रहा था, दादा इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं? आखिर डरते डरते बोल ही दिया, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। मैं सांझ को फेंक दूंगा दादा। सुजान ने नहीं सुना। तुम क्या फेंक दोगे बेटा, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। और इस खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे बाद वो घर आया, थकान का नाम नहीं था, लेकिन नहा खाकर आराम करने के बदले उसने बैलों को सहलाना शुरू किया, पीठ पर हाथ फेरा, पैर मले, बैलों की तो पूंछे खड़ी हो गई। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद बैलों को ये आनंद प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में कृतज्ञता भर गई, मानो वो कह रहे हों, अब हम तुम्हारे साथ हैं, दिन रात काम करेंगे। अन्य किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठा लिया, खेत की तरफ चल दिया और दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को आते देखा, पर उठ नहीं पाया, उसकी हिम्मत छूट गई, कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे तो बस ज्यों का त्यों चला रहा था, क्या मालूम था कि ये सब चीजें क्या होती है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। तो भोला ने भी कह दिया, जाने दो अम्मा, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है, बखारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, आज उसी खेत में 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज, जगह जगह अनाज के ढेर, यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते, कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। आज उनमें वो भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। अचानक भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, आप ही के पास पहले आया हूँ। ऐसा है, जाओ तुम्हारे सामने ये ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जाते बने ना, ले जाओ। भगत ने नम्रता से कहा। भिक्षुक ने शुभ्ध नेत्रों से ढेर को देखा। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे भगत जी, उतना ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10 अनाज उसमें भरा और उठाने लगा, संकोच के मारे अधिक भरने का उसे साहस नहीं था। भगत उसके मन का भाव समझ गए, बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा लेगा भिक्षुक जी, और ले लीजिए। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना काफी है। भगत ने कहा, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाते बने उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज तो भर लिया लेकिन भोला ने अगर गठरी नहीं उठाने दी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अपने हाथों से अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, ले जाओ, अब ये आपका है। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। भगत ने भी जोर देके कहा, अरे इतना भी नहीं उठेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब उसने भगत से बोला, भगत जी ये मुझसे नहीं उठेगी, और उसने हाथ जोड़ लिए। भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो सुना है आपने। बस भगत जी क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या था, ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे पीछे चल दी। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्भ नेत्रों से देखा और बोला, बेटा ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, ध्यान रहे कोई भी यहां से खाली हाथ न लौट पाए, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा देना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था और अपना अधिकार बता दिया था। सच कहा है किसी ने, ये अधिकार बहुत बड़ा होता है और कर्तव्य उससे बड़ा। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुनो कहानी समेटने की। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए भारत भारती कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको विगत दिनों भारत भवन में हुए बादल राग समारोह में लोक गीतों की रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत

0: श्रीमती उर्मिला पांडे और उनके साथ सहगायिकाओं में सुश्री अनामिका पांडे और सुश्री कीर्ति यादव हैं। ढोलक पर पंडित चंद्रभूषण तिवारी जी, तबले पर श्री संदीप चरिया, बांसुरी पर श्री वीरेंद्र कोरी, झीका पर श्री मुरारी लाल रैकवार और मंजीरी पर हैं श्री राजेश तिवारी।
1: सभी महान भाव को मेरा नमन प्रणाम। सबसे पहले मैं राछरे, जो अपने एक बुंदेलखंड की विधा है, सबसे पहले मैं राछरे ही सुना रही हूँ। दीपचंदी ताल में है ये।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम नृम्णस्य महना स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिसकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोक भयभीत हो गए। यह पृथ्वीम व्यथमाना मद्रिन हद्यः पर्वतान प्रकुपिताम अरम्णात् यो अंतरिक्षम विममे वरियो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, द्युलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। यो हत्वा हिमरिणात सप्त सिंधुन्यो गा उदाज दपधा वलस्य यो अश्मनोरंतरग्निम जजान संवृक समत्सु स जनास इंद्रः। हे मनुष्यों, जिसने वृत्र राक्षस को मारकर जलवृष्टि कराकर सात नदियों को प्रवाहित किया, जिसने राक्षस द्वारा अपहृत की गई गौवों को मुक्त कराया, जिसने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिसने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव हैं। येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः श्वघ्नीव यो जिगीवाम लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिसने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिसने दास वर्ण को निम्न स्थान प्रदान किया, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिसने व्याध द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। यम स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुते माहुनैर्षो अस्तीत्येनम् सो अर्यः पुष्टीर विजयवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्रः। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं, उन इंद्रदेव के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं ही नहीं। वे इंद्रदेव उन्हें न मारने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महान देव इंद्र ही हैं। यो रुद्रस्य चोदिता यह कृशस्य, यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेह, युक्त ग्रामणो यो विता सुशिप्रह सुतसोमस्य सजनास इंद्रह। हे मनुष्यों, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर कूट कर जो यजमान तैयार हैं, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यस्याश्वासः प्रदिशि, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथासः, यः सूर्यं य उषसं जजान, यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। हे मनुष्यो, जिनके अधीन समस्त ग्राम, गौएं, घोड़े तथा रथ हैं, जिनने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे वर उभया अमित्राः समानं चिद्रथा मातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रः। हे मनुष्यों, परस्पर साथ साथ चलने वाले द्युलोक तथा पृथ्वीलोक जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ दो वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर ही हमारा आश्रयदाता है और शक्तिदाता भी। वही आपातकाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदमी के पास अगर दो विकल्प हों कि या तो वो बड़ा अफसर बन जाए और खूब मजे करे, या फिर छोटा मोटा लेखक बनकर अपने मन की बात कहने की आजादी अपने पास रखे, तो भाई बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। लेखक के पक्ष में एक बात और जाती है कि उसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। हम कभी नहीं कहते कि स्वर्गीय कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं या स्वर्गीय प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक थे। लेखक सदा जीवित रहता है, ये विचार थे अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार शरद जोशी के। और सच है कि व्यंग्य को हंसने हंसाने की हास्यास्पद कवायद नहीं, बल्कि जन पीड़ा की तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष रखने वाले महान व्यंग्यकार शरद जोशी आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके तीखे शब्द हमेशा लोगों को जगाते रहेंगे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम शामिल है। उनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों की बेबाक तस्वीर नजर आती है। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ सटीक शब्दों में व्यक्त किया। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में मंच पर गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। फिर शरद जोशी 25 सालों तक कविता के मंच से गद्य पाठ करते रहे। वो एक स्थापित व्यंग्यकार तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास लिखे, व्यंग्य नाटक लिखे, उन्होंने अनेक टीवी धारावाहिक लिखे और इसके साथ ही कई फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। उनकी भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण का ढंग विषय के मुताबिक होता, जो सीधे उनके पाठकों या दर्शकों के मन में उतर जाता था। सामाजिक विसंगतियों को लेकर एक बेचैनी उनके मन में हमेशा रही, जो उनके पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को आंदोलित कर देती थी।

शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी और माता जी का नाम शांति जोशी था। उनका परिवार मूलतः गुजरात का रहने वाला था, जो बाद में मालवा में आकर बस गया था। शरद जोशी के पिता रोडवेज में डिपो मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूंकि पिता का स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए शरद जोशी का बचपन मऊ, उज्जैन, नीमच, देवास और गुना जैसे छोटे शहरों में बीता। दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में इंदौर के होलकर महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपने शिक्षा काल से ही वो लेखन से जुड़ गए थे, यहां तक कि अपने लेखन से प्राप्त आय से ही उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सन 1955 में शरद जोशी आकाशवाणी इंदौर में पांडुलिपि लेखक के रूप में कार्य करने लगे थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश सूचना एवं प्रकाशन विभाग में जनसंपर्क अधिकारी रहे। यहां रहते हुए उनकी पहचान एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के रूप में हो चुकी थी। कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका के साधन के रूप में चुना। किसी के बंधन में बंधकर रहना उनके स्वभाव में नहीं था, इसीलिए उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता की ओर रुख किया। शरद जोशी ने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ कहानियों से किया था। 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। दरअसल शरद जोशी अपने आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस वजह से उनके अति घनिष्ठ मित्र और हितैषी भी उनसे दूर हो गए। मतभेद हुए तो अत्यंत आत्मीय संबंध भी कड़वाहट में बदल गए। लेकिन शरद जोशी ने सदा वही कहा और वही किया जो उन्हें सही लगता था। अपनी आलोचना से खिन्न होकर ही उन्होंने व्यंग्य लिखना आरंभ किया था। दुनिया के अखबारी इतिहास में ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलेंगे कि किसी लेखक के स्तंभ को पढ़ने के लिए पाठक विशेष रूप से किसी अखबार को खरीदें। ये सौभाग्य शरद जोशी के हिस्से था। उनका रोजाना स्तंभ प्रतिदिन अत्यंत लोकप्रिय था। ये कॉलम अखबार के आखिरी पन्ने पर छपता था। पाठकों को इस कॉलम का बेसब्री से इंतजार रहता। इसे पढ़ने के लिए वो विशेष रूप से अखबार खरीदते और अखबार पढ़ने की शुरुआत अंतिम पृष्ठ से करते। सन 1960 के बाद का समय हिंदी साहित्य में विरोध के स्वर की स्वीकार्यता का दौर था। इससे पहले विरोध को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। शरद जोशी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरी चोट की। लोगों को लगा कि जो बात वो नहीं कह पाते वो इन व्यंग्यों में कही गई है। उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। शरद जोशी ने लोगों को किसी भी घटना को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने शालीन भाषा में भी अपनी बात बहुत बारीकी से रखी, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शरद जोशी ने जनता की समस्याओं को जनता की भाषा में जनता के सामने अनोखे ढंग से रखा। उनकी कलम की संवेदना ने जन जन के मन को छू लिया। जन जन

शरद जोशी एक आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तमाम रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने इरफाना सिद्दीकी से विवाह किया था। इरफाना एक पढ़ी लिखी उदार विचारों की लड़की थीं, जो उन दिनों रंगमंच और कथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय थीं। दोनों का ये विवाह परिवार को स्वीकार नहीं था, लेकिन दोनों ने ही इसका डटकर सामना किया। दरअसल शरद जोशी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जैसा लिखा वैसा ही जिया भी। उन्हें किताबें खरीदने और पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें खरीदने के लिए वो अपनी आय में से बड़ी राशि खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने यशपाल, प्रेमचंद, टॉलस्टॉय, चेखव, गोरकी, रवींद्रनाथ टैगोर, मंटो और कृष्णचंदर जैसे महान साहित्यकारों को खूब पढ़ा और उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित भी हुए। इसीलिए उनके भीतर एक गहरी साहित्यिक समझ हमेशा नजर आती है। जितनी विविधता उनके विषयों में दिखाई देती है, उतनी ही उसके प्रस्तुतीकरण में भी झलकती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राग भोपाली, घाव करे गंभीर आदि। शरद जोशी ने दो व्यंग्य नाटक तथा उपन्यास भी लिखे थे। उनके लिखे टीवी धारावाहिक अत्यंत लोकप्रिय हुए, जिनमें प्रमुख थे ये जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और वेताल, सिंहासन बत्तीसी, दाने अनार के आदि। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में संवाद लेखन भी किया। ये फिल्में थीं क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आंच नहीं, दिल है कि मानता नहीं आदि। शरद जोशी ने रेडियो में वार्ता, प्रहसन और नाटक भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में विशेष पहचान तब मिली जब धर्मवीर भारती ने उनकी एक व्यंग्य रचना गागरिन का यात्रा भत्ता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। वो पूरे 25 साल तक कवि सम्मेलन के मंचों पर व्यंग्य पाठ के साथ उपस्थित होते रहे। हिंदी साहित्य जगत में टिकट खरीदकर व्यंग्य सुनने वाले श्रोताओं की परंपरा की शुरुआत शरद जोशी ने ही की। वो कहा करते थे कि आप सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, तो फिर किसी लेखक की रचनाएं बिना दाम चुकाए क्यों सुनना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर खूब व्यंग्य पढ़े और खूब लोकप्रियता अर्जित की। जैसे कवि सम्मेलनों में कवि बुलाए जाते थे, वैसे ही शरद जोशी भी बुलाए जाते थे और उनका व्यंग्य पाठ अच्छे से अच्छे कवि पर भी भारी पड़ता था। शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी व्यंग्य रचनाओं की विशेषता थी उनकी तात्कालिकता। देश समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर वो तुरंत व्यंग्य लिखते थे, इसीलिए पाठक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। अपनी सहज और बोलचाल की भाषा में लिखी रचनाओं के द्वारा वो पाठकों के मन तक अपनी पहुंच बना लेते थे। उनका व्यंग्य लेखन मस्तिष्क को केवल झकझोरता भर नहीं था, बल्कि एक नई सोच पैदा करता था। जनता उनके लेखन के केंद्र में थी। उनकी रचनाएं आम जन में जागृति पैदा कर देती हैं। उनका व्यंग्य पाठकों की बौद्धिकता को उत्तेजित कर देता है। इसीलिए शरद जोशी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। अपने हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलेपन से आम जन को जगाने वाले शरद जोशी ने 5 सितंबर सन 1991 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और मैं लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश का शासन था। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज की कमान अपने हाथों में ली। गोंड रानी दुर्गावती ने गढ़ा राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। उन्होंने कई युद्ध लड़े। वो उस काल की ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी लोकप्रिय शासिकाओं में से एक हैं। उन्होंने अनेक लोक उपयोगी कार्य कराए, अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर में अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराया, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उनके काल में पचमठा मंदिर की स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें 5 गर्भगृह हुआ करते थे। ये पचमठा मंदिर वास्तव में मठ थे और यहां विद्या अध्ययन अध्यापन के लिए दूर दूर से विद्वान और विद्यार्थी आते थे। रानी दुर्गावती के काल में भी ब्रज से पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ जी दक्कन जाते हुए गढ़ा राज्य के जबलपुर पधारे। उनके आगमन से गोंड राज्य गढ़ा में वैष्णव भक्ति का प्रभाव बढ़ गया। उनकी बैठकें बनी, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और गोपाल के अनेक मंदिर बने। तेलंगाना के लिंगायत ब्राह्मणों ने जब धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया तब उन पर विपदा आन पड़ी। इस कठिन समय में गोसाई विट्ठल दास जी उन्हें अपने साथ गढ़ा ले आए और रानी दुर्गावती ने लिंगायत ब्राह्मणों को नर्मदा किनारे अनेक गांव में बसाया। ये सारी जानकारी हमें अभी तक दी है पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना जी ने और जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आज हम पांचवी कड़ी में क्या बात करने वाले हैं पूजा जी? वैसे आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पहले बताई हैं। आपने पिछली बार कुछ हमें ये हिंट किया था कि दिल्ली के मुगल दरबार पर भी रानी का असर दिखाई देना शुरू हो गया था, रानी दुर्गावती जी का।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि रानी दुर्गावती के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मुगल दरबारी लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। उन्होंने लगान के बारे में लिखा था कि गढ़ा के गोंड राज्य की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था कि गढ़ा राज्य इतना संपन्न था कि वहाँ के किसान और व्यापारी लगान सोने की मोहरों और हाथी के द्वारा दिया करते थे। ये उनकी समृद्धि दिखाता है। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरी, हमें और भी इतिहास उनके साहित्य में दिखाई देता है। तो मुगल दरबार में गढ़ा राज्य की खबरें लगातार पहुंच रही थी
0: जी।
1: चाहे वह लगान हो, चाहे गोसाई विट्ठलनाथ जी का गढ़ा में आगमन हो, या मठ मंदिरों का निर्माण, या फिर रानी का सच्चरित्र, सब पर चर्चाएं जोरों से थी। रानी का प्रभाव इतना था कि मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा
0: जी।
1: और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने भी लगे थे, जिसका खामियाजा रानी दुर्गावती को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा
0: जी।
1: तो रानी अत्यधिक चरित्रवान और साहसी थीं। उनकी तारीफ अबुल फजल ने ही नहीं की है बल्कि दूसरे मुगल दरबारी लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में उन्हें खूब सराहा है
0: जी। तो क्या पूजा जी और कुछ लेखकों के नाम हम जान सकते हैं कि कहाँ और किसने ये जिक्र किया है?
1: एक बड़े प्रसिद्ध दरबारी लेखक हुए हैं मुगल काल के, बदायूनी
0: जी।
1: तो बदायूनी ने मुतखाब उत तवारीख नामक एक किताब लिखी है और उन्होंने गढ़ा के गोंड रानी दुर्गावती के सौंदर्य का वर्णन भी किया है और उनके साहस का भी बहुत वर्णन किया है। इसके अलावा एक और लेखक हुए निजामुद्दीन अहमद, उन्होंने तबाकत ए अकबरी में रानी दुर्गावती के सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा की है। यहाँ तक तो ठीक था। एक और लेखक हैं जिनको हम सब ने लगभग पढ़ा होगा
0: जी।
1: वो है फरिश्ता, जिनकी बड़ी फेमस किताब है तारीख़े फरिश्ता
0: जी।
1: और उन्होंने भी दुर्गावती की प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य की, उनकी प्रतिभा की और उनके चरित्र की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही उनको सच चरित्र बता रहे हैं और उनका जो इतना सुदृढ़ चरित्र है वही जाकर उनको इतने बड़े गढ़ा राज्य की स्थापना उसको बनाए रखने में सहयोग देता है।
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से जब तक किसी का चरित्र अच्छा ना हो वो अपना राज्य तो बहुत अच्छा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक अच्छे चरित्र की ही नींव पर एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।
1: बिल्कुल, काफी देर से चर्चा कर रहे हैं मुगल इतिहासकार अबुल फजल की
0: जी। हाँ।
1: तो अबुल फजल ने जब रानी दुर्गावती के बारे में वर्णन किया तो कुछ बात उनकी ध्यान देने वाली है जो आगे के इतिहास को रचने में महत्वपूर्ण है। तो जब अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के साहस की प्रशंसा की तो उन्होंने आगे यह भी लिख दिया कि रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और ये रानी की सबसे बड़ी गलती थी
0: जी।
1: तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अधीनता न स्वीकार करना रानी को बहुत महंगा पड़ा। तो जब उसने आगे लिखा तो यह भी लिखा कि वो बहुत अदम्य साहस और कर्तव्य परायण जैसे आधारभूत तत्वों का उनमें कोई अभाव नहीं था रानी में, और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बहुत महान कार्य भी किए थे। और ये भी लिखते हैं अबुल फजल की मालवा के सुल्तान बाज बहादुर से उन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और वो विजय भी रही थी। जैसा हमने पहले भी सुना वह बहुत ही अच्छी निशानेबाज भी थी। लेकिन वो आगे लिखता है कि रानी दुर्गावती में एक ही दोष था
0: जी।
1: और वो दोष यह था कि उन्होंने कभी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
0: लेकिन ये तो दोष मुगलों की नजरों में था, देखिए पूजा जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे सच्चरित्र का और ऐसी देशभक्ति का क्या अर्थ जो पर अधीन हो जाए। तो रानी दुर्गावती ने अपने गोंड राज्य की बिल्कुल रक्षा की, मुगलों के अधीन होना उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और इस बात पर हम सबको आज गर्व है। मुगल तो उनके विरोधी थे और भले ही वो ऐसा लिखते हों, क्योंकि वो ऐसा लिखना चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसी वीरांगना उनके अधीन हो जाए। लेकिन पूजा जी, इस बीच ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने कुछ लोगों को भेजा भी था गढ़ा राज्य में।
1: जब मुगल दरबार में बहुत चर्चाएं बढ़ने लगी तो जिज्ञासा होना बहुत जरूरी था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के बारे में सही जानकारियां जुटाने के लिए दो लोगों को भेजा गया। तो ऐसी जनश्रुति है कि अकबर ने दो विद्वान थे उनको भेजा था, एक थे गोप महापात्र और दूसरे थे नरहरि महापात्र
0: जी।
1: इनका इतिहास भी मिलता है, इसलिए ये किंवदंती काफी सत्य के करीब लगती है। तो गढ़ा राज्य के दीवान आधार कायस्थ ने जब गोप महापात्र को जबलपुर भेजा गया
0: जी।
1: तो उनका बड़ा सम्मान किया जब वो गढ़ा आए
0: जी,
1: क्योंकि वो बड़े जाने माने विद्वान थे गोप महापात्र। गढ़ा राज्य के तो पहले से ही था कि वो विद्वानों को खूब प्रश्रय देते थे। तो गोप महापात्र बड़े खुश होकर गढ़ा से वापस दिल्ली पहुंचे। और इसी प्रकार जब नरहरि महापात्र आए तो रानी दुर्गावती ने उनका भी बहुत स्वागत किया और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें उस समय 1 करोड़ रुपए की जो कीमत बनती है ऐसा पुरस्कार दिया। ये लिखित
0: उस समय 1 करोड़ के साक्ष्य हैं।
1: हाँ, के साक्ष्य हैं। तो नरहरि महापात्र और गोप महापात्र के बारे में हमें कई जानकारियां इससे संबंधित मिलती हैं। तो कहते हैं कि जब गोप महापात्र दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां गढ़ा के मंत्री आधार कायस्थ की बुद्धिमता की बड़ी तारीफ की
0: जी।
1: इस पर सम्राट ने आधार सिंह कायस्थ को दिल्ली बुलवाने के लिए एक दोहा लिखकर पत्र भेजा
0: जी।
1: और दोहा ऐसा था कि अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपेत सोई अरु आधार दीवान। इसका अर्थ यह है कि अगर बहुत बुद्धिमान है तो जरा भेजो दिल्ली अपने दीवान को
0: जी। तो क्योंकि उनके विद्वान आधार कायस की तारीफ कर रहे थे
1: जी। हाँ,
0: वाह।
1: तो ये पढ़कर रानी दुर्गावती ने आधार कायस को एक सफेद हाथी के साथ मुगल दरबार भेजा। इसके कई कारण भी थे
0: जी।
1: जो सफेद हाथी साथ में भेजा गया
0: क्योंकि
1: था,
0: सफेद हाथी ज्यादातर होते नहीं है।
1: हाँ,
0: तो इसके पीछे कोई रहस्य रहा होगा।
1: पर सफेद हाथी इस क्षेत्र में, जैसे हमने सुना है कि उस समय में कुछ किंवदंती आती हैं जिसमें सफेद हाथी का वर्णन आता है।
0: अच्छा।
1: पर हाँ, यहाँ यह है कि आधार कास्ट के साथ एक सफेद हाथी भेजा। सफेद हाथी यहाँ पे प्रतीकात्मक भी हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि गढ़ा राज्य को संभालना कोई इतना आसान नहीं, हाथी पालने बराबर है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आधार कायस्थ मुगल दरबार में पहुंचे
0: जी।
1: तो उन्होंने देखा कि अकबर जो है अपने सिंहासन पर ही नहीं है और अकबर जो है वो पहले ही उनकी बुद्धिमता की जांच करने के लिए दरबारियों के बीच में साधारण कपड़े पहनकर बैठ गए थे।
0: अच्छा।
1: तो आधार कायस्थ ने जब दरबार में प्रवेश किया और उन्हें सिंहासन सुना लगा तो उन्होंने पूरे दरबार पर नजर घुमाई। फिर उन्होंने एक साधारण वेशभूषा में बैठे हुए एक आदमी की ओर देखा और उन्हें नमस्कार किया, तो वो अकबर ही था। तो अकबर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने भरे दरबार में, पल भर में आधार कायस्थ ने उन्हें पहचाना कैसे
0: जी।
1: तो उन्होंने आधार कायस्थ से पूछा कि आपने पल भर में कैसे पहचाना। तो आधार कायस्थ ने जवाब दिया कि मैंने जब सबकी ओर देखा तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की नजरें आपकी ओर देख रही थी और देखते ही झुक गई थी, तो जैसे ही मैंने ये देखा मैं समझ गया कि आप ही सम्राट हैं।
0: वाह, तो कितनी अच्छी बातें पूजा जी हमें बता रही हैं। हम पांचवी कड़ी सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपका रेडियो मित्र मैं संदीप शर्मा आपके साथ बना हुआ हूं। और आज पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि दिल्ली से आए हुए मुगल शासक अकबर के भेजे हुए विद्वानों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर रानी दुर्गावती ने उस समय 1 करोड़ रुपए उन्हें दिए। तो इससे तो निश्चित रूप से ये पता लगता है कि हमारा जो गढ़ा राज्य था वो कितना ज्यादा समृद्ध था।
1: जी हाँ।
0: अच्छा पूजा जी, आपने सफेद हाथी की बात कही कि आधार कायस्त वहाँ सफेद हाथी के साथ गए, रानी दुर्गावती ने उन्हें भेजा, लेकिन कहते हैं कि कुछ एक और बहुत अजीब सी चीज भेजी गई थी, वो क्या थी?
1: जब आधार कायस्त से अकबर मिले तो वो बहुत उनसे प्रभावित हुए
0: जी,
1: और उनका काफी मान सम्मान भी किया। फिर उन्होंने जिस उद्देश्य से उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने गढ़ा राज्य के बारे में आधार कायस्त से पूछा
0: जी।
1: तो कहते हैं कि रानी ने आधार कायस्त के हाथों सोने का एक करेला भिजवाया था
0: जी।
1: खाने वाला करेला होता है
0: जी,
1: सोने का बना हुआ था वो करेला, ऐसा एक करेला भेजा। तो जब अकबर ने गढ़ा राज्य के बारे में पूछा तो आधार कायस्त ने वह सोने का करेला उनके सामने रख दिया
0: जी।
1: जिसका मतलब ये था कि गढ़ा राज्य सोने की तरह संपन्न है, उसकी भूमि उबड़ खाबड़ है जैसे करेले की होती है
0: जी।
1: लेकिन यदि हमसे शत्रुता की तो हम करेले से
0: कम कड़वे नहीं है। क्या बात है,
1: सही का।
0: तो ये तो बड़ी दूरदर्शिता की बात थी, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या इन्हीं विशेषताओं के चलते और ये जो संदेश कुछ ऐसे भेजे गए, क्या इसी के चलते मुगलों और गोंड राज्य के बीच ठन गई?
1: हाँ बिल्कुल, ये जो बातें हो रही थी ये धीरे धीरे दोनों ही राज्यों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही थी
0: जी।
1: मुगल दरबार में ये सुगबुगाहट थी कि गढ़ा की सीमाएं बड़ी सुदृढ़ होती जा रही हैं, रानी की प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ रही है, ये सब अकबर को एक चुनौती जैसा लग रहा था
0: जी। हाँ।
1: तो अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था आसफ खां
0: जी,
1: मालवा में तैनात था वो। और आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियां जितनी भी होती थी उसकी सूचना मुगल दरबार तक पहुँचाया करता था। तो रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया था
0: जी।
1: रानी दुर्गावती के पास एक विशाल और सुसज्जित सेना थी। सेना में 20,000 घुड़सवार थे, 1,000 युद्ध हेतु प्रशिक्षित हाथी थे और पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी सेना थी
0: जी।
1: तो आसफ खान ने रानी के लोक उपयोगी कार्य जो थे, तालाब बन रहे हैं, मठ मंदिर बन रहे हैं, इस सब की सूचना, एक एक सूचना मुगल दरबार तक पहुंचती रही जो दरबारी लेखक है उनके विवरणों में मिलती है। और रानी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सुदृढ़ सीमाएं सभी को बेचैन कर रही हुई थी।
0: पूजा जी, क्या इन सब सूचनाओं के अतिरिक्त बढ़ती हुई जो धन संपदा थी, जो समृद्धि थी गढ़ा राज्य की, क्या वो भी शत्रुता का एक बड़ा कारण बनी?
1: बिल्कुल, धन तो सबको आकर्षित करता ही है और कोई भी राज्य उसके पास कितना सुरक्षित धन है उस पर उसकी ताकत निर्भर करती है
0: जी।
1: तो गढ़ा तो हम देख ही रहे थे कि गढ़ा के पास शुरू से ही बात कर रहे हैं हम कि अकूत संपदा थी
0: जी। और इतनी कि अकबर जैसे राजा को जिसके पास खुद ही अकूत संपदा थी उसे यहाँ इतना धन देख करके जलन हुई।
1: बिल्कुल, तो इसकी पूरी खबर तो मुगल दरबार को पहुंची रही थी। रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ का जो किला है आज के नरसिंहपुर में
0: जी,
1: तो वहां पर अपनी सारा खजाना सुरक्षित रखवा दिया था
0: जी।
1: चौरागढ़ जो है एक दुर्गम किला है, हमने पहले भी बात की थी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इस किले को घेरते हुए और भी गढ़ हैं, जैसे फतेहपुर है, नमुआगढ़ है, भवरगढ़ है, पावागढ़ और देवरी है
0: जी।
1: तो ये एक सुरक्षित किला था, यहाँ पर सारा खजाना रखवा दिया गया
0: जी।
1: प्राकृतिक रूप से भी ये किला बहुत सुरक्षित था। तो गढ़ा राज्य की अकूत संपत्ति सालों से यहाँ सुरक्षित रखी हुई थी
0: जी।
1: लेकिन इस संपत्ति की सूचना मुगल सेनापति आसफ खां को लग गई और उसने दरबार में उसका बखान कर दिया
0: जी।
1: तो मुगल सम्राट अकबर के मन में उसके लिए लालच आ गया।
0: अच्छा।
1: और उनका ध्यान अब गढ़ा की संपत्ति पर था
0: जी।
1: लेकिन युद्ध का कारण सिर्फ संपत्ति नहीं थी बल्कि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे एक और कारण था वो ये था कि उस समय हाथियों का बड़ा महत्व था
0: जी।
1: हाथियों का उपयोग युद्ध के लिए होता था
0: जी,
1: प्रोसेशन के लिए होता था, अगर आप कहीं इरादा
0: एक शाना
1: शौकत के लिए होता था, सवारी के लिए होता था, खेलों के लिए होता था, प्रदर्शन के लिए होता था, तो प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी आवश्यकता होती थी। और ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में उस समय विंध्याचल के पर्वत में, पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में खूब हाथी हुआ करते थे, इसके लिखित प्रमाण है। तो ये जो गोंड जनजाति थी ये हाथियों को प्रशिक्षित करने में बड़ी
0: सिद्धस्थ थे,
1: बड़ी सिद्धस्थ थी। तो इनके पास बड़े अच्छे किस्म के हाथी होते थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी होते थे। तो हमेशा से जो दिल्ली दरबार था वो इन हाथियों की चाह में रहता था। तो एक कारण ये भी था कि यहाँ के जो स्वस्थ और प्रशिक्षित हाथी थे वह भी मुगल दरबार चाहता था। यह भी युद्ध का एक बड़ा कारण बना
0: जी। और पूजा जी, एक और कारण की बात इतिहास में कुछ ऐसा देखने को मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि दक्कन में बहुत सारे लोगों ने धर्मांतरण करने से मना कर दिया था, और यहाँ पर तो वैसे ही पुष्टिमार्गी संत जिनका आपने जिक्र किया, विट्ठल नाथ जी का प्रभाव हो चला था, तो क्या ये भी एक कारण था?
1: मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा कारण था। जैसा आपने कहा अकबर के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाथी बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकते, एक कारण हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण उस समय शायद सबसे बड़ा कारण था, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देख रहे हैं कि पुष्टिमार्गीय संत विट्ठल नाथ जी के प्रभाव से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था और बड़ी संख्या में धर्मांतरण रोके जा रहे थे, और मुगल दरबार को यह गवारा नहीं था, जिसका परिणाम आसफ खां के द्वारा गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। ये सब मिलकर आक्रमण का कारण बने।
0: पूजा जी, जिस तरह से रानी ने वहां पर एक सोने का करेला भेजा था, आपने जिक्र किया, सफेद हाथी भेजा था, आधार कायस्थ वहां पर गए थे, कुछ ऐसा ही अकबर ने भी रानी को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई ऐसी कोई चीज यहाँ भेजी थी, ऐसा सुनने में आता है?
1: अकबर की ओर से रानी दुर्गावती को लज्जित करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे थे, और जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए
0: जी।
1: तो एक बड़ी प्रसिद्ध किंवदंती है कि रानी को यह जताने के लिए कि वो एक महिला है
0: जी।
1: और उसे घर के काम संभालने चाहिए, शासन नहीं
0: जी।
1: अकबर ने अपने दूत से रानी को एक चरखा भिजवाया, सूत काटने का चरखा
0: जी।
1: तो जिसका मतलब था कि तुम एक साधारण स्त्री हो, सूत काटो और अपना घर चलाओ, यहाँ क्या कर रही हो
0: जी।
1: तो रानी भी कोई किसी से कम तो थी नहीं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनका मनोबल तोड़ना भी आसान नहीं था
0: जी।
1: तो अकबर ने उनको चरखा भेजा था, रानी ने उनको एक पिंजन भेजा
0: जी।
1: पिंजन मतलब होता है जो रुई काटने का एक सुई होती है, पिंजन,
0: अच्छा,
1: हाँ, जिससे सूत बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जिसका अर्थ ये था कि अगर मेरा काम चरखा काटना है तो तुम्हारा काम रुई पिंजना है, रुई धुनना है, तो तुम अपना काम करो।
0: वाह भाई वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से लेकिन तनातनी और बढ़ती चली गई होगी।
1: हाँ, दोनों राज्यों के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। सेनापति आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के खूब कान भरे
0: जी।
1: इधर गोंड राज्य से मंत्री आधार कायस्थ युद्ध टालने का भरपूर प्रयास करते रहे, किंतु आसफ खान रीवा राज्य को जीत चुका था जो कि गढ़ा राज्य की सीमा पर था, यानी कि आसफ खान गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर घात लगा के बैठ गया था। तो जल्दी ही इसका परिणाम हमको युद्ध के रूप में देखने को मिलने ही वाला था।
0: मतलब दुश्मन बिल्कुल किले के बाहर आ ही चुका था लगभग, और अब कभी भी युद्ध का बिगुल यहाँ पर फूंका जा सकता था मुगलों की ओर से।
1: जी हाँ।
0: चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और अब हम अपनी अगली कड़ी में ये जानेंगे कि क्या युद्ध का बिगुल फूंका गया, अब युद्ध होता है या नहीं, आपको बताएंगे हम अगली बार। पूजा जी हमारे साथ अगली बार भी बनी रहेंगी, डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में उपयोगी जानकारियां दे रही हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को, हमारी जानकारी के भंडार को बढ़ा रही हैं। तो श्रोताओं, बने रहिएगा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। मैं संदीप शर्मा आपसे आज इजाजत लेता हूं, आप सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
2: जी,
1: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहाँ क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
2: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है।
2: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
1: जी।
2: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
1: जी,
2: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें उसे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए। तो ये राम जी, चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
1: जी जी
2: जी।
1: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
2: जी।
1: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता, कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
1: जी।
2: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
1: जी,
2: वो इसलिए कहा, जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
1: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
2: जी।
1: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
2: जी जी।
1: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
2: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
1: दृष्टि कैसी हो?
2: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है। योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह है, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है, जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डुबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहाँ तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
1: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
2: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
1: एक तरह
2: लोग
1: से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
2: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा। वो कभी भी किसी भी विषय से, चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी, अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
1: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
2: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा
1: जी,
2: यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांघ जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
1: कोई उथल पुथल,
2: नहीं है। तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
1: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो,
2: बिल्कुल ठीक है, वो वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है
1: जी,
2: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है। तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो है जहां तरंगे शांत हो गई हो और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
1: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
2: जी,
1: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
2: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है। ये सात्विक बल हैं
1: जी।
2: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा। और लक्ष्मी को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा विनय शांत उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
1: तो बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो,
2: सात्विक बल के साथ हो
1: जी, जी।
2: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
1: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण है कुछ बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है, और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियमाण, जो कर्म आप कर रहे हैं
1: जी, जी, जी।
2: और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
1: जी अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
2: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
1: नहीं
2: है
1: देखा।
2: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि ये संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा, और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता, और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
1: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा,
2: जी
1: ऐसा क्यों कहा?
2: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
1: जी।
2: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं ना कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है, और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
1: जी, एक दिन
2: वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
1: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
2: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांत के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा। और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं, भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है, वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है, वो कल्प।
1: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें।
2: जी, इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है, ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है, राम जी कह रहे हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है। जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षण जीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
1: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
2: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है। क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने, अपने विवेक को जागृत करने के।
1: जी जी, तो क्षण भंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
2: जी,
1: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
2: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें, तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है, और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
1: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत की पहचान केवल उसके इतिहास की प्राचीनता से नहीं होती। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, उसकी संस्कृति, उन महापुरुषों में निहित होती है जो समय के प्रवाह में उसकी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। कुछ व्यक्तित्व तलवार से इतिहास रचते हैं, कुछ नेतृत्व से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और कुछ अपने चिंतन तथा शोध से एक पूरी सभ्यता को स्वयं अपने बारे में सोचने का नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम ऐसे ही मनीषी की जीवन यात्रा को जानेंगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को केवल अध्ययन का विषय नहीं माना बल्कि उसे भारत की जीवित चेतना के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को नए अर्थ दिए, संग्रहालयों में सुरक्षित मूर्तियों को इतिहास की भाषा बना दिया। भारतीय कला, साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति के बीच ऐसा संबंध स्थापित किया जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान की नई दिशाएं खोल दी। आज के हमारे भारत विभूति हैं वासुदेव शरण अग्रवाल।
3: उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक भारत के बौद्धिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ओर देश स्वतंत्रता की आकांक्षा से प्रेरित हो रहा था तो दूसरी ओर भारतीय विद्वानों के मन में अपने अतीत को समझने की तीव्र जिज्ञासा भी जन्म ले रही थी। लंबे समय तक भारत के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन विदेशी दृष्टि से किया जाता रहा था, भारतीय स्रोतों को सीमित महत्व दिया जाता था और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अक्सर केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित करके देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ भारतीय विद्वानों ने यह अनुभव किया कि यदि भारत को सही अर्थों में समझना है तो उसके अपने ग्रंथों, उसकी भाषाओं, उसकी कला, उसके पुरातात्विक अवशेषों और उसकी लोक परंपराओं को एक साथ पढ़ना होगा। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं होता, वो समाज की स्मृति होता है, संस्कृति उसका आत्मबोध होती है और साहित्य उस आत्मा की अभिव्यक्ति। इन्हीं विचारों के बीच एक ऐसा युवा विद्वान उभर कर सामने आया जिसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने के लिए समर्पित कर दिया।
2: उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार शिक्षित था, भारतीय संस्कारों से समृद्ध था, घर का वातावरण अध्ययन और अनुशासन से भरा हुआ था। यही वातावरण उस बालक के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल में जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहते थे, उन्हें इतिहास की घटनाएं आकर्षित करती थी, प्राचीन कथाएं उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती थी, संस्कृत भाषा की संरचना उन्हें आश्चर्यचकित करती थी और भारतीय परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ उन्हें लगातार अपनी ओर खींचते थे। कहा जाता है कि प्रत्येक महान शोधकर्ता के भीतर एक जिज्ञासु बालक हमेशा जीवित रहता है। वासुदेव शरण अग्रवाल के भीतर भी वही जिज्ञासा जीवन भर बनी रही। वे किसी तथ्य को केवल स्वीकार नहीं करते थे, उसके पीछे छिपे प्रमाणों को भी खोजते थे, उसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते थे और फिर उसे व्यापक भारतीय परिपेक्ष में रखकर देखते थे।
3: श्रोताओं, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका अध्ययन निरंतर आगे बढ़ता गया। विद्यार्थी जीवन में ही स्पष्ट हो गया था कि उनकी रुचि सामान्य विषयों की अपेक्षा भारतीय इतिहास, संस्कृत साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्ययन में अधिक है। उस समय देश के अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन का नया वातावरण बन रहा था। नई पीढ़ी अपने अतीत को आधुनिक शोध पद्धतियों के माध्यम से समझना चाहती थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इसी दिशा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान इतिहास, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। बाद में शोध कार्य के लिए उन्होंने ऐसा विषय चुना जिसने उनके संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। महर्षि पाणिनि भारतीय व्याकरण के महान आचार्य, सदियों से विद्वान, उनकी अष्टाध्यायी का अध्ययन भाषा विज्ञान के महान ग्रंथ के रूप में करते आए थे, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसमें कुछ और देखा। उन्हें लगा कि ग्रंथ केवल व्याकरण का नियम संग्रह नहीं है, इसके भीतर उस समय के भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी सुरक्षित है। और यहीं से आरंभ हुई उनके जीवन की वो शोध यात्रा जिसने आगे चलकर भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक नया आधार प्रदान किया।
2: उस समय अधिकांश लोगों की दृष्टि में अष्टाध्यायी एक महान व्याकरण ग्रंथ थी, भाषा के नियमों को समझने का अनुपम आधार। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसे केवल व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसके प्रत्येक सूत्र के पीछे छिपे जीवन को पहचानने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि किसी ग्रंथ में नगरों का उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख है, व्यवसायों का उल्लेख है, शिक्षा, कृषि, शिल्प, उत्सव और सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख है, तो वो केवल भाषा का ग्रंथ नहीं रह जाता, वो अपने समय का सांस्कृतिक दस्तावेज भी बन जाता है। इसी दृष्टि ने उनके शोध को एक नई दिशा दी। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों में बिखरी हुई सूचनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ किया, एक एक संदर्भ को अन्य प्राचीन स्रोतों से जोड़ कर देखा, जहां आवश्यकता हुई वहां पुरातात्विक प्रमाणों का सहारा लिया, साहित्य, इतिहास और पुरातत्व को एक साथ रखकर उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन का ऐसा स्वरूप सामने रखा जो उस समय तक बहुत कम देखने को मिला था।
3: जी हाँ, हालांकि ये कार्य सरल नहीं था। इसके लिए केवल संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इतिहास की समझ भी चाहिए थी, भारतीय समाज की संरचना का अध्ययन भी आवश्यक था, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों और कला के इतिहास का भी गहरा ज्ञान अपेक्षित था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सभी क्षेत्रों का गंभीर अध्ययन किया और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी विद्वान के रूप में विकसित होता गया। उनका विश्वास था कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उपलब्ध प्रमाणों का धैर्यपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, अनुमान के स्थान पर साक्ष्य और कल्पना के स्थान पर तर्क को महत्व देना चाहिए। यही कारण था कि उनके शोध को विद्वानों ने अत्यंत विश्वसनीय माना। उनके लेखन में भावनाएं थीं, लेकिन भावुकता नहीं थी। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन तथ्यों से समझौता नहीं था।
2: उनके अध्ययन का दायरा लगातार विस्तृत होता गया। अब उनकी रुचि केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, वे प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करने लगे, मंदिरों की स्थापत्य परंपरा को समझने लगे, सिक्कों, अभिलेखों और पुरावशेषों को ध्यान से देखने लगे। उनके लिए ये सभी वस्तुएं इतिहास की मौन साक्षी थीं। यदि इन्हें सही दृष्टि से पढ़ा जाए तो ये अपने समय की अनेक अनकही बातें बता सकती थीं। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय कला को केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं देखा, उनके लिए प्रत्येक प्रतिमा अपने समय के समाज का परिचय थी। किसी मूर्ति की मुद्रा, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी निर्माण शैली, इन सब के भीतर उस युग की सांस्कृतिक चेतना छिपी हुई थी। वे इन संकेतों को पढ़ते थे और फिर उन्हें भारतीय इतिहास की व्यापक धारा से जोड़कर देखते थे।
3: धीरे धीरे विद्वानों के बीच उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि ये युवा शोधकर्ता केवल नई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई पद्धति विकसित कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इतिहास को अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता। साहित्य, कला, पुरातत्व, भाषा और समाज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक को समझना है तो दूसरे को भी साथ लेकर चलना होगा। यही समग्र दृष्टि आगे चलकर उनके संपूर्ण लेखन की पहचान बनी। आने वाले वर्षों में उन्होंने जिन संस्थानों में कार्य किया, जिन ग्रंथों की रचना की और जिन शोधों का नेतृत्व किया, उन सब में यही विचार स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की संस्कृति एक अखंड परंपरा है। उसे समझने के लिए केवल अतीत को देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके निरंतर प्रवाह को पहचानना भी आवश्यक है।
2: लेकिन ये तो उनके जीवन की केवल शुरुआत थी। अभी उन्हें संग्रहालयों की दुनिया में प्रवेश करना था, भारतीय मूर्ति कला के अध्ययन को नई दिशा देनी थी, देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी और अपने शोध तथा लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलानी थी। यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वो अध्याय जिसने वासुदेव शरण अग्रवाल को केवल एक विद्वान नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सजग प्रहरी के रूप में स्थापित कर दिया।
3: बहुत से लोग उन्हें केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह मानते हैं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक थी। वे मानते थे कि संग्रहालय केवल अतीत को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है, वे ऐसी जीवंत पाठशालाएं हैं जहां बिना किसी शब्द के इतिहास स्वयं बोलता है, जहां पत्थर भी स्वयं की कहानी कहते हैं और जहां संस्कृति केवल पढ़ी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। यही सोच उन्हें संग्रहालय विज्ञान की ओर ले गई। उनके लिए ये केवल एक नया कार्यक्षेत्र नहीं था, ये भारतीय संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप में समझने का अवसर था।
2: सन 1931 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मथुरा संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। उस समय मथुरा संग्रहालय देश के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिना जाता था। यहाँ कुषाण, शुंग, गुप्त और अन्य अनेक कालों की दुर्लभ मूर्तियां सुरक्षित थीं। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में मथुरा शैली का विशेष स्थान था, लेकिन उसके व्यवस्थित अध्ययन और सांस्कृतिक विश्लेषण की दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना शेष था। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दायित्व को अत्यंत गंभीरता से स्वीकार किया। उन्होंने संग्रहालय की प्रत्येक दीर्घा का अध्ययन किया, प्रत्येक प्रतिमा को ध्यान से देखा, उसके निर्माण काल, उसकी शैली, उसके प्रतीकों और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास किया। उनके लिए ये केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, ये भारतीय कला के माध्यम से भारतीय सभ्यता को पढ़ने का अवसर था।
3: श्रोताओं, मथुरा की धरती सदियों से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। बौद्ध, जैन और वैष्णव परंपराओं की असंख्य कलाकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन धरोहरों को अलग अलग विषयों के रूप में नहीं देखा, उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराएं किस प्रकार एक ही भूमि पर विकसित हुईं और कैसे उन्होंने भारतीय कला को समृद्ध बनाया।
2: लगभग एक दशक तक मथुरा में कार्य करने के बाद वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान केवल एक संग्रहालय अधिकारी के रूप में नहीं रही, वे भारतीय कला और संस्कृति के ऐसे विद्वान बन चुके थे जिनकी दृष्टि इतिहास के अनेक स्रोतों को एक साथ जोड़ने में सक्षम थी। उनके शोध ने ये सिद्ध कर दिया था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साहित्य, पुरातत्व, कला और इतिहास को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यहीं से उनके जीवन की यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ी। अब उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां निभानी थी, भारतीय संग्रहालयों के विकास में नई भूमिका निभानी थी और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संस्थानों को नई दिशा देनी थी।
3: सन 1940 में वासुदेव शरण अग्रवाल को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय का दायित्व सौंपा गया। ये उनके ज्ञान, अनुभव और कार्य कुशलता की सार्वजनिक स्वीकृति थी। मथुरा में किए गए उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल संग्रहालयों का संचालन करने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की असाधारण क्षमता रखते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद भी उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संग्रहालय को केवल वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं माना, बल्कि उसे शिक्षा और शोध का सक्रिय केंद्र बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी संग्रहालय का वास्तविक महत्व उसके संग्रह की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो समाज को अपने इतिहास से कितना जोड़ पाता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रतिमा को देखकर अपने अतीत के बारे में सोचने लगे, यदि कोई शोधार्थी किसी अभिलेख से इतिहास की नई कड़ी खोज ले और यदि कोई सामान्य नागरिक अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व महसूस करे, तभी संग्रहालय अपना उद्देश्य पूरा करता है।
2: इसी अवधि में उनका लेखन भी निरंतर आगे बढ़ता रहा। वे जहां एक ओर संग्रहालयों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर गंभीर शोध भी कर रहे थे। उन्होंने अनेक शोध लेख लिखे, व्याख्यान दिए और प्राचीन भारतीय जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। उनके अध्ययन का दायरा इतना व्यापक था कि इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला और संस्कृति के विद्यार्थी समान रूप से उनके कार्यों से लाभान्वित होने लगे।
3: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब वे दिल्ली से जुड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यों में सक्रिय हुए। स्वतंत्र भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में देश को ऐसे विद्वानों की आवश्यकता थी जो भारतीय विरासत को केवल सुरक्षित ही न रखें बल्कि उसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी करें। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों के विकास, पुरावशेषों के संरक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि भारतीय धरोहरों को केवल अतीत की वस्तुएं मानकर संग्रहित कर लेना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना और समाज तक उनका महत्व पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। यही सोच आगे चलकर भारतीय संग्रहालय आंदोलन की आधारशिला बनी।
2: वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व जितना गंभीर था उतना ही विनम्र भी था। वे मानते थे कि शोधकर्ता का पहला गुण जिज्ञासा है और दूसरा गुण धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी गंभीर अध्ययन संभव नहीं है। वे अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को हमेशा प्रमाण आधारित अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उनका विश्वास था कि इतिहास केवल कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए प्रत्येक तथ्य की सावधानी पूर्वक जाँच आवश्यक होती है। यही कारण था कि उनके साथ कार्य करने वाले अनेक युवा शोधार्थी आगे चलकर भारतीय इतिहास, कला और पुरातत्व के प्रतिष्ठित विद्वान बने। वे केवल शिक्षक नहीं थे बल्कि शोध की संस्कृति विकसित करने वाले मार्गदर्शक भी थे।
3: धीरे धीरे वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन का पर्याय बनने लगा। देश के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और शोध संस्थानों में उनके कार्यों का सम्मान किया जाने लगा। लेकिन उनके लिए ये सब व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं थी। वे मानते थे कि यदि उनके प्रयासों से भारतीय समाज अपनी संस्कृति को थोड़ा और गहराई से समझ सके तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। अब उनके जीवन की यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश करने वाली थी जहां उनका लेखन भारतीय सांस्कृतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर बन गया और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गए।
2: वासुदेव शरण अग्रवाल मानते थे कि यदि शोध केवल पुस्तकों और अभिलेखों तक सीमित रह जाए तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो समाज तक पहुंचे, नई पीढ़ी को प्रेरित करे और लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। यही कारण था कि उन्होंने अपने शोध को केवल विद्वानों के बीच सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसी भाषा और ऐसी शैली अपनाई जिसमें गंभीर विषय भी सहज रूप से समझे जा सकें। उनके लेखन में गहन अध्ययन का आधार था लेकिन प्रस्तुति में सरलता थी। वे कठिन विषयों को भी इस प्रकार समझते थे कि पाठक केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करता था बल्कि उस विषय के साथ आत्मीय रूप से जुड़ भी जाता था। यही विशेषता उन्हें अपने समय के अनेक विद्वानों से अलग पहचान देती है।
3: उनकी सबसे महत्वपूर्ण विद्वत उपलब्धियों में महर्षि पाणिनि पर किया गया शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्षों के अध्ययन और अनुसंधान के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी केवल संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, उसके भीतर तत्कालीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यापार, प्रशासन, शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य संकेत सुरक्षित हैं। इन संकेतों को एक सूत्र में जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने धैर्य, तर्क और प्रमाण के आधार पर इसे संभव बनाया। बाद में यही शोध एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ और भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस कृति ने यह प्रमाणित किया कि भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों का अध्ययन आधुनिक शोध पद्धति के साथ किया जाए तो इतिहास के अनेक नए आयाम सामने आ सकते हैं।
2: पाणिनि के अतिरिक्त उन्होंने महाभारत, पुराण, संस्कृत साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर भी गंभीर अध्ययन किया। उनके लिए ये ग्रंथ केवल धार्मिक या साहित्यिक कृतियां नहीं थे, वे इन्हें भारतीय समाज के विकास की जीवंत स्मृतियों के रूप में देखते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि कला को उसके सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर पढ़ा जाए तो वो इतिहास की अनेक अनसुलझी कड़ियों को स्पष्ट कर सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन आज भी कला इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी माने जाते हैं।
3: वासुदेव शरण अग्रवाल केवल एक शोधकर्ता या संग्रहालय विशेषज्ञ नहीं थे, वे एक ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने ज्ञान को जीवंत परंपरा के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर याद करने की अपेक्षा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जिज्ञासा ही प्रत्येक शोध का पहला चरण होती है और जब तक मन में प्रश्न जीवित रहते हैं तब तक ज्ञान की यात्रा भी आगे बढ़ती रहती है। अध्यापन के दौरान वे अपने विद्यार्थियों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते थे, वे उन्हें प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ मूर्तियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक स्रोत का अपना महत्व है, यदि इन सभी स्रोतों को एक साथ पढ़ा जाए तभी इतिहास की संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अपने लंबे अध्ययन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। भारतीय कला संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य और इतिहास पर लिखी गई उनकी पुस्तकों ने शोध की नई पीढ़ी को दिशा प्रदान की। भारतीय कला और संस्कृति पर कार्य करने वाले शोधार्थियों के लिए उनके अध्ययन आज भी मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। समय बीतने के साथ अनेक नई शोध पद्धतियां विकसित हुई, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा स्थापित प्रमाण आधारित अध्ययन की परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2: उनकी विद्वत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित दायित्व सौंपे गए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और शोध मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जाता था। वे जहां भी जाते वहां केवल व्याख्यान नहीं देते थे बल्कि लोगों के भीतर अपनी संस्कृति को समझने की नई जिज्ञासा भी जगाते थे। भारतीय संस्कृति पर उनके मौलिक लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक लेखक के रूप में उनकी उपलब्धि नहीं था बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में उनके असाधारण योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति भी था। ये उस साधना का सम्मान था जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का ध्येय बना लिया था। समय के साथ वासुदेव शरण अग्रवाल का व्यक्तित्व भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक ऐसे विद्वान के रूप में स्थापित हो चुका था जिसकी पहचान किसी एक विषय तक सीमित नहीं थी। वो इतिहासकार भी थे, कला मर्मज्ञ भी, पुरातत्व के गंभीर अध्येता भी और भारतीय संस्कृति के ऐसे व्याख्याता भी जिन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का सतत प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक चरण में ये सिद्ध किया कि संस्कृति केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं होती बल्कि वो समाज की जीवित चेतना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखते हुए आगे बढ़ती रहती है।
3: उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए केवल अतीत का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसे वर्तमान जीवन में भी अनुभव करना आवश्यक है। वे अक्सर इस बात पर बल देते थे कि हमारी परंपराएं केवल ग्रंथों में सुरक्षित नहीं है, वे हमारे उत्सवों में हैं, वे हमारे लोक गीतों में हैं, हमारी भाषाओं में हैं, हमारे शिल्प में हैं और हमारे दैनिक जीवन की अनेक छोटी छोटी परंपराओं में भी जीवित हैं। यदि हम इन्हें पहचान सकें तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता को सहज रूप से समझ सकते हैं।
2: विद्वानों का मानना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को एक समन्वित दृष्टि प्रदान की। उन्होंने ये स्थापित किया कि जब तक इतिहास, साहित्य, पुरातत्व, कला, भाषा और लोक परंपराओं का संयुक्त अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय सभ्यता की व्यापकता को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है।
3: दोस्तों, ज्ञान के प्रति उनकी साधना जीवन के अंतिम वर्षों तक चलती रही। उन्होंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि अब सीखने के लिए कुछ शेष नहीं।

0: केवल एक सफल विद्वान ही नहीं बनता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा भी बन जाता है।
1: सन 1966 में वासुदेव शरण अग्रवाल का देहावसान हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय सांस्कृतिक जगत ने एक ऐसे मनीषी को खो दिया जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान, शोध और भारतीय संस्कृति की साधना के लिए समर्पित कर दिया था। किंतु कुछ व्यक्तित्व केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहते, वे अपने विचारों, अपने लेखन और अपने कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के बीच निरंतर जीवित रहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल भी ऐसे ही युगदृष्टा विद्वान थे जिनकी बौद्धिक विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन को दिशा प्रदान कर रही है। आज जब भारतीय इतिहास, कला, पुरातत्व और संस्कृति पर गंभीर अनुसंधान की बात होती है, तब उनके कार्यों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से किया जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पद्धति, प्रमाणों के प्रति उनका आग्रह और भारतीय दृष्टि से संस्कृति को समझने का उनका प्रयास आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
0: भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनका योगदान केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। संग्रहालयों में उनके द्वारा विकसित की गई कार्य प्रणालियां, भारतीय कला के प्रति उनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन की उनकी पद्धति आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि किसी राष्ट्र को अपने भविष्य का निर्माण करना है तो उसे अपने अतीत को सम्मान पूर्वक समझना होगा। इतिहास केवल स्मरण करने का विषय नहीं है, उससे सीखने का विषय भी है।
1: वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने पूरे जीवन से यही संदेश दिया कि जो समाज अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी कला, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं को समझता है, वही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि ज्ञान की साधना कभी समाप्त नहीं होती। जिज्ञासा, अध्ययन, विनम्रता और सत्य की खोज, यही किसी भी विद्वान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इन्हीं मूल्यों के कारण वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति के उन अमर अध्येताओं में गिने जाते हैं जिनका योगदान समय बीतने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होता चला गया।
0: तो दोस्तों, भारत विभूति के आज के संक में हमने जाना एक ऐसे विलक्षण विद्वान को जिन्होंने भारतीय संस्कृति को देखने की दृष्टि बदल दी, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों, कला, पुरातत्व, संग्रहालयों और लोक परंपराओं को एक सूत्र में जोड़कर ये बताया कि भारत की सभ्यता एक अखंड सांस्कृतिक यात्रा है। उनका जीवन हमें ये विश्वास दिलाता है कि ज्ञान की सबसे बड़ी सार्थकता तभी है जब वो समाज को उसकी जड़ों से जोड़ सके और राष्ट्र के आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना सके। आइए भारत की इस महान विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके द्वारा दिखाए गए ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक चेतना के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
1: इसी संदेश के साथ हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के साथ। उससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन प्रमिला मुंशी दिवाकर
0: और मैं संदीप शर्मा,
1: लेखन पुष्पक श्रीवास्तव का। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कि भाव है ढप बाजोरे छेल मतवारे को, बड़े बड़े ढप होते हैं और हमारे यहाँ चौपाई निकलती है, उनको बजाते हुए गाते हुए मनसुखा जा रहे हैं।

0: सब गाते हुए मनसुखा बरसाना पहुंचते हैं और जाकर के राधा रानी के महलों में।
1: भैया बरसाने आएंगे पर अभी हो हो हो हो हो
0: ऊपर करके जोर से बोले
1: हो हो हो हो हो रही है नंदगाम के छोरा है और बरसाने की छोरी है हो हो हो हो हो रही है।

0: बोल राधा रानी सरकार की जय।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट रासलीला समारोह के छठे दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन

0: जिन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
1: जिन्होंने हमें जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया,
0: अब हम बने उनका सहारा जो पहले थे हमारा सहारा।
1: बचपन में जिन्होंने दी हमें खुशियाँ, वृद्धावस्था में दे हम उन्हें खुशियाँ।
0: अपने वृद्धजनों के प्रति समर्पित रहें, वृद्धजनों का सम्मान करें।
1: शुरुआत आज से ही करें, अपने घर से ही करें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र रेडियो कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार, ये हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हमारा देश साधु संतों और ज्ञानियों का देश भी माना जाता है, क्योंकि यहां हर धर्म, हर आस्था और हर जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत से संतों और साधुओं ने अपने देश भारत की प्रगति और उसकी सेवा के लिए अपना पूरा जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कुछ संत ऐसे भी थे जो विदेशी थे, लेकिन सदा के लिए भारत की भूमि में ही रच बस गए। ऐसे ही कुछ नामों में से दो नाम हैं, सिस्टर निवेदिता और मदर टेरेसा। ये एक बार यहां आए तो फिर इस पावन भूमि को छोड़कर नहीं गए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में मदर टेरेसा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे।

0: If you want a message of love to be heard, it has got to be sent out. To keep a lamp burning, we have to keep putting oil in it.
1: सच कहा था दया और प्रेम की मूर्ति मदर टेरेसा ने। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करता रहे, तो इससे पहले प्रेम बांटना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दिया प्रकाश फैलाता रहे, तो आपको उसमें लगातार तेल डालते रहना होगा। कहते हैं कि आपके कर्मों की महक उसी तरह फैलती है जैसे पहाड़ों के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ प्रतिध्वनि गूंजती है। मदर टेरेसा की परोपकारी भावना के दिए ने हजारों लोगों के जीवन को रोशन किया। उनकी दया, सहिष्णुता, सहानुभूति की भावना ने पूरे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रेम से सराबोर कर दिया। उन्होंने कई चैरिटी होम्स बनाए जिनमें असहाय, गरीबों और जटिल बीमारियों से ग्रस्त लोगों को आश्रय दिया, उनका इलाज कराया। मदर टेरेसा को इसी भावना के लिए विश्व शांति नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसी महान विभूति का जन्म आज से करीब 100 साल पहले 26 अगस्त 1910 में अल्बेनिया के स्कोप्स मैसेडोनिया स्थान पर हुआ था। मदर टेरेसा का मूल नाम एग्नेस गोंगजा बोजेग्ज्यू था। वो अपने 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। उन्हें शुरू से ही ईसाई मिशनरीज को देखना बहुत अच्छा लगता था।
2: फूल दे दे, नहीं तो मारूंगा।
3: रहने दे, तेरे जैसा फूल फूल लेकर क्या करेगा।
4: चुप ही रहो। अरे तुम्हारे साथ एग्नेस थी, वो कहाँ रह गई?
3: हमें क्या पता।
4: कैसे बहन भाई हो तुम? तुम छोटी बहन का हाथ नहीं पकड़कर रख सकते थे? हाँ ठीक है, तुम लोग गेट के पास खड़े रहो और देखो शैतानी नहीं करना, मैं एग्नेस को देख कर आती हूँ। उसके पापा पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं? एक मिनट भी चैन नहीं। कहाँ ढूंढूं एग्नेस को? अरे चर्च तो खाली हो गया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या करूं मैं? फादर से जाकर पूछती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, यही करती हूँ। अरे ये तो फादर से बातें कर रही है। एग्नेस, एग्नेस।
5: ओह मॉम, लुक मॉम, फादर कह रहे हैं कि मैं भी उनकी जैसे बन सकती हूँ। हाँ
4: व्हाट? फादर ये क्या पूछ रही है आपसे?
6: मुझे इसकी बातों से लगा कि इसे ईसाई मिशनरी बनने की इच्छा है।
5: यस मॉम।
4: क्या एग्नेस, तुम मिशनरीज में शामिल होना चाहती हो? अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
5: मॉम मैं 12 साल की हो गई हूँ। मॉम मुझे अच्छा लगता है जीसस के बताए रास्तों पर चलना और लोगों को समझाना। यस मॉम, यस मैं ईसाई मिशनरीज के ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ बस।
4: ओके ओके एग्नेस, देखो बेटा हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे।
5: हाँ
4: हाँ ठीक है ना। फादर को बाय बोलो और चलो घर।
5: ओके फादर, फादर मेरे बारे में बाद में सोचिएगा। हाँ
6: बाय माय चाइल्ड। लिसन लिसन।
4: यस फादर।
6: इसे डांटिएगा मत, बहुत प्यारी बच्ची है, पता नहीं यीशु ने क्या सोचा है। गॉड ब्लेस हर।
4: ओके फादर।

0: बहुत सी बातें स्वयं भविष्य का निर्धारण कर देती हैं। 12 साल की मदर टेरेसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। केवल 18 वर्ष की आयु में ही सन 1928 में मदर टेरेसा ने अल्बेनिया का अपना घर छोड़ दिया और सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो नामक एक आयरिश नन कम्युनिटी में शामिल हो गईं। इनका कार्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार था और सन 1931 में मदर टेरेसा ने बाकायदा नन बनने की शपथ ली थी। भारत में आकर मदर टेरेसा सन 1931 से 1948 तक कलकत्ता के एक कॉन्वेंट स्कूल सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापिका रही, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं लगा।
1: ए अम्मा, अम्मा कुछ खाने को दे ना, अम्मा भूख लगी है।
2: अरे अरे हटो, छी छी छी, कितना गंदा है ये बच्चा, छी छी, दूर हट हट।
1: ए अम्मा, अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे ना।
2: हट ना।
3: बच्चे कहाँ रहते हो तुम?
2: अरे इनके मुंह क्यों लग रही हो? गंदे लोग, गंदी बस्ती, हमें क्या करना है? कहीं भी रहे ये लोग, जल्दी चलो ना एग्नेस।
3: नहीं अली, नहीं, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या पता किस लिए भूखा है ये बच्चा। हो सकता है इसके माता पिता ही ना हो सकता है कि इसे घर वाले पूछते ना हो, इसलिए इसे भूखा रहना पड़ा हो, या कोई बीमार हो।
2: ओफो, इतनी डिटेल लेकर मैं इसके घर खाना देने थोड़े ही जाऊंगी। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। हाँ
3: ठीक है, तुम जाओ। बच्चे कहाँ रहते हो तुम?
1: पहले कुछ खाने को दो।
3: ठीक है, चलो मैं तुम्हें ब्रेड और सब्जी लेकर देती हूँ। कहाँ है तुम्हारी बस्ती?
0: इतने करीब से लोगों का फटे हाल, गरीबी और गंदगी भरा जीवन देखकर मदर टेरेसा का मन करुणा से भर गया। कोई वहां कमजोर था तो कोई बीमार और कोई लाचार। जीवन जीने के साधन ना के बराबर थे और शिक्षा, वो तो दूर दूर तक अपना दर्शन नहीं दे रही थी। मदर टेरेसा ने उसी क्षण सोचा कि अब से वो असहाय, लाचार और बीमार लोगों की सेवा ही करेंगी।

0: एग्नेस, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो?
1: यस फादर, मैं समझती हूँ कि केवल यहाँ पैसे वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाकर मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ईश्वर की निगाह में सब इंसान समान है, तो सबको एक जैसे सुविधा और प्यार क्यों नहीं मिलता फादर? एक जैसा जीने का मौका क्यों नहीं मिलता? शायद इसीलिए कि उसने हम लोगों को धरती पर भेजा है कि इस कार्य में हम उसकी सहायता करें। इसलिए फादर, मैं टीचिंग छोड़कर गरीब लोगों की सहायता करना चाहती हूँ।
0: एग्नेस, बट डू यू थिंक कि केवल तुम्हारी सहायता करने से इनके जीवन में सुधार आ जाएगा?
1: फादर, मैं मानती हूँ, इफ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन। मैं इसी तरह सोचकर ही गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ फादर।
0: बहुत अच्छे विचार हैं एग्नेस, लेकिन तुमने अपनी लाइफ की खुशहाली के बारे में भी कभी सोचा है?
1: फादर, जॉय इज अ नेट ऑफ लव बाय विच यू कैन कैच सोल्स। यही तो यीशु का प्रेम है और यही मैं करना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आऊं फादर, तो मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ। ट्रू चाइल्ड फादर, सच, मैं सच्ची संतान बन जाऊंगी। मैं इस तरह की चैरिटी करना चाहती हूँ फादर।
0: वेरी गुड। तो एग्नेस, तुम लोगों की मुस्कुराहट में अपनी खुशी तलाशना चाहती हो?
1: यस फादर।
0: मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हारा फैसला अडिग है या केवल क्षणिक भावावेश में आकर कोई फैसला ले रही हो तुम। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करता हूँ। कभी भी लाइफ में मेरी जरूरत पड़े तो निसंकोच आ जाना, ओके?
1: थैंक यू वेरी मच फादर, थैंक यू सो मच।
0: गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू।
2: और मदर टेरेसा ने अपने जीवन की राह तलाश ली। उन्होंने पटना में मेडिकल मिशन सिस्टर्स का एक छोटा सा कोर्स किया और वापस कलकत्ता आकर उन गरीब बच्चों के लिए ओपन एयर स्कूल खोला, जिसमें गरीब से भी गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान कई स्वयंसेवक उनके साथ जुड़ गए। इस स्कूल को चर्च, संस्थाओं और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से वित्तीय सहायता भी मिली। उसके बाद उन्होंने वेटिकन की सहायता से मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य शुरू किया। उन्हें एक नया नाम टेरेसा मिला। अब अल्बेनिया की कुमारी एग्नेस भारतीय गरीबों की मदर टेरेसा बन गई थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में केवल उन्हीं लोगों को सहायता दी जाती थी जिन्हें उनके परिवार और समाज अपनाने को तैयार नहीं होते। इसे मात्र 12 लोगों से शुरू किया गया था। मदर टेरेसा के प्रेम भरे, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार और सेवा भाव को देखते हुए पोप पॉल द सिक्स्थ ने प्रसन्नता ही नहीं जाहिर की बल्कि उनकी प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने मदर टेरेसा को और भी लोगों की सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता देने का वायदा किया। जनता के प्रति ममत्व के भाव को देखकर लोग उन्हें मदर ही कहने लगे थे। उन्होंने कलकत्ता में पहला होम बनाया।
1: मैं उन लोगों के लिए एक घर बनाना चाहती हूँ जिनका दुनिया में कोई न हो और वे मरणासन्न यानी मौत की हालत में हो।
3: मदर टेरेसा।
1: यस सिस्टर।
3: हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं?
1: देखो, जिस इंसान का कोई केयर करने वाला नहीं होता या किसी की बीमारी ऐसी है कि कोई उसके पास भी नहीं आना चाहता, ऐसे लोगों को हम अपने इस होम में रखेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी से नहीं, अकेलेपन और अपनेपन के अभाव में समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं।
3: जी।
1: पता सिस्टर, दुनिया में सबसे भयानक बीमारी इंसान का अनवांटेड होना होता है, जिसे कोई नहीं चाहता पर जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिसे सबने भुला दिया है। मेरी समझ में ये सबसे बड़ी भूख है, जो उस व्यक्ति की गरीबी से भी बड़ी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है।
3: यस मदर, आप सही कह रही हैं। तो मतलब हम लोग उस होम में लोगों का इलाज करेंगे?
1: हाँ सिस्टर, इलाज के साथ साथ प्रेम से उनकी देखभाल भी होगी। हो सकता है कि उनकी बीमारी ठीक होने लायक ना हो, लेकिन उनके अंतिम सांस के समय उन्हें ये तो नहीं लगेगा ना कि दुनिया में उन्हें कोई चाहता नहीं था। प्यार की भूख तो अमीर इंसान को भी होती है। पैसा तो इंसान कहीं से भी कमा सकता है सिस्टर, पर वो उससे प्रेम, चाहत और अपनापन नहीं खरीद सकता।
3: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मदर।
1: अगर कोई इंसान बच नहीं पाए तो अंतिम समय उसके पास वही सब होगा जो उसकी जाति और धर्म में होता है, यानी मुस्लिम के पास कुरान, हिंदू के पास गंगा जल, ईसाई लोगों के पास अंतिम रस्म। इट शुड बी अ ब्यूटीफुल डेथ।
3: आप सच में मरते हुए इंसान को एक ब्यूटीफुल डेथ का एहसास कराना चाहती हैं मदर?
1: हाँ सिस्टर, जो इंसानों की तरह जी तो नहीं पाया लेकिन मौत को एक फरिश्ते की तरह गले लगाएगा, लव्ड और वांटेड इंसान की तरह।
3: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मदर।
2: इंसानियत की कितनी सुंदर मिसाल है ये। इस घर को मदर टेरेसा ने नाम दिया था होम फॉर डाइंग, फिर नाम दिया काली घाट, बाद में उसका नाम निर्मल हृदय कर दिया गया था। यही नहीं, मदर टेरेसा के द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी कई बसेरे बनाए, जहां उन्हें खाना और दवा पट्टी के अलावा उनकी मेडिटेशन का भी इंतजाम है। इसे शांति नगर का नाम दिया गया। आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4,000 से भी अधिक नन हैं, जिसमें चैरिटी सेंटर्स, अनाथ, एड्स रोगी, कुष्ठ रोगी, अपंग, नेत्रहीन, वृद्ध, शराबी, गरीब और प्राकृतिक आपदाग्रस्त लोगों के आश्रय गृह हैं। ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में है। पोप पॉल द सिक्स्थ की ग्रांट से मदर टेरेसा ने भारत के अलावा वेनेजुएला में सबसे पहला होम बनाया, जो बीमारों और असहाय लोगों के लिए था। उसके बाद तो 100 से भी अधिक देशों में मदर टेरेसा के नाम के होम्स बने। मदर टेरेसा को अनाथ बच्चों और बीमारों और असहाय लोगों को एक साथ आश्रय देना उचित नहीं लग रहा था, तो मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सदस्यों से बात की।
4: हाँ टेरेसा, आप किसी समस्या पर विचार करना चाहती हैं?
1: यस फादर। फादर, अनाथ बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है हमें उन्हें असहाय और लाचार या बीमार लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनके मन में भी निराशा की भावना आने लगेगी, जो गलत है। Am I right, sisters?
3: Yes, Mother Teresa. We also feel this. हमें आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है।
4: तो आप लोग चाहते हैं कि बच्चों के लिए अलग होम्स बनाए जाएं?
1: जी बिल्कुल फादर, यही सही होगा। मासूम बच्चों के साथ हम होमलेस यंग लोगों को भी रख सकते हैं, जो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, उनमें आपस में प्रेम भाव भी होगा।
4: टेरेसा, आपका विचार अच्छा है। मैं जल्दी ही पोप से इसका जिक्र करके हेल्प करूंगा। वैसे इस होम का कोई नाम सोचा है आपने?
1: फादर, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इनोसेंट बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, तो इसका नाम निर्मल शिशु भवन रख सकते हैं।
3: अच्छा है, ये नाम अच्छा है।
4: जी वाकई अच्छा है।
2: मदर टेरेसा ने 1955 में पहला निर्मल शिशु भवन बनाया। इसके साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी ब्रदर्स 1963 में बनाया गया, और मदर टेरेसा के साथ हाथ बटाने के लिए कई कैथोलिक और नॉन कैथोलिक सिस्टर्स की भर्ती की गई। मदर टेरेसा प्रेम भाव फैलाने के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन चुकी थीं। वो एक प्रेरणा स्रोत भी थीं, पर उनका कहना था कि
1: हम स्वयं ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो समुद्र में एक बूंद के समान है, लेकिन यदि ये बूंद समुद्र में ना गिरे तो क्या वो अधूरा ना होगा? We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop.
2: मदर टेरेसा ने कभी दिखावा नहीं किया, कभी वापस कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी। 1962 में भारत सरकार ने पहली बार उनके कार्यों को सराहा और उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। 1969 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दिया गया। 1972 तक उन्हें कई अन्य सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए।
5: पोप पॉल द 23rd ने भी उन्हें पीस प्राइज दिया था। 1979 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा 1980 में मदर टेरेसा को भारत के अति सम्मानीय पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत ही नहीं, विदेशी सरकारों ने भी उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अवार्ड से सम्मानित किया। अल्बेनिया, जो कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि है, उसकी सरकार ने उन्हें गोल्डन ऑनर ऑफ द नेशन का सम्मान दिया। उनकी जीवनी 1992 में प्रकाशित हुई। जब उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला तो किसी ने उनसे पूछा कि विश्व शांति के लिए क्या करें, तो उनका जवाब था,
1: आपने पूछा कि विश्व शांति के लिए क्या करें, कुछ नहीं, बस घर जाओ और अपने घर वालों से प्रेम करो। जो अपने घर से प्रेम करता है वो पड़ोसियों से भी नहीं झगड़ता। पर आज दुनिया में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? जानिए, बहुत जरूरी है। इफ वी हैव नो पीस, इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात जानकर भी नहीं जानना चाहते हैं, क्यों? इसके अलावा शांति न होने का एक कारण है गरीबी। गरीब इंसान को गरीबी इतना परेशान नहीं करती जितना ये बात दुख देती है कि समाज में उसे इज्जत नहीं मिलती। पेट की भूख उसे नहीं मारती, वो मरता है अनवांटेड होने से, अनलव्ड होने से। दो रोटी खिलाकर आप किसी के पेट की आग तो शांत कर सकते हैं, लेकिन दिल की आग को नहीं बुझा सकते। वो आग बुझेगी प्रेम भरे व्यवहार से, आपकी केयर से। जब आग बुझेगी तो ही पूरे विश्व में शांति होगी।
5: अपने जीवन को पूरी तरह लोगों की सेवा में समर्पित कर देने वाली मदर टेरेसा से एक बार किसी ने पूछा,
0: आप सारा दिन काम करती रहती हैं, कभी थकती नहीं है, कहां से लाती हैं इतनी शक्ति?
1: मुझे शक्ति मिलती है प्रार्थना करने से, जीसस के शांत पवित्र चेहरे को एक टक निहारने से, उनके दिल से जो हर पल मुझे देखता रहता है। प्रार्थना मानसिक हो तभी दिलों की आवाज भी हम लोग सुन सकते हैं। वैसे भी जब आप छोटी छोटी चीजों के प्रति ईमानदार होते हैं तो उनमें शक्ति आ जाती है।
0: अच्छा, ये बताइए कि आपका विश्वास किस में है?
1: मेरा विश्वास मेरे काम में है। मैं जानती हूँ कि ईश्वर मेरे द्वारा लोगों की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि मैं गॉड की स्पेशल बच्ची हूँ
0: जी।
1: जिसने मुझ पर विश्वास किया है तभी तो मैं चैरिटी का काम कर पा रही हूँ।

0: उनका जीवन प्रेरणा स्रोत था, इसलिए उनके जीवन पर वृत्तचित्र और फिल्में भी बनी, जिनमें से बहुत सी विदेशी फिल्में भी थीं। मदर टेरेसा इन द नेम ऑफ गॉड्स पुअर एक अन्य इटालियन फिल्म मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता बनी, जिसे दोबारा रिलीज किया गया और उसे केमे पुरस्कार प्रदान किया गया था। कहते हैं जहां प्रसिद्धि हो वहां तर्क कुतर्क और विवाद भी जन्म ले लेते हैं। कई लोगों ने मदर टेरेसा के कामों पर भी उंगली उठाई। ये कहा गया कि वो तो ईसाई धर्म फैलाने आई थी, समाज सेवा तो बस अचानक ही साधन मिलने के कारण शुरू हो गई। एक बार किसी ऐसे इंसान के दान को मदर टेरेसा ने स्वीकार किया जो स्वयं भ्रष्ट इंसान था, जिस कारण वो विवादों में आ गई। पर मदर टेरेसा ने कभी भी विवादों पर ध्यान नहीं दिया, वो तो सिर्फ समाज के लिए ही सोचती रही।
1: प्रेम को मापा नहीं जाता, वो तो बस दे दिया जाता है। जब भी किसी से मिले मुस्कुरा कर मिले, यही प्रेम की शुरुआत है। किसी भी अच्छे रिश्ते की शुरुआत करनी है तो बस मुस्कुरा भर दें, मुस्कुरा भर दें, मुस्कुरा भर दें।

0: उन्होंने इंसान को इंसान होने का अर्थ दिया, भौतिकतावाद से उठकर भावनाओं को महत्व दिया, प्रेम का अर्थ समझाया। वो कहती थी कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा बदलाव चाहिए तो नेताओं की प्रतीक्षा मत करो, अपने आप से शुरू करो, बदलाव अपने आप दिखेगा। 1997 में वो 87 वर्ष की हो चुकी थी। वो केवल 4 से 5 घंटे की ही नींद लेती थी। उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। 2-3 साल पहले भी वो अपने कार्य से मुक्त होना चाहती थी, पर सिस्टर्स के कहने पर वो कार्य को छोड़ न सकी। अपने 87वें जन्मदिन के ठीक 9वें दिन 9 सितंबर 1997 को वो अपनी देह त्याग कर अविनाशी परम सत्ता में विलीन हो गई। वो अपने पीछे अपने सत्कर्मों का एक मेला छोड़ गई। भारतीय रेलवे ने मदर टेरेसा की याद में उनके नाम से उनके ही जन्मदिन पर एक रेल मदर एक्सप्रेस 26 अगस्त 2010 में शुरू की है। इस महान मां को, महान विभूति को हम सभी भारतीय प्रणाम करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, हमारा में।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित कजरी झूला गायन महोत्सव में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: झूला उत्सव या झूला या वर्षा उत्सव, उसका आनंद तभी है जब जुगल जोड़ी झूला झूलती है। तो संयोग वियोग दोनों ही प्रकार हैं श्रृंगार के। एक ये झूला मैं सुनाऊंगी, बहुत नायाब चीज है। आज दो झूला झूले, शामा शाम ही डोले रे, आज दो झूला झूले।

राधा जी का विरह सब जानते हैं, ज्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन कृष्ण विरह उसकी एक चीज में गाऊंगी, कजरी। ज्यादातर जब विरह की बात आती है तो नायिका को ही दर्शाया जाता है, लेकिन नायक को भी तो पीड़ा होती है। घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। छिन जमुना तट छिन कुंजन में, बिरह व्यथा से दहत है मनुआ, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। बदरा बरसे नैना बरसे, घन आशाओं में लागी है हुड़वा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। जब लो राधे मान न तोड़ी है, बंशी धरी हो ना कबहूँ अधरवा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। ये कजरी सुनाती है।

थोड़ा हम पंजाब की तरफ चलें। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: धर्म महासभा के संक्षिप्त ऐतिहासिक भाषण के पश्चात स्वामी जी शिकागो के समाज में छा गए। उनका व्याख्यान सुनने के लिए हजारों की भीड़ होती थी। धर्म महासभा के अलावा उन्हें विज्ञान सभा, चर्च तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से भी आमंत्रण मिला और उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना वक्तव्य रखा। 20 सितंबर को धर्म महासभा की एक बैठक में उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि भारत का प्रधान अभाव धर्म नहीं है। उन्होंने कहा,
1: भारत के कोटि कोटि शुद्धार्थ नर नारी शुष्क कंठ से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं, वे रोटी मांग रहे हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। भूखे लोगों को धर्म के उपदेश देना या दर्शन शास्त्र सिखाना उनका अपमान करना है। मैं अपने निर्धन देशवासियों के लिए तुम लोगों से सहायता मांगने आया था, परंतु अब मैं समझ रहा हूं कि ईसाइयों के देश में ईसाइयों के पास से गैर ईसाइयों के लिए सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है।
0: ये बातें सुनकर भले ही कुछ ना हुआ हो, पर महासभा समझ गई कि स्वामी जी केवल सन्यासी ही नहीं हृदयवान देशभक्त भी हैं। उस व्याख्यान के अंत में उन्होंने पुनर्जन्मवाद पर भी कुछ बातें कही।
2: 26 सितंबर को उन्होंने महासभा में फिर व्याख्यान दिया। इस बार का विषय था, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही परिपूरक है। इसमें स्वामी जी की विचारधारा का एक मौलिक रूप दिखाई दिया। उनके मत से बुद्ध के अविर्भाव के बाद भारतीय धर्म का इतिहास सहज बोध हो उठा है। उन्होंने समझाया कि
1: हिंदू धर्म के दो प्रधान भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। बुद्ध ने समाज में उसका आध्यात्मिक अंग प्रचारित किया और अपेक्षित प्रतिक्रिया की व्याख्या की। वे ही प्रचार मूलक धर्म के प्रथम पथ निर्माता और धर्मांतरण प्रथा के प्रवर्तक थे। तो भी शाक्य मुनि पूर्ण करने आए थे, ध्वंस करने नहीं। वे हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति, युक्ति संगत सिद्धांत और न्याय सम्मत विकास थे। भारत उन्हें ईश्वर अवतार के रूप में पूजता है, परंतु बुद्ध देव के बारे में हमारी यही धारणा है कि उनके शिष्यों ने उन्हें ठीक ठाक नहीं समझा। शाक्य मुनि कुछ नया प्रचार करने नहीं आए थे, ईसा के समान ही वे भी पूर्ण करने आए थे, ध्वंस करने नहीं। बुद्ध देव के शिष्य उनके उपदेशों का मर्म समझ नहीं सके। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और ना बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना। ब्राह्मणों के दर्शन शास्त्र व मस्तिष्क के बिना बौद्ध ठहर नहीं सकते और ना ही ब्राह्मण बौद्धों के विशाल हृदय के बिना टिक सकते हैं। बौद्ध और ब्राह्मण के बीच ये विरोधी भारत वर्ष के पतन का कारण है।
0: महासभा के अंतिम दिन 27 सितंबर को स्वामी जी का भाषण पुनः रखा गया। उस दिन शिकागो की जनता के अनुरोध पर यह व्याख्यान हुआ। महासभा में भारी भीड़ उपस्थित हुई और आयोजकों को विशेष बैठक व्यवस्था करनी पड़ी। अपने विदाई भाषण के अंत में स्वामी जी बोले,
1: ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है, पर प्रत्येक को चाहिए कि वो अन्य धर्मों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्ट हो और अपने वैशिष्ट्य को बनाए रखकर अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो। यदि इस महासभा ने जगत के समक्ष कुछ प्रदर्शित किया है तो वो ये है कि इसने ये सिद्ध कर दिया है कि साधुता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है। प्रत्येक धर्म में ही अति उन्नत चरित्र के नर नारियों का जन्म हुआ है। इन समस्त प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि केवल उसी का धर्म टिका रहेगा और अन्य सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे, तो वो वस्तुतः दया का पात्र है। मैं उसके लिए हृदय से दुखी हूं और उसे स्पष्ट रूप से बताए देता हूं कि समस्त प्रतिरोधों के बावजूद शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, संघर्ष नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं समन्वय और शांति।
2: महासभा और उसकी विज्ञान शाखा के बाहर स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिए उनमें से प्राच्य नारी विषय के व्याख्यान पर संक्षिप्त विवरण 23 सितंबर के शिकागो डेली इंटरओशन संवाद पत्र में और ईश्वर प्रेम संबंधी एक और व्याख्यान का विवरण 25 सितंबर में शिकागो हेराल्ड संवाद में प्रकाशित हुआ। प्रथम व्याख्यान में उन्होंने कहा,
1: हिंदू नारियां बड़ी धार्मिक तथा आध्यात्मिक संपदा से विभूषित होती हैं। सतीत्व को भारत में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। भारतीय नारी की इस पवित्रता के साथ यदि बौद्धिक उत्कर्ष का भी योग किया जा सके तो विश्व की आदर्श नारी चरित्र का गठन हो जाएगा। सभी लोग विभिन्न नामों से ईश्वर का चिंतन आदि किया करते हैं और भगवत प्रेम ही संपूर्ण विश्व के एक तत्व का मूल सूत्र है। भगवान केवल कुछ विशेष लोगों के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रत्येक संतान के साथ वार्तालाप आदि करते हैं। हम सभी आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं।
0: महासभा समाप्त हुई, विज्ञान शाखा की कार्रवाई भी पूरी हो गई। इन कुछ दिनों के दौरान महासभा के श्रोताओं तथा अन्य सभा समितियों के सदस्यों ने किस प्रकार स्वामी जी को उत्साह पूर्वक स्वीकार किया और अमेरिकी संवाद पत्र ने किस ढंग से उन्हें प्रचारित किया, इसका बहुत कुछ आभास हम पा चुके हैं। महासभा के पहले दिन ही एक अज्ञात भिक्षा जीव सन्यासी विश्व बंधु व्यक्ति में परिणित हुए। भारत के गिरी कंदराओं तथा वनों में विचरण करने वाले निसंग विवेकानंद एक नए संदेश के वाहक, एक अभिनव संस्कृति के अग्रदूत हुए। महासभा में अर्जित सफलता केवल शिकागो तक सीमित न रह करके सभी दिशाओं में फैल गई और उनका नाम सर्वत्र जगत में गूंज उठा।
2: उनके पूरे आकार के तिरंगे चित्र शिकागो के राजमार्गों पर दिखने लगे, जिनके नीचे लिखा रहता था, भारत के हिंदू सन्यासी विवेकानंद। राह चलते लोग उसे देख ठिठक कर खड़े हो जाते और सिर झुकाकर श्रद्धा व्यक्त करते। पत्र पत्रिकाएं उनकी प्रशंसा में मुखर थीं। नगर के श्रेष्ठतम संवाद पत्रों में उन्हें ऋषि और भगवत प्रेरित महापुरुष के रूप में अभिनंदित किया गया। स्वामी जी के पत्रों से तथा संवाद पत्रों के लेखन से हमें इन बातों का पता चलता है। महासभा के विज्ञान शाखा के सभापति श्री मार्विन मैरी स्नेल ने लिखा था,
3: महासभा तथा अमेरिका जनता पर हिंदू धर्म ने जैसा प्रभाव डाला वैसा और कोई भी संप्रदाय नहीं कर सका, और हिंदुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम प्रवक्ता थे स्वामी विवेकानंद। वो ही महासभा के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। महासभा के कक्ष में तथा मेरे सभापतित्व में परिचालित उसकी विज्ञान शाखा के अधिवेशनों में प्रायः व्याख्यान देते थे और प्रति बार किसी भी ईसाई या गैर ईसाई वक्ता की अपेक्षा उनका अधिक उत्साह के साथ स्वागत होता था। वो जहां भी जाते जनता उन्हें घेर लेती और उनका प्रत्येक शब्द ध्यान पूर्वक सुनती। कट्टर से कट्टर ईसाई भी उनके बारे में कहते कि वो सचमुच ही मनुष्यों में महाराजा हैं।
2: काफी दिनों के बाद महासभा में स्वामी जी की उपस्थिति के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा था,
4: शिकागो के धूम्र मलिन क्षितिज पर भारतीय सूर्य के समान दीप्तिमान, सिंह के समान उन्नत

0: बोले, जिनमें से किसी किसी को दुभाषी की सहायता लेनी पड़ी थी, परंतु उन गैरिक वस्त्रधारी सुंदर सन्यासी ने हमें शुद्ध अंग्रेजी में श्रेष्ठतम वस्तु प्रदान की। उनका प्रबल और आकर्षक व्यक्तित्व, कांसे के घंटा ध्वनि के समान उनका मधुर और मधुर कंठ स्वर, उनके संयत भावों की प्रखरता और पाश्चात्य जगत के समक्ष पहली बार उच्चारित उनके संदेश, इन सब ने मिलकर हमारे लिए चरम अनुभूति के एक विरल अवसर की सृष्टि की थी।
1: उन्हें प्रशंसा तो बहुत मिली, पर जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि मित्रों के साथ साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई, क्योंकि स्वामी जी निडर और स्पष्ट वक्ता थे। उन्हें अगर कोई बात गलत लगती थी तो उसकी आलोचना करने में वे हिचकिचाते नहीं थे। अतः कुछ मिशनरी और ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजुमदार उनके प्रमुख शत्रु बन गए थे। बाद में बोस्टन की रमाबाई मंडली भी इन लोगों के साथ जुड़ गई। इस प्रसंग में हम आगे और जानकारी देंगे, पर मजुमदार महाशय के साथ विरोधिता की बात अभी उल्लेखित करना उचित होगा। स्वामी जी की पत्रावली पढ़कर ऐसा लगता है कि मजुमदार महाशय ने स्वामी जी की सफलता पर ईर्ष्यालु होकर के उनके प्रति विरुद्ध आचरण किया।
2: उन्होंने देखा कि एक नया प्रतिद्वंदी उनका नाम यश छीनता जा रहा है। सन्यासी का परिचय पूछे जाने पर उन्होंने महासभा के संचालकों के कान में कहा, ये भारत के एक ऐसे घुमक्कड़ संप्रदाय के हैं जिनका समाज में कोई मान या प्रभाव नहीं है। वस्तुतः ये एक ढोंगी हैं, परंतु संचालकों का उदार मन इन बातों से विचलित नहीं हुआ। स्वामी जी के प्रबल व्यक्तित्व के आधार पर ही उन लोगों ने उनका मूल्यांकन किया।
1: ईर्ष्या तो बहुत थी ही, उसके साथ साथ विचारों का संघर्ष भी था। 9 सितंबर 1893 ईस्वी को एडवोकेट पत्रिका में मजुमदार से संबंधित कुछ बातें प्रकाशित हुई थी।
3: ब्रह्म समाज के प्रमुख प्रतिनिधि ने सतर्कता पूर्वक बताया कि उन्होंने अपना धर्ममत मिशनरियों से नहीं लिया है, अपितु वो हिंदू धर्म का ही एक रूपांतरण है। उसमें आधुनिक हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों में जो कुछ सत्य है उसी को आधार रूप में ग्रहण करने पर भी ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र तथा जगत के उद्धार कर्ता के रूप में ग्रहण करने में ही उसकी चरम परिणति है।
1: स्वामी जी ईसा मसीह के परम प्रशंसक होकर भी अपने धर्म को हीन करके अन्य धर्मों को ऊंचा स्थान देने को बिल्कुल प्रस्तुत न थे। पाश्चात्यों की नकल करके ब्रह्म लोग भारतीयों के अनेक सामाजिक प्रथाओं तथा आचार अनुष्ठानों की निंदा किया करते थे, पर स्वामी जी कहा करते थे कि
4: समाज यदि आदर्श भ्रष्ट होकर गलत रास्ते पर भी चले तो गाली गलौज के द्वारा उसका सुधार नहीं होगा, वरन इसके लिए आदर्श का पुनरुद्धार आवश्यक है।
2: सती दाह प्रथा आदि का समर्थन ना करते हुए भी वे सनातन धर्म के आदर्शों के प्रति सजग रहते थे और विदेशों में प्रचलित अनेकों अनाचार अत्याचार की ओर इशारा कर आलोचकों को परास्त कर देते थे। वस्तुतः वे भारतीय समाज की अनुचित आलोचना से प्राणपण से रक्षा करते थे। ऐसा ब्राह्म मतावलियों को स्वीकार नहीं था। वे अपने को प्रगतिशील और स्वामी जी को प्राचीन पंथी समझते थे। ऐसी हालत में विद्वेष अवश्यंभावी था।
1: थियोसॉफिस्ट भी स्वामी जी से नाराज थे, क्योंकि उनका महात्मावाद स्वामी जी को बड़ा विचित्र लगता था। वे अलौकिक कारनामों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनकी दृष्टि में यह सब जादूगिरी या बाजीगिरी के रूप ही थे। उनका आध्यात्मिक मूल्य प्राय शून्य के बराबर था। सिद्धियों को वे धर्म का सम्मान नहीं देते थे।
2: अब तक ये विरोधी संप्रदाय के लोग पाश्चात्य जगत में भारत का विकृत रूप प्रस्तुत करते रहते थे, पर स्वामी जी के व्याख्यानों से उन विकृत चित्रों की वास्तविकता उजागर हो जाने से सब ने मिलकर उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मजुमदार भी उन्हीं में से एक थे। स्वामी जी ने मजुमदार महाशय की कीर्ति उजागर करते हुए 19 मार्च 1894 को स्वामी रामकृष्ण नंद को पत्र में लिखा था,
4: प्रभु की इच्छा से मजूमदार महाशय के साथ यहाँ मेरी भेंट हुई। पहले तो बड़ी प्रीति थी, परंतु जब पूरे शिकागो शहर के नर नारी मेरे पास झुंड के झुंड आने लगे, तब मजूमदार भैया के मन में आग धधक उठी। मैं तो देख सुनकर दंग रह गया। बोलो भाई, मैंने क्या तुम्हारे पेट पर लात मारी है? इस देश में तो तुम्हारे लिए यथेष्ट अवसर है, परंतु मेरे जैसा तुम्हारा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मजूमदार ने महासभा के पादरियों के समक्ष मेरी खूब निंदा की, कहा कि यह और कोई नहीं, ठग है, ढोंगी है, तुम्हारे देश में कहता है मैं साधु हूं, आदि बातें कहकर उन लोगों के मन में मेरे बारे में गलत धारणा बैठा दी। प्रेसिडेंट बैरोज को ऐसा भड़काया कि अब वे मेरे साथ ठीक से बातें तक नहीं करते। ये लोग पुस्तकों और पत्रकों की सहायता से मुझे यथासंभव दबाने का प्रयास कर रही हैं, परंतु भाई, गुरुदेव मेरे साथ हैं। मजूमदार के कहने से क्या होता है? पूरा अमेरिका मुझे प्रेम करता है, भक्ति करता है, रुपए देता है और गुरु जैसा मानता है। मजूमदार बेचारा क्या करे, पादरी फादरी की भी क्या बिसात, और फिर ये विद्वानों का राष्ट्र है। यहां पर हम विधवाओं का विवाह करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, आदि बातें नहीं चलती, केवल पादरियों के पास चलती हैं। भाई, ये लोग दर्शन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, गप्पों से काम नहीं चलेगा। भाई, मुझे सब कुछ आता है, पर मुझे ईर्ष्या नहीं भाती।
1: अमेरिका के प्रारंभिक दिनों के दौरान अपनी स्थायी विचारधारा तथा जीवन दर्शन के साथ मेल न रख पाने पर भी क्रमशः वे अमेरिका की सामान्य रीति रिवाजों के साथ परिचित होकर के अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग गए। वे समझ गए कि इन नए अपरिचित परिवेश में भी भारतीय भावों को सुरक्षित रखा जा सकता है। 2 अक्टूबर 1893 में उन्होंने अध्यापक राइट्स को लिखा था,
4: अब मैं यहाँ की जीवन धारा के साथ समझौता करता जा रहा हूँ। पूरे जीवन भर मैं हर परिस्थिति को प्रभु का दान समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार करते हुए उसके अनुसार अपने जीवन को समायोजित कर लेता रहा हूँ। अमेरिका में पहले पहल मैंने अपने आप को जलबिन मछली के समान अनुभव किया। भय था कि कहीं मुझे अपना परिचित मार्ग छोड़कर अपनी व्यवस्था स्वयं ही न करनी पड़े। कितना विभत्स और कृतज्ञता पूर्ण था यह विचार, पर अब मुझे स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है कि जिस ईश्वर ने मुझे हिमालय के हिम शिखरों पर तथा भारत की मरुभूमि पर पथ दिखाया था, वो ही यहां भी मेरी सहायता करेगा। अतः अब फिर मैं चुपचाप अपने पुराने रास्ते पर चल रहा हूं। कोई मुझे भोजन तथा आश्रय देता है और कोई आकर मुझे उनके बारे में बोलने को कहता है। मैं जानता हूं कि सब उन्हीं के द्वारा भेजे जा रही हैं और मेरा काम है सिर्फ आज्ञा पालन किए जाना। वे ही मेरी आवश्यकता की सारी चीजें जुटा रही हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो।
2: इस प्रकार उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाने पर उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार किया। उनकी इच्छा थी कि भारत के बारे में लोगों को जो गलत जानकारियां हैं उन्हें दूर कर वे भारतीय जनता के लिए धन एकत्रित करेंगे, ताकि वापस जाकर उस धन का उपयोग जनता के विकास के लिए कर सकें। पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से धन मांगना छोड़ दिया, क्योंकि वे समझ गए कि शिकागो के लोग उनसे आध्यात्मिक बातें ही सुनना चाहते हैं। सांसारिक बातों में, खासकर भारतीय जनता के लिए, उनमें खास रुचि नहीं है। उन्हें लगा कि कहीं श्रोताओं की संख्या घट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कार्यशैली बदल डाली। उन्होंने इस प्रसंग में अध्यापक राइट को लिखा था,
4: दूर दूर के देशों से लोग अपनी योजनाएं, विचार तथा आदर्श लेकर यहाँ उन्हें रूपायित करने को आए हैं, और अमेरिका ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हर चीज के लिए सफलता की संभावना है। परंतु अपनी योजना के विषय में अभी मैंने कुछ न बोलने का ही निश्चय किया है, क्योंकि मैंने देखा कि लोग योजना की अपेक्षा मुझ विधर्मी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी योजना के लिए मैं निष्ठापूर्वक परिश्रम करना चाहता हूं, परंतु योजना को पृष्ठभूमि में रखकर बाहर से मैं अन्य वक्ताओं के समान ही कार्य करूंगा। शिकागो में मैं बड़ा ही लोकप्रिय हूं, इसलिए मैं यहां कुछ और दिन ठहरना तथा धन एकत्र करना चाहता हूं।
1: इस तरह स्वामी जी के उस अंचल में बड़े प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनके पास शिकागो के बाहर से भी अनेक स्थानों से व्याख्यान के लिए निमंत्रण आने लगे और साथ में धन भी आने लगा। 10 अक्टूबर को उन्होंने श्रीमती उट्स को लिखा था,
4: अभी मैं शिकागो के विभिन्न स्थानों में व्याख्यान दे रहा हूँ और मेरी समझ से वो अच्छा ही चल रहा है। एक भाषण के लिए मुझे 30 से 80 डॉलर तक मिल जाते हैं। महासभा के चलते शिकागो में मेरा नाम इतना प्रचलित हो गया है कि अभी इस क्षेत्र को त्याग देना उचित न होगा।
2: उन दिनों व्याख्यान देने के लिए स्वामी जी शिकागो से बाहर जाते रहते थे, पर जब कभी भी शिकागो वापस आते, लियोन परिवार के घर जरूर जाते। महासभा के बाद भी उस परिवार के साथ उनका संपर्क बना रहा। श्रीमती लियोन भी स्वामी जी को बेटे जैसा ही मानती थी, उनके सुख दुख की साथी थी। एक बार किसी महिला ने स्वामी जी पर मोहित होकर उनका मन आकर्षित करने का प्रयास किया। पता चलने पर श्रीमती लियोन स्वामी जी के बारे में बड़ी चिंतित हुईं। क्यों ना हो, माँ जो थी उन्होंने स्वामी जी को सावधान भी कर दिया। पर स्वामी जी बोले,
4: आप अमेरिका की मेरी स्नेहमयी माँ हैं, आप मेरे लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। एक समय मैंने किसान द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करते हुए तथा वट वृक्ष के नीचे सोकर भी दिन बिताए हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: ऑडियो एल्बम जननायक स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।